लौटने वाले खाली ना लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीनी, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: काल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी

0: कि संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

श्रोताओं, कहते हैं अगर आपके मन में कुछ अच्छा करने की आपने ठान लिया है, अपने मन बना ही लिया है आपने कुछ बढ़िया और बड़ा करने का, तो सिर्फ मन बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, आप जुड़ चुके हैं FM मुरादाबाद के साथ। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। शुरू हो चुका है एक नया सिलसिला, एक नई एनर्जी का डोज लेकर आपके रेडियो पर मैंने तो जो है दस्तक दे दी है। श्रोताओं, कैसे हाल चाल है आपके? आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, फैंटास्टिक होंगे, सब बढ़िया से अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे होंगे। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत ही खास है, बहुत ही खूबसूरत है आज का दिन। आज के दिन की विशेषताओं के बारे में जरूर बात करेंगे, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं, आज है 25 जून। हाँ जी, 25 जून हो गई है आज, दिन है आज बृहस्पतिवार का, यानी गुरुवार का दिन, थर्सडे की मॉर्निंग। तो श्रोताओं, आपसे बहुत बहुत हम यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहेंगे, सुबह सुबह की जो प्रोडक्टिविटी है, जो सुबह सुबह की एनर्जी है, जो ये पॉजिटिविटी का डोज है, इसको मेंटेन रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही अभी हम जब आएंगे लौटकर तो क्यों है आज का दिन स्पेशल, इस पे बात करेंगे और भी तमाम बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आज का दिन बहुत स्पेशल है और आज के दिन से जुड़ी तमाम सारी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आया हूँ आपके लिए इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलिए श्रोताओं, फिलहाल आपके हालचाल अच्छे होंगे मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, एंड ढेर सारे संदेश जो आप लोग पहुंचाते हैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और बस अभी मैं यू गया और यू लौट कर आया, फिलहाल शुरू हो गया है आज का सिलसिला। यस, फिलहाल एक चीज जो मुझे बतानी थी आपको और डेफिनेटली बताकर रहूंगा, वो ये है कि भैया आज का मौसम जो है थोड़ा सा औसम हो गया है। क्यों हुआ है औसम, इस पर अभी मैं बात करूंगा जरा सी देर में। आज एब्सोल्युटली बहुत ही औसम मौसम हो रहा है, मौसम ने सुबह सुबह जादू कर दिया है आज। चलो एक गाने के साथ करेंगे आज के सफर की बेहतरीन शुरुआत। उदित नारायण साहब साथ में अलका याग्निक जी देंगी साथ, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, वेरी गुड मॉर्निंग। जुड़ चुके हैं आप FM मुरादाबाद के साथ, चलो साथ में मिलकर गाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है यार, ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया उदित अनन्या याग्निक जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, एंड ऐसे खूबसूरत गीत आप ऑफ कोर्स सुनते रहेंगे आरजे आनंद के साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत तारीख है आज, 25 जून हो गई है। आज की सुबह बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस सुबह की शुरुआत अगर आप पॉजिटिविटी के साथ, तो हमेशा ही आप करते हैं मेरे साथ, आई नो आपके मैसेज और आपकी बातें मुझे बताते हैं कि आप कितना पॉजिटिव हो चुके हैं। और बहुत ज़रूरी है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कहना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ कर भला तो हो भला, है ना, तो अच्छे काम करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज निर्जला एकादशी जो है वो मनाई जा रही है, और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये एकादशी। और कहा जाता है कि एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा फलदेह हो जो है देने वाली मानी जाती है। इस पर डेफिनेटली बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। आप में से कई लोगों ने आज व्रत रखा होगा जो पूरा दिन पानी का जो है ग्रहण नहीं करने वाले हैं, और ये व्रत अपने आप में बहुत कठिन भी होता है। थोड़ी देर में इस पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग आज के दिन के बारे में।

श्रोताओं, आपको तो पता है हर दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारी भी कोशिश होती है कि आपको हर दिन के बारे में बताया जाए, थोड़ी सी जानकारियां दी जाएं ताकि कहीं ना कहीं वो दिन के बारे में आपको पता चल सके और क्यों महत्वपूर्ण होता है ये दिन, इस विषय में आपको जानकारी मिल सके। श्रोताओं, आपको बता दें, टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण और भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध लॉर्ड्स के मैदान पर अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। श्रोताओं, 1932 में आज के दिन 25 जून को। हां जी श्रोताओं, और क्या कुछ खास रहा आज ही के दिन 25 जून को, चलिए इस पे भी हम एक नज़र डालेंगे। कौन कौन से महान लोग हैं जो अपना बर्थडे आज सेलिब्रेट करते हैं, किनका जन्म आज के दिन हुआ, किनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है और किनका आज के दिन इतिहास के पन्नों में नाम अमर हो गया, चलिए उस पे एक चर्चा करते हैं, एक नज़र डालते हैं। फिलहाल श्रोताओं, आप जो संदेश पहुँचा रहे हैं आपका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इतने खूबसूरत संदेशों के लिए, बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। चलिए आपको हम अभी इतिहास के पन्नों की ओर लेकर चल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि क्यों खास है आज 25 जून का इतिहास। आपको बता दें, आपातकाल की जो ये वर्षी 25 जून को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1977 में आज के दिन इस दिन की जो है इस दिन को मनाया गया। श्रोताओं, और आपको बताते चलें, आज के दिन अफगानिस्तान में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी सन 2002 में आज के दिन। और आज के दिन रूस द्वारा भारत की रणनीति साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था सन 2004 में। और आज के दिन अहमद निजाद ईरान के राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, और आज के दिन सन 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान व प्लॉट की जो रजिस्ट्री जो हम लोग करवाते हैं वो सस्ती कर उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क 8% से घटाकर 5% कर दिया गया था। श्रोताओं, आज ही के दिन। और श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था आज ही के दिन सन 2017 में। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय, और ये काफ़ी जाना माना नाम, इनका जन्म हुआ आज के दिन 1900 में 25 जून को। आपको बता दें, चंद्रशेखर पांडे जो प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक रहे, 1903 में उनका जन्म हुआ। श्रोताओं, आज के दिन। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, 1931 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। मदन मोहन जो बॉलीवुड के फिल्म संगीत निर्देशक हैं, 1924 में इनका भी जन्म हुआ था। श्रोताओं, आज ही के दिन। आज की तारीख में अगर आपका भी जन्मदिन है तो आप अपना बर्थडे इन कमाल के लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सुधा सिंह भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक रही, 1986 में इनका भी जन्म हुआ। मनोज कुमार पांडे जो परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक रहे, 1975 में आज के दिन उनका भी जन्म हुआ था। सतीश शाह जो भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है, 1961 में उनका भी जन्म हुआ था आज के दिन 25 जून को। तो ये 25 जून से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको फटाफट बता दी हैं। अभी स्टेशन क्लॉक में वक्त जो हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वक्त हो गया है 8:39, यानी कि अब आप देखिए 8:40 होने को हैं, और आपके जो संदेश हैं वो मैं बस अभी शामिल करूंगा अपने इस प्रोग्राम में। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप ऑफकोर्स हमारे साथ अपने मैसेज को अभी भी पहुँचा सकते हैं। कोई अच्छी चीज़ है आपके आसपास जो आपको लगता है कि डेफिनेटली रेडियो तक पहुँचनी चाहिए, तो बिल्कुल आप पहुंचा सकते हैं मुझ तक 9837896896 पे व्हाट्सएप करके। प्यारी प्यारी बातें आप पहुंचा सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, व्हाटएवर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज 25 जून की ये सुबह है और आप सभी का इस्तकबाल करता है आपका रेडियो वाला दोस्त आनंद।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
0: मॉर्निंग। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल नवजात शिशुओं के लिए।

0: उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
9: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। दिस इज थर्सडे की सुबह, बहुत ही ब्यूटीफुल तारीख है 25 जून, और आज का दिन बहुत स्पेशल हो जाता है आपके मैसेजेस के जरिए मुझे पता लगता है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं यार, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जो मैंने लाइन अप कर दिया है, अब तो बस प्ले हो रहा है यार आपके लिए।

ब्यूटीफुल ट्रैक, ब्यूटीफुल गाना। इस गाने के बाद वेलकम बैक है और आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, 8:51 स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो रहा है। मुरादाबाद के लिए तो है यार प्राउड मोमेंट, मुरादाबाद के लिए गर्व का मोमेंट है और मैं तो यहाँ पर आप सभी के साथ इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आपको बताया ना मुरादाबाद की जीत हुई है, मुरादाबाद का डंका पूरी दुनिया में बजा है। अरे आपको नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ, मुरादाबाद का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है और इसके पीछे का नाम है चिरंजी लाल यादव और प्रेमवती जी। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जी चिरंजी लाल यादव और प्रेमवती जी को मिला है कल पद्मश्री। जी हाँ, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है हमारी कला और हमारी पहचान के लिए। मुरादाबाद जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे अपनी पहचान बना चुका है। हम पीतल लकड़ी से बिलोंग करते हैं यार, विरासत हमारी पहचान है, पीतल की दाल अपनी एक पहचान है। तो मुरादाबाद की जो मतलब मुझे लगता है चमक है ना, वो हर भारतीय के दिल में जिंदा है और मुरादाबाद की जो चमक है, इसकी जो पहचान है, वो सिर्फ हम भारतवासियों में नहीं है, विदेशों में भी अपने इस मुरादाबाद की कला की पहचान है ना। तो बस कल उसी कला को जो है, उस मुरादाबाद की उसी विरासत को जो है सेलिब्रेट किया गया है। हाँ जी, चिरंजी लाल यादव और प्रेमवती जी को मिला है पद्मश्री और उनको पद्मश्री से सम्मानित की जो है कल किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यू नो सक्सेस है अपने मुरादाबाद के लिए, एक प्राउड मोमेंट है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, यू नो मुझे लगा कि चलो ये जो खुशी का मोमेंट है तो ऑफकोर्स आपके साथ शेयर करना चाहिए और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि अगर मुरादाबाद आज इतना डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी मुरादाबादीज का भी इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली है, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब हम उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। यू अग्री विद मी 100% है ना। छोटी छोटी चीज़ें करके हम डेफिनेटली अपने शहर को और अपने आप को दोनों को स्मार्ट बना सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें भैया, आज निर्जला एकादशी है। इस पावन मौके पर देव भूमि उत्तराखंड हरिद्वार में जो है काफ़ी आज श्रद्धालु पहुंचे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ जो है वहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा आज 24 नहीं, आज 25 है ना, तो आज जो है इधर अपना जो ये कौन सा रूट पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर और ब्रजघाट, उधर भी जो है मेला, जो जेठ का गंगा दशहरा मेला है वो भी उधर चल रहा है। तो भैया देखिए, आज 25 जून रात 12 बजे तक जो है रूट डाइवर्जन है। आपको पता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी ट्रैफिक अपडेट। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको रेडियो के माध्यम से पता लग जाती हैं श्रोताओं, और अभी फिलहाल पता लगेगी मौसम की अपडेट क्या कहता है वेदर आज का। तो मैं देख पा रहा हूँ आज का वेदर एब्सोल्युटली ऑसम हो गया है। फिलहाल मुझे छाता नजर आ चुका है, 32 डिग्री सेल्सियस करंट अभी टेम्परेचर दिखा रहा है और हवाएं जो हैं आज वो 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। ह्यूमिडिटी ठीक है, एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है आज, और ये जो वेदर है अपना ये शाम होते होते 38 तक पहुंचेगा। और मतलब आज मुझे लग रहा है कि गर्मी तो देखिए हर दिन हो रही है, नो डाउट, अगर बादल आ भी जाएंगे तब भी गर्मी का एहसास तो भैया खत्म नहीं होगा। गर्मी जो है वो पूरे पीक पर है ना। बस ऐसे में आपको गर्मी से बचने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना है, आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल बात कर लेते हैं अभी एक मौसम विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट हमें मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें, इस वर्ष मानसून की प्रगति सामान्य से बहुत पीछे चल रही है। आपको बता दें 23 जून तक देश भर में सामान्य से 42% कम बारिश दर्ज की गई है और देश के लगभग आधे हिस्से को अभी तक जो है मानसून का इंतजार है। एंड आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 47%, बिहार में 44% और झारखंड में सामान्य से 65% वर्षा की कमी दर्ज की गई है श्रोताओं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जो है 20 से लेकर 59% तक जो है कम बारिश की जो एक कमी है वो दर्ज की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि बारिश और मानसून देखिए अलग ही नाता है ना, बट अभी बताया जा रहा है कि मोस्टली जो है मानसून 22 या 23 तक आ जाता है, बारिश की जो है ये जो बारिश है वो हो जाती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, जून जाने को है। तो ऐसी इसीलिए जो है ये टेम्परेचर अभी जो बताया जा रहा है यहाँ पर, और ये भी बताया जा रहा है कि बारिश अभी हो सकता है 27 जून तक जो है हो जाए। अभी पिछले दिनों मैंने रिपोर्ट आपको बताया था कि 20 से 24 तक वेदर चेंज हो सकता है, बट अभी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं 27 जून तक जो है मानसून पहुंच सकता है, यानी कि बारिश जो है वो पहुंच सकती है। बारिश की जो छुटपुट बूंदें हैं वो डेफिनेटली आपके और हमारे घर के आंगन में गिर सकती हैं। अब देखते हैं भाई कितना ज़्यादा वेदर का ये जो रिपोर्ट है वो जेन्युइन होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जेन्युइन तो मेरे लिए यहाँ पर आपके मैसेज हैं जो आप डेफिनेटली उस तक पहुँचाते हैं। एक संदेश मेरे पास पहुँचा है, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग, आप कैसे हो? आई एम गुड मैम, आई एम गुड। लिखती है, शिकायत कम और शुक्र ज्यादा करो, जीवन सुंदर लगने लगेगा। ब्यूटीफुल थॉट।
थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ जुड़ी है पार्वती जी। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? सुप्रभात। सुबह सुबह आपके गाने और आपकी बातें दोनों सुनकर बहुत मजा आ जाता है। एंड यू आर माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी। हरे मैम, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। एंड ऐसा एक्चुअल में आपको दूं तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो बस कोशिश होती है कि हम यहाँ पर रेडियो पर अगर दस्तक दे रहे हैं तो आपके लिए कुछ बेहतरीन बातें हो और कुछ गीत संगीत बेहतरीन हो जो प्रोग्राम को थोड़ा सा और रोचक बना दे। और अभी फिलहाल एक बेहतरीन गाना आपके रेडियो सेट पे निकल गया है। आप जुड़ चुके हैं आरजी आनंद के साथ। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। पहली बार हाय हाय बजाते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: क्या मेरी कसम
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय
1: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: वेलकम बैक जी, 9:05 हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्सडे की सुबह आनंद के साथ हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 25 जून की मॉर्निंग है, बहुत सारे लोग निकल चुके हैं अपने कर्मास को जो है कंप्लीट करने, अपनी कर्म भूमि पर जाने के लिए रेडी हैं आप लोग। चलिए ऑल द वे बेस्ट, आप जहां भी जा रहे हैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऑफिस जा रहे हैं या आप मंदिर जा रहे हैं या आप अपने किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं, सो ऑल द वे बेस्ट मेरे दोस्त। फिलहाल ये जो पॉजिटिविटी का डोज है वो ऐसे ही मेंटेन रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे श्रोताओं ने मुझे प्यारे प्यारे क्या जबरदस्त मैसेज कर दिए हैं यार, थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी बिल्कुल करूंगा, इतने अच्छे मैसेज आप कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और अभी फिलहाल तीसरे घंटा मतलब शुरू हो गया है ऑन द वे बिंदास मॉर्निंग यू नो, वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है 7 से 10, लेकिन अभी 8:30 अपन की एंट्री हो रही है। फिलहाल अभी यहां पर वक्त 9:06 और अभी हम आपको एक काम की बात बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, बट एक गाने के बाद बताऊंगा मैं, इतनी जल्दी तो नहीं बताने वाला यार, थोड़ा टाइम लगता है ना बाबा, ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी बता देंगे आपको, अभी तो आए इतनी जल्दी, मतलब आपको काहे की इतनी जल्दी हो रही मेरे को बताओ जरा। फिलहाल के लिए जिगंदर से आने वाला ये गाना,
1: झुका करके तू जवाब दे कभी,
0: क्या बात है।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, दिलजीत बाजी का जो स्वैग है ना वो अलग ही यार, इतने कमाल के बाजी गाने बनाते हैं यार, मजा आ जाता है। वेलकम बैक है जी, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 रहे आप आरजी आनंद के साथ। और यार देखो बात ऐसी है भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आ जाते हैं इनके, फैक्ट जब मैं चेक करता हूँ तो मेरे को यार ऐसे ना पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है यार। वैसे भी हम इंडियंस की खास बात तो है यार, मतलब गड्डी शड्डी चलाने में तो अपन नंबर वन है यार, मानो या मत मानो, है जी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपन बाइक निकाल लेते हैं यार, छोटी छोटी अगर हमें छोटी सी सब्जी लेने और धनिया पत्ती भी लेने जाना है ना, तो भैया हम स्कूटी से जाएंगे, हम पैदल नहीं जाने वाले, भले वो घर के पीछे ही हमारी सब्जी वाले भैया बैठे हो जाए। खैर यार अभी एक रिपोर्ट्स आई है, एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जो है सामने आई है, मुझे लगा चलिए आपको बताता हूँ। और ये रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों में लोग रोज़मर्रा के सफ़र साधनों की तुलना मतलब इसमें की गई कि लोग जो डेली ट्रैवल करते हैं उनकी जो भी उनके पास टू व्हीलर वाहन है या फोर व्हीलर वाहन है उसके साथ एक छोटा सा कंपेरिजन किया गया है। आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 45-55% लोग नियमित रूप से बाइक या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। वहीं कार इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 7-10% बताई गई है अपने इंडिया में। यस, एंड अगर यानी अगर बात करें तो हमारी सड़कों की असली पहचान आज भी बाइक और दो पहियों वाहन से ही है। शायद यही वजह है कि हर गली और हर मोहल्ले में हर शहर की रफ्तार बाइक के दो पहियों पर दौड़ती नजर आ रही है। मुझे लगता है कि भारत की पहचान सिर्फ चाय और क्रिकेट ही नहीं है, बाइक भी है जनाब। आप सोचिए ना, इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे समझ, मतलब 45-55% लोग डेली इस्तेमाल करते हैं बाइक और मोटरसाइकिल का। सो ऑफकोर्स यार मुझे लगता है कि हम इंडियंस की पहचान सिर्फ चाय और क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, अब मुझे लगता है कि बाइक भी हो जानी चाहिए जनाब। और ये एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर दूसरी गली में बाइक गूंजती सुनाई देती है, कारों का क्रेज जरूर बढ़ रहा है, लेकिन आज भी भारत की सवारी का असली साथी दो पहिया वाहन ही है। आई डोंट नो क्यों, और मुझे लगता है कि ठीक है अपने पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ये निकालते हैं, फिर हम कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे आसपास हमें बहुत दिक्कत हो रही है। भैया देखिए, पेड़ पौधे हम कम लगा रहे हैं, पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा यार, है ना। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑफकोर्स यार जो चीज़ यूज़ के लिए बनी है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, मैं 100% इस बात से अग्री करता हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को कभी कभी ना हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार आपको यहाँ वॉक करके चले जाना चाहिए तो जाओ यार, आपको लग रहा है कि यहाँ साइकिल से जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप साइकिलिंग करो यार। एंड अगर आपको लग रहा है कि यहाँ बाइक की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गाड़ी की जरूरत नहीं है, तो फिर खम का ट्रैफिक क्यों बढ़ाना यार, मत ही निकालो यार। सबको बताया आपके पास बढ़िया वाली गाड़ी है, सबको बताया आपके पास जो बाइक है वो बहुत ही बेहतरीन वाली है ना। तो मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ इस रेडियो के माध्यम से कि छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लोग फॉलो करेंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप आनंद के साथ हैं, 9:17 हो गए स्टेशन क्लॉक में, एंड ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं। प्रगति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखती हैं आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आप बहुत ही अच्छे गाने प्ले करते हैं, सुन के बहुत ही मजा आता है, थैंक यू वेरी मच। एंड हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है यहाँ पर, हाई गुड मॉर्निंग, दिस इज मी मनप्रीत, हाउ आर यू मनप्रीत। मनप्रीत लिखते हैं आनंद जी सुबह सुबह सारी अपडेट आप कहाँ से ले आते हो निकाल के यार, बस यार रिसर्च करके ले आता हूँ, जो ट्रेंड कर रहा होता है वो आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी AI के वीडियोस इतने ज्यादा जेन्युइन हो गए हैं कि समझ नहीं आता, देखने वालों की आंखें धोखा खा जाएंगी, भाई ये रियल है ये फिर AI का इस्तेमाल है। अच्छा, AI से एक बंदे ने जो है ना कमाल कर दिया यार, मतलब कमाल ही कर दिया उस बंदे ने, क्या अच्छा खासा पैकेज बना रहा, जहाँ AI को लोग गलत गलत चीज़ों के इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं एक स्टूडेंट मेरी और आपकी उम्र का ही होगा, उसने कमाल कर दिया है भाई साहब, क्या किया है, इसका नाम आयुष है, इस बंदे ने क्या नया किया है, थोड़ी देर में इनके बारे में बात करेंगे। और आप भी AI से क्या नया कर सकते हो, ये तो भाई देखो आपके हाथ में, ये जो ChatGPT AI पे हम फालतू की चीज़ें पूछते रहते हैं ना यार, अगर हम काम की चीज़ें करें तो यकीन मानिए, आई एम टेलिंग यू, आप जिंदगी में बहुत बढ़िया कर सकते हैं भाई। ये जो हमारे आसपास जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं आजकल के ज़माने की, जो टेक्नोलॉजी है अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो यार। फिलहाल बड़ा मुझे भी करना है, एक बेहतरीन सा गाना प्ले करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बातें तो होती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप आनंद के साथ हैं, एंड ऑफ कोर्स ढेर सारे मैसेज तो आपको मुझे मिल ही रहे हैं, मेरे पास ढेर सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज FM मुरादाबाद। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको, जो मुझे लगता है कि बतानी बहुत ज़रूरी है, एक काम करते नहीं अभी, नहीं अभी नहीं, पहले एक काम करते फिर गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे तब हम आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा होल्ड करो, रुको जरा, सब्र करो, कहाँ
जा रहे हो भैया आप? बिल्कुल आप सही जगह पर आ चुके हैं। और क्या मैसेज क्या आया है? देखो ये मैसेज जो मेरे पास अभी आ गया है ना, मैं इसको पढ़ू या नहीं पढ़ू? नहीं अभी नहीं पढ़ता मैं, फिर आके पढ़ूंगा। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9837896896 पर, 9837896896 दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:19, यहाँ पे आनंद के साथ गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
8: क्या मेरी कसम,
7: मिस कर दिया तो रीलोड।
9: चाय चाय चाय,
7: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
10: Chill out, so drop it low, man.

वेलकम बैक जी वंस अगेन आनंद के साथ हैं आप 9:26 हो गए स्टेशन क्लॉक में। और अभी फिलहाल भैया इंस्टाग्राम पे जो एक गाना एकदम गोविंदा वाइब्स वाला बहुत ट्रेंड कर रहा है, आई डोंट नो आपको भी लग रहा होगा कहाँ से आया कैसे आया। देखो भाई समीर रैना का जो है वापस आ गया है शो एंड शर्वरी आलिया भट्ट साथ में है। एंड सबसे मजे की बात है ना समीर रैना का जो शो होता है ना उसके अंदर इंटरेस्टिंग बात पता क्या होती है जो एक्चुअली मुझे लगती है ना आई फील ये इस शो में डेफिनेटली इसकी ना एक USP है शो की यार। हाँ जी, तो देखिए समय रहना का शो के अंदर जो भी बंदा आता है ना सबसे पहले तो वहां पर सबको अपना अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलता है, सबका टैलेंट शोकेश हो जाता है, प्लस सब लोग लाइमलाइन में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो एक टैलेंट रखने का एक मौका होता है तो बहुत फायदा होता है उनके फॉलोवर्स को। सबसे मजेदार पता है क्या चीज लगती है कि मेरे को भी लगती है यू नो जो समय रहना के शो में जाते हैं या तो उनके फॉलोवर्स गेन हो जाते हैं या फिर उनका कोई गाना यू नो वायरल हो जाता है। जैसे अभी उन्हीं एक बंदे ने किसी ने तो एक ऐसा गाना गाया जो आजकल इंस्टाग्राम पे लूप पे लोगों की चल रहा है, इंस्टाग्राम की प्ले लिस्ट में लोगों के भरा पड़ा है एंड फुल ऑन गोविंदा वाइब्स ही गाना है। आई डोंट नो मुझे भी नहीं समझ आया गाना आया कहां से कैसे आया, सीरियसली आई हैव नो आइडिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ही गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। चलो आपको सुनवाता हूं फुल ऑन गोविंदा वाइब्स। मतलब इतना ट्रेंड कर रहा है गाना सोशल मीडिया पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना ज्यादा वायरल हो रहा है जो भी बंदा इस पे यू नो इसको सुन रहा है वो डांस करने में मजबूर हो रहा है यार। सच में फुल ऑन वाइब है इस गाने में और ये समीर रैना के शो की ना स्पेशलिटी है। मैं बता रहा हूँ जो वहां आता है भाई कुछ ना कुछ वायरल हो ही जाता है उसका, जैसे कि ट्रैक है ना मजेदार ट्रैक यार, आई स्वेयर सच बता रहा हूँ यार।

है ना गोविंदा वाइब्स, मतलब आई स्वेयर बता रहा हूँ, लिटरली डांस करने में मजबूर हो जाओगे। इंस्टाग्राम पे जेंजी की प्लेलिस्ट में गाना आ गया है, इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, लोग जम के रील्स बना रहे हैं इस गाने पे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया, समय रहने के शो की यूएसपी है, वहाँ पे जो भी बंदा आता है ना उसको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग मिल ही जाता है, या तो उसके फ्लो वो गेन हो जाते हैं या फिर उसके जो टैलेंट होते हैं ना वो पब्लिक के सामने आते हैं। जैसे किसी बंदे ने गाना गाया बहुत ट्रेंड कर रहा है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मजेदार लग रहा है यार। चलो फिलहाल अभी इससे ज्यादा तो नहीं बजा पाऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब मेरे वाले गाने कौन सुनेगा यार, तो मुझे अपने वाले गाने भी तो सुनाने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी मैं लौट कर आता हूँ एक और खास बात के साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी एआई के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बात बता रहा था ना, यस उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सो डोंट गो एनीवेयर, आप सुनते रहिए आरजे आनंद को, अभी लेटेस्ट खबरें जो है आपको मिलती रहेंगी, क्या कुछ चल रहा है आपके आसपास, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।

हाँ, अगर आप मेरे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मजेदार गेम आपके लिए लेकर आया हूँ आज की सुबह, अगर आप ये गेम जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे को व्हाट्सएप करना होगा। थोड़ी सी देर में एक मजेदार गेम खेलेंगे जो डेली आपके साथ खेलते हैं, उस गेम को खेल के आपको मजा आ जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लेकर आया हूँ आज की सुबह, एंड ऑफकोर्स इस गेम को खेल के आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए एक मजेदार गाना निकाल दिया मैंने आज की सुबह, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद विद यू, थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। वी कम बैक, दिस इज थर्सडे की सुबह।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: हे, यू आर ट्यून्ड टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।

ओ मेरी जोहरा जबी ओ मेरी ओ मेरी जोहरा जबी। सिकंदर से भी आप सुने थे, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना। इस बेहतरीन से गाने के बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन। भैया क्या आप एसी को रात भर चलाते हैं, और क्या रात भर एसी चलने से खराब हो सकता है क्या? ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। और अभी एक अपडेट है, एसी की बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप भी पूरी रात एसी चलाते हैं? तो अच्छी खबर यह है कि मॉडर्न एसी रात भर चलाने के लिए ही बनाए जाते हैं, और इसमें जो ऑटो कट्स ऑफ वो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इसके लिए सामान्य तौर पर इनका ख़राब होने का खतरा नहीं रहता, ऐसे बताया जा रहा है। और हालांकि बेहतर परफॉर्मेंस और कम बिजली के बिल के लिए एसी को 24 टेम्परेचर पर अगर आप चलाते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और साथ ही नियमित सर्विस और सही वायरिंग और ज़रूरत के अनुसार अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया रात को एसी में तो 16 पी लगा के सोएंगे तो हमारा बढ़िया से जो है गर्मी से हम थोड़े बच पाएंगे, तो ये आपने नहीं कर रहा है। 24 डिग्री जो है अच्छी, अगर आपका आपको लग रहा है तो चलो एक नंबर और घटा दो, चलो 23 पे कर लो, है ना। इससे ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बोलोगे पाजी इतना लंबा चौड़ा बिल दे दिया आपने मेरे को। हाँ फिलहाल अभी जूही चावला बॉलीवुड एक्ट्रेस जो हैं बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में हैं। आपको बता दें भैया, आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटी भी जो है बाज़ार की चीज़ों को नुकसान वाली ही मानते हैं, और कई सेलिब्स और कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, कई एक्टर एक्ट्रेस ऐसी हैं जो अपने घर में ही ऑर्गेनिक खेती करती हैं। उनमें से नाम आया है जूही चावला जी का। जी हाँ, वो अपने घर में ही खेती करती हैं, और उनका कहना है कि वो सारी सब्जियाँ घर पर लगाती हैं फ्रेश, और अपने गार्डन में ही उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें लगाई हुई हैं जिनको वो अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करती हैं। जैसे कई लोग बागवानी करते हैं, वैसे ही जूही चावला जी हैं, वो अपने घर में ही छोटे छोटे जो है सब्जियां उगाती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाती हैं, और वो अपने घर में ही पूरी गार्डनिंग करती हैं, जैसे कहते हैं होम गार्डनिंग पर जो है वो खूब जोर दे रही हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं इसी वजह से वो। जी हाँ, आपको बता दें वो अपने घर में ही खेती करना शुरू कर चुकी हैं और ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाती हैं, जैसे फल वो घर में उगा रही हैं। उन्होंने बताया कि भैया जूही चावला जो है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुद को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट है, स्पेशली अपने आसपास के खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट है। 58 ईयर्स की हो गई हैं ये एक्ट्रेस जूही चावला जी, उसके बाद भी वो जो है देखिए गार्डनिंग कर रही हैं, घर में सब्जियां उगा रही हैं, कितनी अच्छी बात है। जूही चावला जी ने बताया कि वो अपने घर में जब भी उन्हें टाइम मिलता है बीच बीच में गार्डनिंग करती हैं, और अपने घर के खुद के बगीचे में वो छोटी छोटी चीज़ें लगाती हैं, जैसे वो खुद धनिया उगाती हैं, टमाटर उगाती हैं, और भी छोटी छोटी सब्जियाँ हैं जो अपने घर में ही उगाती हैं, और खुद जो है ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं बहुत ज़्यादा फ्रेश बची नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रही नहीं है, इसलिए जूही चावला खुद करती हैं अपने घर में खेती, मेथी से लेकर धनिया और टमाटर सब कुछ उगाती हैं। बताइए ये जज्बा है यार, यही तो बात है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों ने जो है बहुत सारे व्हाट्सएप किए हैं उसके लिए शुक्रिया। मैं अभी आपको बता रहा था एआई के बारे में। देखिए एआई से जहां लोग बहुत सारी पॉजिटिविटी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एआई का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, और फिर उनकी अच्छे से जो है वो कह सकते हैं कि भैया खातिरदारी भी होती है। तो इसीलिए अगर सोशल मीडिया या कोई भी इस तरह की चीज़ें चैट जीपीटी एआई अगर हमारे आपके लिए आया है तो वो अच्छे बेनिफिट के लिए आया है, उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अभी इस भाई साहब ने कर दिया, 19 साल के भारतीय युवक ने जो है भाई साहब कमाल कर दिया है, एआई से हर महीने ये इतना अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बताइए 19 साल का ये बंदा आयुष इसका नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से इन्होंने सफलता की एक नई मिसाल कायम कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष ने एआई आधारित बिजनेस से जो है वो हर महीने करीब करीब 1 करोड़ रुपये की जो है कमाई कर रहे हैं, एंड इतनी कम उम्र में उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे उन्हें एक युवा उद्यम की सूची में जो है एक नई पहचान मिल गई, एक नए कम उम्र के युवा बिजनेसमैन की लिस्ट में जो है शामिल हो गए। आयुष की सफलता की कहानी अब सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है एंड बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच उनका सफ़र और उनकी बात जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जा रही है। वो कहते हैं ना, अगर आप सही सोच के साथ सही चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जो है ज़िंदगी में वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो। और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर इंसान की अपनी एक यूएसपी होती है, ज़रूरत है उसको तराशने की, उसको पहचानने की, है ना। और ये जो हमारे आसपास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी चीज़ें सुपर फास्ट हो रही हैं, अगर हम चाहें तो इनसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ऑल द वे बेस्ट। और ऐसे आयुष जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें करने में बिलीव करते हैं, अगर आप भी ऐसा बिलीव करते हैं क्रॉस योर फिंगर एंड बस अपनी मेहनत पे बिलीव करते रहें मेरे दोस्त। काश मैंने भी थोड़ी अच्छी किताबें पढ़ ली होती तो आज मैं भी कहीं और होता,
है ना, बट मैंने मैगजीन ही पढ़ी, मैंने बॉलीवुड की इन्फॉर्मेशन पढ़ी, इसलिए मैं आज रेडियो जॉकी बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, खैर रेडियो जॉकी भी इतनी बुरी बात है नहीं वैसे, है ना। अगर अच्छी किताबें पढ़ते तो शायद यहाँ नहीं होते, कहीं और होते यार। लेकिन वेल कोई बात नहीं, रेडियो जॉकी भी बहुत ही अच्छी जॉब है। आई लव माई जॉब यार, आई एम वेरी पैशनेट एंड वेरी डेडिकेटेड इन माई वर्क। आई एम सुपर ग्लैड यार, आप लोगों से बातचीत करना कौन नहीं चाहेगा यार। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ढेर सारी बातचीत होगी। एक कड़क क्वेश्चन है जिसका जवाब आप मुझे पहुंचा सकते हैं आज की मॉर्निंग। अगर आप देंगे इसका सही जवाब तो आप बन सकते हैं हमारे शो के सुपरस्टार। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या करना होगा आपको उसके लिए? बस मेरा क्वेश्चन को जो है आपने ध्यान से सुनना है। अगर आप इसका जवाब ध्यान से देंगे तो आप बन जाएंगे मेरे शो के सुपरस्टार। दिस इज वेरी सिंपल यार, कुछ भी नहीं करना है आपने, बहुत ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है आपकी। बस बॉलीवुड की मेमोरी चेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं करने वाला हूँ खुराफात आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल के लिए राइट हियर एक अच्छा गाना प्ले कर रहा हूँ, एंड वेलकम टू द जंगल मूवी 25 है ना आज रिलीज हो रही है क्या यार? पूरे वर्ल्ड से ब्यूटी दा अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, अक्षरा स्टारिंग बाय कमाल के स्टार कास्ट। बात करते हैं ना उसके बारे में जरा हौली हौली। लेकिन अभी के लिए है जवानी तो इश्क होना का ब्रांड न्यू गाना था, ये अभी भी ब्रांड न्यू है यार। हम सभी की इंस्टाग्राम पे लिस्ट में है। हाय हाय आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन। यह थर्सडे की सुबह, आई विल बी राइट बैक।

0: क्या बात है यार, गाना तो बहुत ही बढ़िया था। चलो आगे बढ़ते हैं और इसी बढ़िया से गाने के बाद आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप लोग निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग डेस्टिनी पर, सो ऑल द वे बेस्ट। अच्छी बात है, निकलिए निकलिए यार। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तीन बॉलीवुड एक्टर की आवाजें यहाँ पर प्ले होंगी, आपको बस पहचानना है तीन बॉलीवुड एक्टर कौन कौन से हैं। एक एक्ट्रेस हैं, दो एक्टर हैं, आइडेंटिफाई करना है। 3, 2, 1 गो स्टार्ट। ये रहा मेरा आज का सवाल।
1: अम्मा क्या करूं, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं।
2: 89.6 FM।
3: नहीं समझ आता,
4: बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के। अगली बार थाने में कंप्लेन कर देंगे, मोलेस्टेशन के जुर्म में सीधा अंदर हो जाओगे। ये बात अपने भेजे में घुसा कर ताला मार लो।
2: 89.6 FM।
5: मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम। और अभी आपने जो तीन लोगों की आवाजें सुनी वो कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका नाम आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है 9837896896 पर। उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर। उसको सेंड किधर करना है भाजी? मेरे नंबर पे करना है जी, 9837896896। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा आज का कड़क सवाल है। थर्सडे की सुबह तीन एक्ट्रेस की आवाजें आपको सुनने को मिल रही है, दो एक्टर हैं मेल और एक फीमेल एक्ट्रेस हैं। कौन है ये, इनको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से हीरो हीरोइन की आवाजें हैं ये।
1: अम्मा क्या करूं, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं।
2: 89.6 FM।
4: नहीं समझ आता, बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के। अगली बार थाने में कंप्लेन कर देंगे, मोलेस्टेशन के जुर्म में सीधा अंदर हो जाओगे। ये बात अपने भेजे में घुसा कर ताला मार लो।
2: 89.6 FM।
5: मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का।
0: कौन कौन से तीन हीरो हीरोइन की आवाज, यानी कि दो एक्टर और एक फीमेल एक्टर हैं, कौन कौन है ये, इनका नाम आपने मेरे को बताना है। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको व्हाट्सएप कर दो यार फटाफट से। अपनी प्यारी सी आवाज भी पहुंचा सकते हो यार, आनंद मेरी प्यारी आवाज में ये रहा भैया तेरे सवाल का जवाब, ऐसे करके भी बता सकते हो आप। फिलहाल आनंद को सुन रहे हैं, आई विल बी राइट बैक इस गाने के उस पार।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7066002430।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: आज तो भैया सुबह से मंदिरों के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई है। कहीं पर रोपवे का वितरण हो रहा है, कहीं पर पानी का वितरण हो रहा है, तो कहीं पर लोग छाता लेके जा रहे हैं देने के लिए। कोई लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज निर्जला एकादशी है, बहुत ही स्पेशल जो है मानी जाती है ये, एकादशियों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है ये। तो भैया जो लोग आज इसका व्रत कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये व्रत इट्स नॉट ईजी, पूरा दिन आप पानी नहीं पीने वाले हो, पूरा दिन आप कुछ खाने नहीं वाले हो, तो कहीं ना कहीं बड़ा टिपिकल भी होता है। लेकिन जो लोग यू नो इस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, इन चीज को मानते हैं, उनके लिए क्या ही भारी क्या ही मुश्किल है। आप फिलहाल भारी मुश्किल से मुझे याद आया कि आप ये सवाल का जवाब दो। तीन बॉलीवुड एक्ट्रेस की आवाजें हैं, पहचाननी है आपको कौन कौन है ये।
1: अम्मा क्या करो, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं।
2: 89.6 FM।
3: नहीं समझ आता, बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के। अगली बार थाने में कंप्लेन कर देंगे, मोलेस्टेशन के जुर्म में सीधा अंदर हो जाओगे। ये बात अपने भेजे में घुसा कर ताला मार लो।
2: 89.6 FM।
4: जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का।
0: यही आपको तीनों आवाजें पहचाननी है, लास्ट मौका है आपके पास। 9:56 हो गए हैं, आरजे आनंद के साथ हैं आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। तो बिना किसी देरी के व्हाट्सएप कर दो, देखते हैं कौन बनेगा आज हमारे शो का सुपरस्टार। अभी लौट कर आ रहा
5: हूँ।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बहुत ही बढ़िया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, अच्छा गाना भी आपने सुना। 10:04, मेरा जाने का समय हो गया है फिलहाल, अगर जाऊंगा नहीं तो फिर आऊंगा कैसे, है ना। तो जाना बहुत जरूरी है, मेरा भी समय हो गया है यहाँ से निकलने का, खिसकने का। और अभी फिलहाल जाने से पहले मैंने आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना था। बहुत ही अच्छा सा सवाल था, बस तीन आवाजें आपको पकड़नी थी, कौन कौन से हीरो हीरोइन की वॉइस थी।
1: क्या करूं, सबको आती नहीं, मेरी शादी नहीं।
2: 89.6 FM।
3: नहीं समझ आता, बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के, अगली बार थाने में कंप्लेन कर देंगे, मोलेस्टेशन के जुर्म में सीधा अंदर हो जाओगे। ये बात अपने भेजे में घुसा कर ताला मार लो।
2: 89.6 FM।
4: मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का।
0: बस यही आपको बताना था कि ये तीन कौन कौन से हीरो हीरोइन की वॉइसेस हैं, एंड बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बट इसमें से कोई एक लकी विनर हमारे साथ जुड़ेंगे, और आज की सुबह हमारी सही जवाब देने वाली विनर का नाम डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन इन्होंने सही जवाब दिया है। पहले सही आंसर सुनो, इसमें सबसे पहली आवाज थी टाइगर श्रॉफ, एब्सोल्युटली राइट, वरुण धवन एग्जैक्टली, एंड आलिया भट्ट इन्होंने बताया, बिल्कुल सही जवाब था। डॉक्टर वर्षिका जी कंग्रेचुलेशन, आज की सुबह आप बनती हमारे शो की सुपरस्टार, आपने एकदम सही जवाब दिया है, बहुत बहुत बधाइयां। नंबर की 4 digit 8352। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने दिया था मुझे आज गलत जवाब, एग्जैक्टली मतलब मुझे लग रहा है कि नए नॉलेज थोड़ी कम है बॉलीवुड एक्ट्रेस की, आप लोगों को सेलिब्रिटीज की। और इन्होंने क्या पहुंचाया था,
5: राधे राधे, टाइगर श्रॉफ, आलिया भट्ट और वरुण धवन की आवाज है ये।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपको तो सारे आंसर्स पता होते हैं अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव फीलर जी जुड़े थे नवीन नगर से, लिखते हैं हेलो आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गौरव जी। गुलाम जलानी पाशा जी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद कामिल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नासिर हुसैन साहब जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लिखते हैं आपकी मोटिवेशनल संदेश हर दिन एक नई सोच और नई ऊर्जा को आगे बढ़ाने का हौसला देते हैं, आपकी सकारात्मक बातें सुनकर दिन की शुरुआत और भी बेहतरीन हो जाती है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही पेश करते रहिए शो, थैंक यू मेरे भाई। गली नंबर 1 करूला मुरादाबाद से जुड़े थे नासिर हुसैन साहब। बबली अनजान कश्यप लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग, निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं, जय श्री राम। आनंद जी हम तो पीतल लगड़ी में काम कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, बहुत बढ़िया। सहारनपुर से जुड़े हैं हमारे रेगुलर लिसनर जोन रोजी पलविलिस, लिखते हैं टेंशन डिप्रेशन और वेदन इंसान को तभी होते हैं जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, 100%। और ये जो डिप्रेशन टेंशन और वेदना आपने लिखी है ना, बिल्कुल ये तभी ज़्यादा होती है दिमाग में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जय श्री राम। आनंद जी कैसे हालचाल है, मुंबई से बबलू सैनी जुड़े हैं, रेडियो वाला आनंद को विक्की सागर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, चमन लाल साहब भी जुड़ चुके हैं आज की सुबह, एंड इसके अलावा सोनू जी मेरे साथ जुड़े हैं, सोनू कुमार सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से, इनको हमारा शो अच्छा लग रहा है जी, शुक्रिया। हेलो हाय आनंद जी कैसे हालचाल है, हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर कासिम अली जी, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, गुड मॉर्निंग सर। बेबी राधिका जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग जी, आज हमारी मदर का एकादशी का व्रत है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग आनंद भाई, मोहसिन अंसारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए गाइस फिलहाल अब मैं निकलता हूँ, 10:07 हो रहे हैं, कल हम आपसे जरूर मिलेंगे इस स्टेशन पे, बाकी सोशल आप फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल आईडी एफ एम मुरादाबाद 89.6, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, और मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं एफ एम मुरादाबाद के साथ साथ, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको सारे और भी आर्जेस दिखेंगे, सबको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे ऐसे ही सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद, बाय।

0: क्या सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
0: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का दोस्तों स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है थर्सडे का। जी हाँ, गुरुवार की सुबह, वक्त हुआ है 10:19, 25 जून की तारीख है और अपने आप में ये तारीख बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूँ, आप सभी का फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, आज निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हरि विष्णु भगवान की कृपा आप सभी के परिवार पर और आप पर सदैव बनी रहे। आप जो चाहते हैं वो सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। साथियों, निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, ये सब आपको अभी धीरे धीरे जानने को मिलेगा। आप बने रहिए आरजी खुशी के साथ। और हाँ साथियों, आप भी अपने संदेश मुझे पहुंचा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आज की सुबह मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है आप सभी के लिए, जॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है, मुस्कुराएगा आप। आज की सुबह बहुत स्पेशल है दोस्तों, और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम से, एंड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये ट्रैक। तो मैंने कहा मैं अकेली नहीं अपने श्रोताओं को भी सुनवा देती हूँ। उदित नारायण जी साथ में, अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है 10:30। और दोस्तों आज 25 जून को पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है निर्जला एकादशी। दोस्तों हर साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं भक्त, और पूरे दिन अंतो दूर जल का भी त्याग कर व्रत रखते हैं। अब सवाल यह है कि निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है। श्रोताओं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था और वे अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे। तब महर्षि व्यास जी ने उन्हें वर्षों में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। कहा जाता है कि इस एक व्रत का फल सभी एकादशियों के बराबर मिलता है, तभी से ये व्रत विशेष महत्व रखता है। साथियों, निर्जला एकादशी का महत्व भगवान हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। जल, फल, वस्त्र और अन्न का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। आप मिट्टी का कलश जल भरकर भी दान कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, एंड जो मौसमी फ्रूट्स हैं वो भी आप डोनेट कर सकते हैं। और दोस्तों गर्मी का मौसम है, इसलिए यदि आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखिए और अपनी क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को कीजिएगा। आज इस पावन अवसर पर भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख शांति सफलता और समृद्धि का वास हो। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी उपवास रखा है, और हमारे पास यहाँ पर लगातार बहुत प्यारे प्यारे संदेश आ रहे हैं, तो चलिए उनको भी जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर बड़ा प्यारा सा वॉइस नोट आया है, उसको भी हम शामिल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गेश जी का, जय श्री राम खुशी मैम जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, कोयल सी तेरी बोली। ओए होए, कौन है जिनकी बोली आपको कोयल सी लगती है। हाँ, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मेहराजुद्दीन जी का कश्मीर से, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। एंड हमारे पास एक वॉइस नोट आया है दोस्तों, तो उसको भी हम क्विकली शामिल करते हैं। क्या पहुंचाती है मैम, जरा उनकी आवाज़ हम सुन लेते हैं।
1: राधे राधे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और वह एफएम सुनने वालों सभी भाई बहनों को। खुशी एक गाना सुनवा देना, डिस्को डांसर मूवी से है, कृष्णा धरती पे आ जा तू, कृष्णा कृष्णा कृष्णा प्यास दिखा था तू।
0: अरे वाह,
1: खुशी आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, हम लोगों को बहुत ही जानकारी अच्छी प्राप्त हो जाती है कि व्रत क्यों रहा जाता है। हमारे बच्चों को भी ये जानकारी मिलेगी कि ये व्रत किस लिए रहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है आपका।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए और ये सब हमें मिल जाता है तो बाकी और किसी चीज़ की हमें नीड ही नहीं है। धन्यवाद, आपने इतना प्यारा सा वॉइस नोट हमें पहुंचाया है। एंड दोस्तों चलिए कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मत जाइए, यूँ ही स्माइल कीजिए और हाँ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सब भी सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और खुशी आपसे कहती है कि देखिए दोस्तों, हमने तो उपवास रखा है इसलिए हम पानी नहीं पी सकते हैं, बट अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो आप पानी पी लीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल करती हूँ। आपने अभी बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, कृष्णा धरती पे आजा तू कृष्णा, एंड इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट में भेजी थी अलका वर्मा जी ने बुद्धि बिहार से, फ्रॉम द मूवी डिस्को डांसर से। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज और आए हैं, हमें मैसेज मिला है यहाँ पर मौसी मंसारी जी का, काशी नगरी बनारस से। कहते हैं, खुशी जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे ही होंगे। और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, सरताज अंसारी सी, सदाम अंसारी जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से। कहते हैं, आरजी खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से। कहते हैं, खुशी मैम हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं कि जीवन में कुछ भी एक तरफा नहीं चलता, इसीलिए किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। क्या पता तुम दान नहीं बल्कि पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। यदि पाना चाहते हो तो देना भी सीखो, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या सहयोग। एग्जैक्टली राइट सर, जो हम देते हैं रिटर्न में वही हमें मिलता है। बिलीव इन कर्मा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं इस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, निर्जला एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं खुशी जी। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, कुछ और गीतों का आनंद लेते हैं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा सवाल मैं आपसे मालूम करूंगी और आप उसका जवाब मुझे पहुंचाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो श्रोता है ना, वो बहुत बड़े फिल्में भी हैं और गानों के शौकीन भी हैं, गाने सुनने के भी और गुनगुनाने के भी। हाँ रीना,
1: बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं।
0: देखिए रीना जी भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, कह रही हैं कि हमारे लिस्टनर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपकी सुबह सुबह इतनी तारीफ हो रही है। ओए होए होए, क्या बात है आसो, हाँ हाँ, खुशी बहुत ज्यादा हो रही है। जब अपनी तारीफ सुनने को मिल जाती है ना, तो दिन और ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है, क्यों रीना? तो चलिए दोस्तों, इसी मुस्कुराहट के साथ सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, जाओ चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा।

0: की बात क्या है मुझे नहीं मालूम है, आप ही सुनिए, सुन लीजिएगा। मैं बस लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार।
1: नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा।
0: अच्छा आपके पास है?
1: हाँ मेरे पास है।
0: ओके हाँ तुमने लिया यार, बहुत ब्यूटीफुल है तुम्हारा लहंगा। एंड चलिए दोस्तों ये ट्रैक सुनते हैं। वैसे मिल जाएगा, बस पैसा चाहिए भैया, आजकल हर चीज मिल सकती है। क्यों? सेम चीज नहीं मिलती है। हाँ मतलब मिल सकती है लेकिन सेम नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली राइट, डिफरेंट तो होता ही है। बाकी दोस्तों ये ट्रैक सुनो।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला, जहां पर कुछ मसाला लगता है आपकी मजेदार बातों का और मजेदार गानों का, एंड इन्फॉर्मेशन भी लगातार आपको मिलती है। और साथियों, वक्त हुआ है 11:02 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। और दोस्तों, आज का दिन बेहद पावन और आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है, क्योंकि आज मनाई जा रही है गायत्री जयंती। जी हाँ दोस्तों, माँ गायत्री को वेदों की जननी और ज्ञान बुद्धि तथा प्रकाश की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और सही दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है गायत्री मंत्र। तो अच्छा श्रोताओं, आपके घर में छोटे बच्चे तो होंगे, चाइल्ड, उनको गायत्री मंत्र आता है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उनकी वॉइस नोट हमें पहुँचाए गायत्री मंत्र। हाँ जी, वो अपनी आवाज़ में हम तक पहुँचाएगा, एंड हम सुनना चाहते हैं कि आपके बच्चों को गायत्री मंत्र वैसे तो आता है, आप नो डाउट आप बहुत ही अच्छे उनको शिक्षा संस्कार देते हैं, लेकिन हम सुनना चाहते हैं कि कितने बच्चों को गायत्री मंत्र आता है। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे रिकॉर्ड करवाइए वॉइस नोट गायत्री मंत्र और भेजिएगा हमें। नंबर है 9837896896। और साथियों, गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हम परम दिव्य शक्ति का ध्यान करें, जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे और हमें सही मार्ग दिखाए। आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से मन को शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही ये दिन हमें ज्ञान, सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देता है। और क्योंकि आज गुरुवार भी है, जो भगवान हरि विष्णु भगवान की आराधना का दिन माना जाता है, इसलिए आज अपने गुरुजनों, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना ना भूलिए। उनके आशीर्वाद से जीवन की राह और भी आसान बन जाती है। और साथियों, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और गुरु से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं, इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और हम भी अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो संदेश आए हैं वो भी आप तक पहुँचाते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टेलर जी का, और ये कहते हैं, खुशी जी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने लिखा है कि खुशी जी, आपके कार्यक्रम बहुत ही बिंदास होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारियाँ भी बहुत अच्छी लेकर आती हैं आप, आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है। ओहो, मुझे पता नहीं था, थैंक यू आपने मुझे बताया। एंड इन्होंने और कुछ लिखा है यहाँ पर। ओके, इन्होंने एक प्यारे से ट्राय की रिक्वेस्ट भी भेजी है हमें, दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। ओके, ये ट्रैक हम ज़रूर आपको सुनवाएंगे। इन्होंने कुछ और पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हैं कि नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। हाँ, ये बात तो सच है, जब कोई इंसान मेहनत से, सफलता से आगे बढ़ता है ना, तो उसे लोग पीछे, मतलब पुश करने वाले बहुत होते हैं, गिराने वाले, पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो अगर उस सक्सेस तक पहुँचे, उन्हें वो कामयाबी मिली है, तो उसके पीछे उन्होंने कितना संघर्ष किया है। संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता, सफलता सबको दिखाई देती है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है राधिका का, और ये कहती है, खुशी मैम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, आज मेरी मम्मी जी का भी एकादशी का व्रत है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से भी आप सभी को। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, नमस्कार मैडम जी, आपको भी नमस्कार। उमा शंकर जी का मैसेज हमारे पास आया है, और
रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, और साथ में इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भी हमें भेजी है। हम पूरी कोशिश करेंगे सर इसको प्ले करने की। धन्यवाद, आपने अपना संदेश पहुंचाया है। श्रोताओं, आप भी अपना मैसेज हमें पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपकी अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना सुर निगम साथ में साधना सरगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। हमको मालूम है इश्क, और दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ समय, वक्त हुआ है 11:18 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। आपके लगातार खूबसूरत संदेश भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है पूजा जी का विकास नगर से, और ये कहते हैं आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राइट नाउ, जय श्री राम खुशी जी, कैसे हाल चाल है? खुशी जी तो बहुत अच्छी हैं, सो आप बताइएगा आप कैसे हैं। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, और इन्होंने एक हरियाणवी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। धन्यवाद अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर आरजे खुशी सिस्टर जी को, हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, शानदार प्रोग्राम, लाजवाब प्रस्तुति। अजीत कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है, साथ में इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना जी हैं, ग्राम पोस्ट लदावली से ये मैसेज पहुँचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रामपुर से शबनम जी का, और साथ में राहत अली जी हैं, नेहा जी हैं, लाइबा काजमी हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं कि खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे, खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे, सुकून बनकर तेरे दिल में उतर जाएंगे, तुम महसूस करके तो देखो एक बार, दूर होकर भी तुम्हें तुम्हारे पास नजर आएंगे। ओ माय गॉड, भाई जान लेकर मानोगे क्या आप? हाँ, इतनी खूबसूरत लाइनें आपने भेज दी हैं और हमें पूरा एहसास होता है कि हम आपके करीब हैं और आप हमारे करीब हैं। थैंक यू शबनम जी अपना संदेश पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल हैं? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ कैसे हाल चाल हैं आपके? ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं शादी जी मुरादाबाद से। एंड दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, आप तैयार हैं ना? अगर आप रेडी हैं तो हम पूछेंगे, लेकिन हाँ एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पर आप ध्यान से अपने कानों को रेडियो की ओर लगाए रखिए, लेकिन हाँ फोकस आपका अपने काम पर होना चाहिए। और चलिए सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, बस आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं भी आपसे कहती हूँ, भैया तुसी कल ना जाया करो वरना नजर लग जाएगी। इनमें सोने बन के तुसी जाते हो। हाँ, अभी आपने ये ट्रैक सुना, बहुत ही प्यारा सा, भरी बाजार बेबी, कल्ले ना जाना नहीं तो शोर मच जाएगा। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी नमस्ते इंग्लैंड से। और इस ट्रैक को गाया था विशाल ददलानी, साथ में पायल देव ने एंड बादशाह बी पराग जी की बहुत ही अमेजिंग वॉइस में ट्रैक आपने एंजॉय किया। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक मैंने आपसे कहा था ना कि क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया है दोस्तों, तो एक सवाल मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ और आप उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं जानती हूँ बहुत ध्यान से आप इस समय रेडियो को सुन रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के, इंतज़ार कराए बिना आपसे पूछ लेते हैं जो सवाल हमने आज के मॉर्निंग यहाँ पर आपके लिए चुना है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, मैं एक डायलॉग प्ले कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये डायलॉग कौन से फिल्म का है। जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि ये डायलॉग कौन से फिल्म का है। जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनवाते हैं आपको।
1: राम, कौन बोल रही हैं आप? जो सवाल मुझे करना चाहिए वो तू कर रही है। कहाँ है वो? क्या तेरे पल्लू में छुप के बैठा है?
2: रॉन्ग नंबर।
1: रॉन्ग नंबर तू है, मैं राइट नंबर हूँ। चल जा बुला उसे।
2: प्रेम, प्रेम।
1: हेलो,
2: कहाँ है वो?
1: कौन?
2: वो तेरा गुलाम।
1: कौन बोल रही हैं आप? जो सवाल मुझे करना चाहिए वो तू कर रही है। कहाँ है वो? क्या तेरे पल्लू में छुप के बैठा है?
2: रॉन्ग नंबर।
1: रॉन्ग नंबर तू है, मैं राइट नंबर हूँ। चल जा बुला उसे।
2: प्रेम, प्रेम।
0: हाँ जी दोस्तों, तो आप मुझे बताइए कि ये जो डायलॉग मैंने प्ले किया है कौन से फिल्म का है और इस मूवी का क्या नाम है। जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि जो डायलॉग मैंने प्ले किया है ये कौन सी फिल्म का है और कौन से एक्टर्स इस डायलॉग को प्ले कर रही हैं, बोल रही हैं। जी हाँ, जल्दी से मुझे बताइएगा। एंड बहुत ही सुपर हिट फिल्म रही है और सभी इस फिल्म को देखा, सभी ने इस फिल्म को देखा भी है कई बारी, तो मुझे बताइएगा क्विकली के दोस्तों ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। एंड आज बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल अभिनेत्री का बर्थडे है एंड एक्टर्स का बर्थडे है, कौन है वो उनका नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही शानदार सा गाना आपको यहाँ पर सुनवाते हैं, तब तो आप गेस कर ही लेंगे कि कौन सी फिल्म का है। बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और एक अमेजिंग ट्रैक में यहाँ पर प्ले कर रही हूँ।

0: किरण जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. एंड दोस्तों, समय हुआ है 11:50 और मैंने एक डायलॉग यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर डायलॉग प्ले किया था. आपको मुझे बताना था कि कौन से फिल्म का डायलॉग है. जी हाँ, आज बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल अभिनेत्री का बर्थडे है एंड उन्हीं की एक पॉपुलर फिल्म का हमने डायलॉग यहाँ पर प्ले किया है. एंड आपको बताना था कौन से फिल्म का डायलॉग है एंड इसमें एक्टर्स कौन है. तो आपके बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे जवाब आए हैं एंड कुछ आंसर हमारे पास रॉन्ग आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा राइट आंसर आए हैं. तो मैं एक बार क्विकली फिर से प्ले करती हूँ और आप सुनिएगा ये डायलॉग एंड मुझे बताएगा कि ये जो डायलॉग है कौन से फिल्म का है. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ.
1: कौन? वो तेरा गुलाम.
2: कौन बोल रही है?
1: जो सवाल मुझे

0: नहीं करना चाहिए। वो तू कर रही है, कहाँ है वो? क्या तेरे पल्लू में छुप के बैठा है?
1: रॉन्ग नंबर,
0: रॉन्ग नंबर तू है, मैं राइट नंबर हूँ। चल जा बुला उसे।
1: प्रेम, प्रेम,
0: हेलो,
1: कहाँ है वो?
0: कौन?
1: वो तेरा गुलाम।
0: कौन बोल रही है? जो सवाल मुझे करना चाहिए वो तू कर रही है, कहाँ है वो? क्या तेरे पल्लू में छुप के बैठा है?
2: हाँ जी, आपको मुझे बताना था दोस्तों कि ये जो डायलॉग हमने प्ले किया है, डायलॉग कौन सी फिल्म का है, और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे आंसर आए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत एक्टिव लिसनर हैं एंड फिल्में देखने का भी बहुत शौकीन हैं, बहुत शौक है आपको। और देखिए, आपने क्विकली गेस कर लिया है, पहचान लिया है कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है। और हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है, सबसे पहले राइट आंसर हमें पहुंचाया है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी ने, फ्रॉम द मूवी बीबी नंबर वन से डायलॉग है। एंड हमारे पास एक वॉइस नोट भी आया है, उसको भी हम प्ले करते हैं क्विकली। मैम ने क्या पहुंचाया है यहाँ पर, उनकी आवाज में सुनते हैं।
3: राधे राधे खुशी, ये डायलॉग बीबी नंबर वन का है, करिश्मा कपूर सुष्मिता सेन है।
2: थैंक यू सो मच मैम, आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत अलका वर्मा जी, आपने बहुत एक्टिव लिसनर हैं आप, यूं ही नहीं कहते हैं हम आपको रेडियो की हीरोइन, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा यू नो हर चीज़ को बारीकी से सुनती हैं, ध्यान से, एंड उसके बाद आप रिप्लाई करती हैं। यही तो है जो हमारा दिल लूट कर ली जाती है, आपकी अदाएं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बीबी नंबर वन से करिश्मा और साथ में सुष्मिता सेन जी है, ये मैसेज हमें पहुँचाया है। सुगंधा स्वीट लाजपत नगर से, लाजपत नागर से ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं एंड इन्होंने राइट आंसर हमें पहुँचाया है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है शाजिद जी, आपने रॉन्ग आंसर पहुँचाया है, इन्होंने फिल्म का नाम बताया है अंदाज अपना अपना, जो कि रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट मैसेज आया है विकी सागर जी का, और विकी सागर जी भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं, धन्यवाद सर। एक मैसेज और हमारे पास आया है कामिल जी का, और ये पहुँचाते हैं राइट आंसर बीबी नंबर वन फ्रॉम द मूवी करिश्मा कपूर जी। हाँ जी, आज करिश्मा कपूर जी का ही बर्थडे है दोस्तों। यहाँ पर हमें मैसेज पहुंचा है रणवीर सिंह जी ने मुरादाबाद से, इन्होंने थोड़ा सा आंसर गड़बड़ किया है, थोड़ा सा सही किया है, इन्होंने फिल्म का नाम बताया जुड़वा, करिश्मा कपूर जी तो हैं लेकिन मूवी का नाम आपने गलत कर दिया है सर। बीबी नंबर वन आंसर हमें पहुंचाया है नईमूल अक्रम जी ने सिरसवा दोराहा से, आप सभी ने इतने प्यारे से आंसर दिए हैं तो आपके लिए क्लैपिंग तो बनता है एवरीवन आज की सुबह। थैंक यू सो मच, और ये जोरदार थालियां आप सभी के लिए, हमारे इतने एक्टिव लिसनर्स के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और कुछ और बातें कर लेते हैं, यहाँ पर और मैसेज आए हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। एंड वक्त हुआ है 11:55, समय कैसे जाता रहता है ना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिन्होंने 90 के दशक में अपनी शानदार एंट्री, एक्टिंग, डांस और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है, करिश्मा कपूर जी का जन्मदिन है 25 जून 1974 को हुआ था। वे मशहूर कपूर परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ अपने परिवार के नाम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और प्रतिभा से बनाई। करिश्मा कपूर जी ने साल 1991 में फिल्म प्रेम कुड़ी से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लेकर आई और वे इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से शामिल हो गई। 90 के दशक की फिल्में हैं जैसे राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, बीवी नंबर वन, हीरो नंबर वन सुपरहिट रही। खास बात तो यह है कि फिल्म दिल तो पागल है के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। करिश्मा कपूर की जी की जर्नी हमें यही सिखाती है कि दोस्तों सफलता पाने के लिए सिर्फ नाम नहीं बल्कि लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण की जरूरत होती है। और हमारी पूरी एफएम की टीम की ओर से एंड सभी श्रोताओं की ओर से करिश्मा कपूर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे करिश्मा कपूर जी। आपकी मुस्कान, आपकी अदाकारी और आपका सफर हमेशा लोगों के लिए प्रेरित। इनका जो इनकी जो अदाकारी है एंड इनका जो सफ़र है, जो मेहनत है, वो हमेशा हम लोगों को प्रेरित करती रहेगी और हम भी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों कोई भी लाइफ में आप कोई भी ड्रीम अगर अचीव करना चाहते हैं, कोई भी सपना आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी ना, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। एंड उन्हीं की फिल्म का एक बेहतरीन ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ दोस्तों। लेकिन हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ क्योंकि हमारे श्रोता वो भी इंतजार करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम, कैसे हैं आप? आपने जो डायलॉग प्ले किया था, ये फिल्म का नाम है बीवी नंबर वन, एक्टर्स का नाम तो मुझे नहीं पता है। ओहो, कोई बात नहीं, आपने ये बताया उसके लिए भी धन्यवाद आपका। एंड ये मैसेज हमारे पास पहुंचाया है नैना जी ने। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, बस इन्होंने राइट आंसर हमें पहुंचाया है, दिल से शुक्रिया। बट अपना नाम भी लिखा करो ना, मैं कितनी बार बोलती हूँ, आप क्यों भूल जाते हो। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास सृष्टि का आया है और सृष्टि भी हमें राइट आंसर के साथ हमारे साथ में कनेक्ट हुई, थैंक यू सो मच सृष्टि। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया, नमस्ते दीदी, मैं मोहिनी सैनी, एंड कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें कुंदनपुर मुरादाबाद से पहुंचाती हैं, इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, हमें हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान नाम जप करती रहिए। एंड बिलीव इन कर्मा, अच्छे कर्मास कीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। और हाँ, इस गर्मी में अगर कोई आपके आसपास या फिर कोई इंसान आपको नज़र आता है जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर पानी पिलाइए, क्योंकि ये बहुत ही नेकी का काम है, शवाब मिलता है। तो आप इन चीज़ों का भी डोनेट कर सकते हैं। और पानी पिलाना तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, पुण्य का काम है। तो किसी प्यासे को जब हम पानी पिलाते हैं, तो उनकी जो अंदर से रूह है, जो आत्मा है, वो हमें ब्लेसिंग्स देती है, तो हम और ज़्यादा सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, वंस अगेन निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बाय बाय, टेक केयर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ
2: 9412211111।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: Thank you.

0: लाभ कहीं और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से
1: और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ जय आनंद, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ओआरएस भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ओआरएस क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
1: बिल्कुल RJ आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खास कर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: क्या बात है टीकन भाभी। और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाए, साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा ले जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
0: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
1: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले, कोशिश करे कि सुबह जल्दी काम शुरू करे और दोपहर की तेज धूप में आराम करे, बीच बीच में पानी पीते रहे और जहाँ भी हवा मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करे। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
1: ऐसे स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
0: भाभी, एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
1: अरे RJ आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
0: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
0: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
1: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
0: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ गई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ गई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: आरजी आनंद, आज कहाँ हो तुम? तुम्हारे शो का टाइम हो रहा है, टीकन भाभी भी नहीं आई है अभी तक।
7: अरे तुम्हें बताया तो था, आज मैं आंगनवाड़ी सेंटर से लाइव करूँगा शो। आज टीकन भाभी भी यहाँ नई माताओं और गर्भवती महिलाओं के साथ एक चर्चा में हैं। मैंने सोचा यहाँ से क्यों ना लाइव शो कर दूँ, बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं।
6: ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो आओ ऑनियर, मैं ट्यून इन करती हूँ।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कहीं, और मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरजी आनंद। और आज मैं पहुँचा हूँ एक खास जगह, यानी कि हमारे अपने मिलन बिहार के आंगनवाड़ी में। यहाँ बहुत सारी माएँ और बच्चे मौजूद हैं। दोस्तों, हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे, एक ऐसा मुद्दा जिसका प्रति एक बच्चे पर गहरा असर होता है, कुपोषण। यह हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। इससे बच्चों में बीमारियां और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही उनका शरीर और मानसिक विकास भी रुक जाता है। और हमारे साथ हर सवाल का जवाब देने वाली टीकन भाभी है, जो आज हमसे और यहाँ मौजूद सभी महिलाओं से कुछ गंभीर बातें करेंगी। टीकन भाभी एक जिम्मेदार और जानकार माँ के साथ साथ सलाहकार भी हैं। नमस्कार टीकन देवी जी।
8: नमस्कार आरजे आनंद जी, और नमस्कार बहनों। अच्छा लग रहा है कि आज हम सब मिलकर अपने बच्चों के पोषण के बारे में खुलकर बात करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और हमारे बीच हमारे अपने सामुदायिक रेडियो के आरजे खुशी भी यहाँ हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना आरंभ करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन में कुपोषण एक ऐसी परेशानी की शुरुआत करती है जो जिंदगी भर बच्चों के विकास पर असर डालता है, और इसकी शुरुआत होती है एक कमजोर माँ या कम उम्र में शादी और गर्भधारण। यदि माँ कमजोर या कुपोषित होगी तो अगली पीढ़ी में भी कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है।
7: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए आज ये समझना कि हमारे बच्चों को स्वस्थ और ताकतवर कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाभी, सबसे पहले यह बताइए कि कुपोषण आखिर है क्या?
8: मैं अपने श्रोताओं और यहाँ बैठी सभी महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि जब बच्चों को सही मात्रा में पोषण वाला खाना नहीं मिलता या बीमारी की वजह से शरीर के पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसी को हम कुपोषण कहते हैं, या सरल भाषा में जिसे सही पोषण ना मिले वो पोषण का शिकार हो सकता है।
7: तो इसका मतलब सिर्फ खाना ही काफी नहीं होता?
8: पेट भर लेना और सही पोषण ना मिलना, ये दोनों अलग बात है। अगर बच्चा सिर्फ चावल खा रहा है लेकिन दाल, हरी सब्जी, दूध, फल नहीं खा रहा है तो वो पूरा पोषण नहीं पा रहा है।
9: दीदी, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है लेकिन वो खाना पूरा खा लेता है, फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता।
8: गीता बहन, ये आम परेशानी है, यह आपको देखना होगा कि वो क्या खाता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चे को दस्त या सर्दी जुकाम बार है, जिसमें शरीर में पोषक तत्व नहीं टिकते, इसी कारण बच्चा कमजोर रहता है। इसीलिए सही खान पान के साथ साथ साफ सफाई और बीमारी से बचाव भी जरूरी है। दोनों के अभाव से बच्चा अलग अलग तरह से प्रभावित होता है।
7: तो क्या कुपोषण के भी प्रकार होते हैं?
8: बिल्कुल, मुख्य तौर पर तीन प्रकार से कुपोषण का असर दिखाई देता है। पहला, कम वजन। जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत हल्का होता है या यह स्थिति लंबी लंबे समय से चले आ रहे हालिया कुपोषण या दोनों का परिणाम हो सकता है। शारीरिक वृद्धि में रुकावट, जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से छोटा कद वाला होता है, यह दीर्घकालीन कुपोषण का संकेत है और इसके पीछे पर्याप्त पोषण सेवन, बार बार संक्रमण, गलत खान पान की आदतें और बीमारी जैसे कारण होता है। दुबलापन, जब बच्चा अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत दुबला होता है, यह अचानक होने वाला कुपोषण है जो वजन बढ़ाने में विफलता या वजन घटाने के कारण होता है।
9: अभी आपने जो स्टार्टिंग में कहा है, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए।
8: जब बच्चा लगातार कई महीनों तक पोषण की कमी में रहता है, जैसे कि दूध ठीक से नहीं मिल रहा, खाना सही से नहीं मिल रहा, तो उसका शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, उसका कद उसकी उम्र के मुकाबले छोटा रह जाता है, इसी की स्टार्टिंग कहते हैं। यह बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका असर बच्चों की बुद्धि पर भी पड़ता है।
9: दीदी, मेरे बच्चा 2 साल का है पर उसके दांत भी देर से निकले और वो चलने में भी पीछे है, क्या ये कुपोषण का लक्षण है?
8: हाँ बहन, हो सकता है देर से विकास होना, जैसे चलना, बोलना या दांत निकलना, ये भी कुपोषण की निशानियाँ हो सकती है। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द उसकी जांच करवाएं।
7: तो श्रोताओं, कुपोषण कोई छोटी बात नहीं है, इसका असर हमारे बच्चों के शरीर ही नहीं, उनके दिमाग और भविष्य पर भी पड़ता है।
8: और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो AAM यानी मध्यम स्तर का तीव्र कुपोषण धीरे धीरे बढ़कर SAM यानी गंभीर तीव्र कुपोषण बन सकता है। इससे बच्चे की सेहत और जीवन दोनों पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है।
9: तो आप ये बताइए, ये MAM और SAM की कैसे पहचान कर सकते हैं, और अगर बच्चे को इन दोनों में से कोई भी हो तो क्या कर सकते हैं?
8: मैं वही बताना चाहती हूँ। MAM और SAM ये दोनों कुपोषण के स्तर होते हैं। जब बच्चों का शरीर थोड़ी मात्रा में कमजोर होता है, यानी वो दुबला है लेकिन बीमारियों से लड़ने की ताकत अभी थोड़ी थोड़ी बनी हुई है, तो हम उसे मध्य तीव्र कुपोषण या MAM कहते हैं। लेकिन जब बच्चा बहुत ही कमजोर हो जाता है और उसके शरीर में सूजन आने लगती है या वो लगातार बीमार रहने लगता है, तो वो गंभीर तीव्र कुपोषण या SAM कहलाता है, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है।
9: तो ये कैसे पता चले कि बच्चा MAM में है या SAM में?
8: बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। अगर बच्चे की मध्य ऊपरी बाह की माप, या जिसे MUAC कहते हैं, वह 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो वह SAM की श्रेणी में आता है। अगर माप 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच है तो वह MAM में आता है। इसके अलावा अगर बच्चे का वजन उसकी लंबाई के मुताबिक बहुत कम है तो भी यह भी MAM या SAM के लक्षण होते हैं।
9: दीदी, आपने पहले सूजन की बात, लेकिन वो कैसे सूजन होती है?
8: कविता, SAM में कई बार बच्चों के दोनों पांवों में या पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। यह सूजन शरीर में पानी भरने की वजह से होती है। इसे बाइलैटरल पुटिंग ओडिमा कहते हैं। अगर आप अंगूठे से पांव दबाए और निशान कुछ देर तक बना रहता है तो वो सूजन का लक्षण है और तुरंत कार्यवाही की जरूरत है।
7: यह तो कोई भी अपने घर में खुद टेस्ट कर सकता है। ओडिमा का मतलब सूजन ही होता है। लेकिन टीकन भाभी, अब ये बताइए कि SAM से पीड़ित बच्चों को किन किन बातों का खतरा होता है?
8: जब बच्चा SAM से पीड़ित होता है तो उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, उसे बार बार दस्त, नमूनिया, बुखार जैसी बीमारियां हो सकती है, और अगर समय पर इलाज ना हो तो जान का खतरा भी हो सकता है।
9: दीदी, ये मध्य ऊपर वहाँ का मापन MUAC कैसे करते हैं, और क्या ये हमें भी सिखाया जा सकता है?
8: बिल्कुल सिखाया जा सकता है सायरा। MUAC का खास पट्टी से नापा जाता है जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध है। ये पट्टी हरे, पीले और लाल रंग की होती है। हरा रंग बच्चा स्वस्थ, पीला MAM, लाल SAM। आंगनबाड़ी दीदी आप चाहे तो गांव की सभी माओं को ये सिखा सकती है, ताकि घर पर ही शुरुआती पहचान हो सके।
9: इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय पर MAM की पहचान हो जाए तो बच्चा SAM से बच सकता है।
8: बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कहते हैं कि समय पर पहचान, समय पर इलाज। यदि बच्चों में AM है तो हम घर पर ही आंगनबाड़ी केंद्र की मदद से उसकी स्थिति सुधार सकते हैं, लेकिन अगर SAM है तो उसे तुरंत NRC यानी ये पोषण पुनर्वास केंद्र भेजना जरूरी है। यहाँ उसे विशेष देखभाल, चिकित्सा सहायता और पौष्टिक आहार मिलते हैं।
7: ये जानकारी तो हर माँ और पिता क्या संपूर्ण परिवार के लिए जरूरी है। मैंने खुद अपने गाँव में देखा है, बच्चों के पेट फूले होते हैं लेकिन हाथ पाँव कमजोर होते हैं। अब समझ में आया कि यह MAM की स्थिति हो तो MAM की स्थिति में हो सकता है। तो मेरी सभी से आग्रह है कि जब आपको कोई बच्चा पतला दुबला दिखे या अक्सर बीमार रहे तो तुरंत उसे नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लेकर जाएं, जहां पर पट्टी से माप की जाएगी और विशेषज्ञों की सलाह लीजिए।
9: दीदी, मेरे बच्चे को खाना खिलाने में बहुत परेशानी होती है, भूख ही नहीं लगती, क्या ये कुपोषण का लक्षण है?
8: हाँ सुनीता जी, जब बच्चों को भूख नहीं लगती, बार बार खाना उगलता है या हर चीज से मुंह मोड़ता है तो उसका टेस्ट करवाइए। ये परीक्षण NRC या पोषण पुनर्वास केंद्र या PHC में होता है। यहाँ देखा जाता है कि बच्चा पोषण आहार को कितना खा सकता है। अगर भूख कम है तो ये गंभीर संकेत हो सकता है।
7: तो क्या ये सबके लिए जरूरी है? सिर्फ वजन या लंबाई ही नहीं, भूख पर भी नजर रखें। SAM और MAM की पहचान एक माँ के लिए सबसे जरूरी है। एक माँ के लिए सबसे पहला कदम है अपने बच्चे की जान बचाने का।
8: बिल्कुल, और हम सब मिलकर आंगनबाड़ी, आशा, NM और माताएं बच्चों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। MAM के बच्चों को हम सामुदायिक स्तर पर ठीक कर सकते हैं, यानी घर पर, और भी SAM के बच्चों को NRC में भर्ती कर सही पोषण, दवा और देखभाल दी जाती है।
9: और NRC का खर्च?
8: सरकारी योजना के तहत NRC में भर्ती और इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। वहाँ माँ के रुकने, खाने और देखभाल की पूरी व्यवस्था होती है।
9: दीदी, घर पर क्या खिला सकते हैं MAM बच्चे को?
8: घर पर हम स्थानीय और सस्ते पोषण युक्त भोजन बना सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन खिचड़ी, दाल, चावल, मूंगफली, हरी सब्जियाँ, सत्तू और गुड़ का लड्डू, चावल, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और दलिया, बाजरे की रबड़ी दूध के साथ। जरूरी है कि बच्चा एक बार में थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन दिन में 5 से 6 बार।
9: और पीने के लिए?
8: साफ पानी, छाछ, नींबू पानी, हल्का सूप, सब बहुत अच्छे हैं। याद रहे, हर खाने में थोड़ा सा घी, तेल या मक्खन भी जरूरी है, ताकि भोजन में ऊर्जा बढ़े।
9: पर दीदी, सब चीजें हमेशा घर में नहीं होती।
8: सही कह रही हो, इसीलिए तो सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला टेक होम राशन का बहुत बड़ा सहारा दिया है। और अगर आपका बच्चा MAM या SAM की स्थिति में है तो आपको अतिरिक्त पोषण मिल सकता है, बस आपको वहाँ आकर रजिस्ट्री करवाना है।
9: अगर बच्चा फिर भी ना खाए तो कोई उपाय है जिससे बच्चा खाने में रुचि ले?
8: बच्चों को साथ बिठाकर प्यार से खेल खेल में खिलाए, और कृपया एक ही खाना बार बार ना दे। अलग अलग रंग में स्वाद की चीजें देने से वो उत्साहित हो सकते हैं।
9: और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा अब उस गंभीर स्थिति से बाहर है?
8: जब बच्चा कमजोर होता है और हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो हर 15 दिन में उसका वजन मापना चाहिए। अगर सुधार हो रहा है तो उसका इलाज काम कर रहा है, और जो भी कर रहे हैं उसे जारी रखें। अगर नहीं तो PHC या NRC में तुरंत जाइए। यह आप सभी याद रखें। जन्म के समय कम वजन वाले शिशु में कुपोषण का जोखिम अधिक होता है। यदि लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन का सेवन नहीं किया जाए तो बच्चा धीरे धीरे कुपोषित हो सकता है। दस्त जैसी बीमारियां शरीर से अत्यधिक पोषण तत्वों की हानि का कारण बन, जिसे बच्चा कुपोषित हो सकता है। तीव्र श्रवण संक्रमण भी बच्चों की पोषण स्थिति को गंभीर रूप

0: रुकता। यही है सही सेहत का राज, जिससे मिलेंगे अनेक लाभ।
1: बिल्कुल, सेहत सही मिलेंगे लाभ कई, और हम अपने बच्चों का भविष्य स्वस्थ बना सकेंगे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि कुपोषण कोई अकेली समस्या नहीं है, यह भोजन, देखभाल, साफ सफाई और प्यार सबका मेल है। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं, गुड़ की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल 2025 तक दुनिया भर में बच्चों में स्टार्टिंग कद में रुकावट, वेस्टिंग, कमजोरी, एनीमिया, खून की कमी और कम जन्म वजन को घटाने का लक्ष्य बनाया है। ये लक्ष्य तभी प्राप्त होना जब आप सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ। तब तक आंगनबाड़ी आइए, सेवाएं पाइए और अपने बच्चों की सेहत को दीजिए सही लाभ। नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेंगे।
3: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि
4: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
5: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
4: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
5: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
4: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त RJ खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊं, पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया, और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत, भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: धन्यवाद RJ खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है, और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
4: वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
9: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
4: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
9: बिल्कुल सही कहा आपने RJ। पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
4: तो सबसे आसान भाषा में बताइए, पोषण आखिर होता क्या है?
9: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन, जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
4: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
9: देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
4: मतलब अगर

0: भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार चार सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
0: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता, बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
0: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
1: कार्बोहाइड्रेट से। साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
0: और प्रोटीन?
1: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है। दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
0: वसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
1: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
0: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
1: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए। ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
0: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
1: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
0: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
1: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भावस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
0: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
1: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
0: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
1: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
0: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है, ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
0: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
1: जैसे कि आपने सुना होगा, 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
0: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
1: जी बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती हैं।
0: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
1: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
0: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
1: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्ची आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
0: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
0: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
1: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
0: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मानो कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
0: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
1: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल, हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वे ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
0: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
1: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है, जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
0: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
1: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी, जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
0: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
1: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वह बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जाँच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
0: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
1: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
0: क्या आरती ने सलाह मानी?
1: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया,
0: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
1: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
0: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
1: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
0: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है, तो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
0: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
1: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
0: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
1: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
0: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
1: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
0: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
0: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
1: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
0: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
0: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
0: लाभ कई, धन्यवाद, सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर्नी और समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन जो गाने नहीं बजाता है आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये पूरे फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं
0: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
1: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सबसे बड़ी खुशी है
0: जी
1: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
0: रेडियो के माध्यम से
1: पहुंचा सकते हैं, जो कि शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
0: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
1: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
0: जी,
1: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के एसटीआरएफ फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्ययोजना बना के उस पर काम करते
0: हैं। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं इसी में, एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
1: इसके लिए ये है कि एक डीएम एक्ट 2005 है, उसके तहत डीडीएमए का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
0: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो अग्निकांड होते हैं जैसे कहीं पे आग लग जाना एकदम से, ये आपदाई होती है सर, तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
1: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
0: जी,
1: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयर फेज बोलते हैं।
0: right.
1: और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है,
0: 100%.
1: लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहां पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है, उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है, वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हमें यहाँ पे कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है शॉर्ट सर्किट से होती है, शॉर्ट सर्किट से, जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई, तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर है उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो, अगर अग्निकांड की घटना हो रही चाहिए तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता कि हम लोगों का ये निर्देश रहता कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलके काम करता है पब्लिक के साथ।
0: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
1: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में कलेक्ट्रेट में वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
0: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूं किसानों के लिए तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
1: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं, तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहां पे ना रखें। क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है, पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें। पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो, अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस सौकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
1: जी।
0: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूं वहीं जो लोग पशुपालन करते हैं तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
1: देखिए पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
0: करेक्ट।
1: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से भयंकर लू से प्रभावित होता है वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़ें, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर ले एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारे, एक दो बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहाँ पे आप संपर्क करके उनको वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा सर जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा और कहाँ संपर्क कर सकते?
1: देखिए आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं, तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
1: देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा है संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ, ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है या और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं, तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू उनका होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी, नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ?
1: देखिये, मैंने जागरूकता के स्तर पर तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पर अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी, तो पानी के आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर, ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे, तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थायी प्याऊ शेल्टर भी हम लोग लगाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति, और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है, और जलकल विभाग, जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थायी शेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला, बहुत बड़ा चौराहा, हीट आइलैंड जिसको बोलते हैं, खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थायी शेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है, और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है, ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने, मतलब पानी की उपलब्धता रहे, तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी की जीवन को वापस तो नहीं ला सकते हैं, अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता है कि किस कारण से डेथ हुई है। वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते। तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते थे कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है। अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5400 रुपए की सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो प्रॉपर प्रक्रिया में, तहसील में सूचना दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
0: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा। पहले तो यही, जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो इसके में आपका क्या कहना है?
1: देखिए, इसमें दो चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है,
0: बिल्कुल।
1: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है। तो जो, और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें। फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें, जो सेफ्टी की आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉकड्रिल कराई जाती है उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम में वो चेंज कर ले, सुबह 8 बजे से पहले खाना बना ले और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद शाम में देर रात को खाना बनाए, दोपहर में खाना ना बनाए। इसके साथ एक चीज और, ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी।
1: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है, तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो 2-3 चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती हैं, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये SOP है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉडल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है। बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें, घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है। साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं। हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं। महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1 लाख घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 10 लाख पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है।
0: करेक्ट।
1: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफटॉप हम लोग बोलते हैं कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के थानों के हैं और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
0: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, और सबसे अच्छी बात आपने जो गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश
1: देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील है, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें, आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टेडियम
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना

0: के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
1: कुछ नया है
0: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
1: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ आरएसएम पब्लिक स्कूल
0: जी
1: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
0: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
0: जी।
2: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
0: जिसका नाम है
2: सोच बदलो।
0: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
3: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं, और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
0: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है, जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
1: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
0: करेक्ट?
1: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं?
0: करेक्ट।
1: तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
1: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
0: एडवाइस
1: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारी हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं, तब सुनिए आप उनकी।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं, और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना? बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात यह है, क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
2: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
3: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शैली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालू के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ।

ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है, चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं? मुझे नहीं पता तुम सोचती हो या नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है। लेकिन जब आप परेशान होंगे, आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा,
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगे?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: आज से नहीं, मतलब जब से मेरी, जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा हाँ, आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रोना चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो।
4: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
5: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया,
6: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
7: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था, और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
4: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
8: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
9: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
8: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
4: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
10: The global south should be enabled.
11: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
12: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
4: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
13: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति पति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
4: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: कि अगर मैं बात करूं तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है उनको। अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
1: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं, पेड़ों पर चढ़ना और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि उसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें नेचर के साथ जो हमारा लगाव था वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती है, अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, और नेचर से बच्चों का ही नहीं हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी आपको क्या लगता है?
2: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी सोशल मीडिया कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना एक्टिविटीज, बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
1: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए एकदम क्विकली, उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए ये ब्रिंकेट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, इवन यंगस्टर्स में भी, और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस जो एक हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उससे खेलते थे, और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
1: आजकल तो आपको पता है बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें, बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हम खो।
0: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उसपे कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
1: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी।
0: और हम बच्चे खुद का मतलब अब क्या है, इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो, और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन

0: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप प्राची क्या कहना चाहते हो?
1: तुम बताओ पहले, तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी? मैं तो सच बताऊं मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो हम वैसे बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर भी जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली हैप्पी दिवाली मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
0: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
1: और जो साइकिल के जो टायर होती थी ना, उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी। हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
0: चलाया प्राची ऐसा वाला?
1: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
0: नहीं बढ़ती, प्रॉब्लम कितनी है, अंदर नई नई बीमारियां आ रही है,
1: वो एक्टिविटी नहीं करते ना। एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेके जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रांग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि अब बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं। अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी अब यू नो अब ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
0: जुड़े नेचर से जुड़े।
3: दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें। उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा, तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपने प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती, बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें। आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल।

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, जहाँ बातें होती हैं, आपकी पसंद के गीत होते हैं, आपकी पसंद के और बातें होती हैं दिल से दिल तक की। जी हाँ दोस्तों, गर्मी चाहे कितने भी हो, अगर दिल में खुशियों की ठंडक हो तो दिन ब्यूटीफुल लगने लगता है, हर दिन खूबसूरत लगता है। और मैं आपसे कहती हूँ कि आपके सफर को सुहाना बनाने के लिए यहाँ पर खुशी आ चुकी है। आप मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं एवरीवन। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। समय हुआ है 3:08 राइट नाउ। जब तक आप मुझे कॉल करते हैं श्रोताओं, मैं आपको सुनवाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। एंड आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, सुनने वाले सभी श्रोताओं को, और ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और राइट नाउ अभी टाइम हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:16 और अभी आपने बहुत ही अमेजिंग ट्रैक सुना, मैं नाचू बिन पायल घुंघरू टूट गए। तो क्या करिश्मा कपूर जी ने क्या खूब डांस किया है यार। और अभी बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश। हेलो। हाँ आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या नाम है आपका? मानवी। कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: हरिद्वार से
0: बात कर रहे हो? अरे वाह, क्या बात है, आपको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं। और राइट नाउ अभी कहाँ पर हैं आप? अच्छा, अरे वाह, गंगा घाट के किनारे बैठे हैं, वहाँ का नजारा तो बहुत खूबसूरत होगा। अरे वाह, क्या बात है, तो बताइएगा मानवी आज क्या सुनना है आपको। मानवी, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, अपना ख्याल रखो अच्छे से। मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए मानवी की पसंद पर सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक एवरीवन। और आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गन गुनगुनाते रहिए और यूं ही स्माइल करते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो दोस्तों सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, यकीन नहीं होता मेरी बातों पर। हाय रब्बा, आप जाके शीशे में देखो अपने आप को, फिर पता चल जाना है आप कितने सोने हैं। चलो अभी फिलहाल एक गाना सुनो, मैं लौट कर आती हूँ।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, हर पल को खुशी से जीना सीखो, बीते कल की चिंता को छोड़ना सीखो, जो मिला है उसमें मुस्कुराना सीखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है इसे अपनाना सीखो। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे इस ब्यूटीफुल शो में कॉल लगा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896 98378। यह हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आपको मुझे कॉल लगाना है और सीधा हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है। अपना फेवरेट कोई भी अगर ट्रैक आप सुनना चाहते हैं इस वक्त, तो हमें कॉल लगा सकते हैं। हमें इंतजार है, चाहे आप कार में हो या फिर घर में हो या शॉप पर बैठे हो या फिर आप कंपनी में जॉब करते हो, जब तक आप मुझे कॉल लगाते हैं मैं आपको सुनवाती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। From the movie किस्मत कनेक्शन एंड सुनिधि चौहान, साथ में सोनू निगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ये अमेजिंग ट्रैक आप सभी के लिए।
1: Make some noise!

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने पुराना सा इंटरेस्टिंग खूबसूरत सा ट्रैक सुना। फ्रॉम द मूवी चुप चुप के एंड शाहिद कपूर साथ में करीना कपूर जी बहुत ही खूबसूरत नजर आए इस फिल्म में। और क्या एक्टिंग थी उनकी, एंड साथ में राजपाल यादव जी की भी। साथियों, समय हुआ है 3:38। और आप भी इस फोन इन कैरेक्टर में जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा दोस्तों। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896 98 3978 96। इस नंबर पर आपको मुझे कॉल लगाना है और सीधा मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। ओ माय गॉड, ये क्या था। कॉल भी किया इतनी मेहनत से और बात भी नहीं की है। दोस्तों, इतनी मेहनत से आप कॉल करते हैं और बाद में कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप कितनी मेहनत से कॉल लगाते हैं। एनीवे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कॉल करें तो प्लीज़ कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। और दोस्तों, हमें आप फ़ोन लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ, 9837896896। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं आप सब? जी बताइएगा सर, आप क्या करते हैं?
1: हम अभी कंपनी में जॉब कर रहे हैं।
0: अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं आप। जी जी जी, बताइएगा सर, कौन सा गाना आपको सुनना है?
1: कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे।
0: कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। हाँ जी बोलिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं
1: आप?
0: ओके।
1: और आपके यहाँ सब बढ़िया है?
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, आपके यहाँ पर सब ठीक है? हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इस गर्मी में अपना ख्याल रखिएगा। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा घूमना भी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। जी, आपने कॉल किया सर, धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा ट्रैक। जी तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सर की पसंद का एक खूबसूरत सा गाना, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे। एंड मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे कॉल लगाएगा। नंबर मैं आपको बता रही हूँ फिर से, 9837896896। मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं, वो इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करें और मुझे कॉल करें और ये प्यारा सा ट्रैक इंजॉय करें।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, फ्रॉम द मूवी सैयारा से श्रेया घोषाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहां से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, अपना नाम बताइएगा, आप कहां से बात कर रहे हैं।
1: नाम है
0: जी, बताइएगा क्या करते हैं सर आप।
1: बेल्डिंग की दुकान है।
0: अच्छा, बेल्डिंग की शॉप है आपकी। ओके, तो कैसा चल रहा है आपका काम।
1: काम सही है।
0: ओके, तो बताइएगा आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर। अच्छा ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं आप।
1: हम क्या कहेंगे, आप बताओ अपने बारे में कैसे हो।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। हाँ जी ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत सी कवाली आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान से कवाली। और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गन गनाते रहिए और अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सी कवाली सुनी फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान से अदनान सामी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी फरमाइश क्या है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, शंकर सिंह
0: जी। उत्तराखंड से बात कर रहे हैं, रुद्रपुर से बताइएगा कैसा है वहाँ का मौसम।
1: मैडम गर्मी है, दिन में गर्मी है, रात में ठंडी है।
0: अच्छा, रात में मौसम चेंज हो जाता है।
1: ठंडा हो जाता मौसम
0: जी। बताइएगा सर, आप क्या सुनना चाहेंगे आज।
1: मतलब छोटे बच्चों वाला मतलब गीत पसंद करते हैं, वो गीत के बोल रहे हैं मेरे प्यारे चन्ना मामा।
0: अच्छा, और ये रिक्वेस्ट आपकी छोटी बच्चों ने की है। ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। कुछ कहना चाहते हैं आप।
1: कहना क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है, सभी लोग बचा के रहे, पानी पीते रहे,
0: जी
1: कम से कम निकले।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और गर्मी में अपना ख्याल रखेंगे तो बीमार होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि घर से बाहर बेवजह ना जाएं अगर कोई काम नहीं है तो, और अगर काम है तो छाता वगैरह लेकर जाएं। क्यों सर।
1: खाने नहीं, छाता ले जाने का जरूरत है, क्योंकि धूप तेज हो रहा है, कुछ काम के लिए निकलना जरूरी भी है, तो बिना छाता का तो ज्यादा बेकार है। छाता रहेगा तो कुछ तो राहत देगा ना।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, थोड़ी नहीं बहुत राहत देता है छाता।
1: हम तो छाता लगाते नहीं है, हमें कभी लगाने का काम पड़ा, लेकिन है कि अब लोगों ने जो हमको दर्जाया है वो मुझे चिता रहा हूँ लोगों को।
0: तो चलिए सुनवाते हैं गीत आपको। धन्यवाद आपने कॉल किया सर।
1: ठीक है, नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक। उनके छोटे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, मेरे प्यारे चंदा मामा, और हम सुनते हैं, लौट कर आते हैं। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेलो फॉर माय शो में। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना, आई होप आप सब ने इंजॉय किया होगा। और माही वे एक्चुअली मेरा फेवरेट गाना है, तो मैंने कहा अपने श्रोताओं को भी सुनवा देते हैं। कुछ गाने होते हैं ना जो अपने आप हम मतलब ना चाहे ना डांस करना भी, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। कुछ गाने होते हैं जो मजबूर कर देते हैं थिरकने पर। और मुझे पता है अभी आपने कार में वॉल्यूम म्यूजिक का थोड़ा बढ़ा लिया था, अच्छी बात है एंड हैप्पी रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर समय हुआ है 4:17 और हमारी नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइएगा। सृष्टि, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हो, अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? अच्छा, 8th क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, बताइएगा आज आप कौन सा ट्रैक सुनोगे? अच्छा, ये किनकी आवाज में है बताइए? ये किनकी आवाज में, किसने ट्रैक को गाया है, कौन है वो सिंगर बताइए उनका नाम?
1: हरियाणवी
0: हरियाणवी गाना तो है, लेकिन किसने गाया है आपको पता है?
1: पता,
0: अच्छा पता नहीं है, चलो ठीक है, हम सुनवा देते हैं आपको। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सृष्टि की पसंद पर सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, इन्होंने हरियाणवी गाने की रिक्वेस्ट में भेजी है एंड पूरी कोशिश करते हैं हम इसको प्ले करने की। मुझे तो लगता है कि दोस्तों मैं सभी की फरमाइशें पूरी करूं, पूरी कोशिश करती हूं, बाकी आप मुझे कॉल लगाइएगा तो नेटवर्क के इशू ना हो, कोई नेटवर्क में आकर कॉल लगाइए ताकि आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर आए और बात करने में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे, समझ में भी आए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी सुनिएगा ये प्यारा सा गाना।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए एएस के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां डीएलएड बीटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज में। और दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहूंगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर गम को दिल से दूर भगाते रहिए। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है दोस्तों, इसे प्यार से जीते और सजाते रहिए। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: आरुष।
0: कहाँ से बात कर रहे हो आप आरुष?
1: मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद से। ओके, अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं आरुष? फिफ्थ क्लास में। ओके, और रेडियो कब से सुन रहे हो आप? हाँ,
1: दोपहर से।
0: ओके, तो कैसा लगता है आपको, बताओ?
1: बहुत अच्छा।
0: अच्छा लगता है। तो अभी बताओ, आपने कॉल किया है, आप कौन सा गाना सुनोगी?
1: रात के सितारे।
0: रात के सितारे। ये कौन सी मूवी का गाना है, बताओ जरा हमें। और मूवी का नाम क्यों नहीं पता है, ये मुझे बताओ। अच्छा, देखी नहीं है। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है?
1: मेरी दीदी भैया और मम्मी पापा।
0: आप छोटे हो फैमिली में? ओके, सबसे नटखट भी हो आप। हाँ हाँ, देखो कह भी रहे हैं, हाँ मैं नटखट हूँ। चलो ठीक है, सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा ट्रैक। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए, ये प्यारा सा ट्रैक हम सुनते हैं आरुष की पसंद पर और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे एवरीवन कॉल लगाएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ दोस्तों, पानी भी पीते रहिए। जिनका व्रत है वो तो नहीं पी पाएंगे, लेकिन जिनका उपवास नहीं है वो तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी सेहत थोड़ी सी भी नाशाज हो, थोड़ी सी भी ख़राब हो। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दिन को यूं ही खूबसूरत बनाते रहें। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सुनिएगा। एंड जिस गाने की रिक्वेस्ट मुझे आरुष ने की थी वो तो मुझे नहीं मिल पा रहा है, बट हाँ मैं एक और गाना बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिएगा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 में सिक्स पर. और दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप इस वक्त अपनी कार में सफर कर रहे हैं तो जरा सा मुस्कुरा लीजिए. मंजिल तक पहुंचने की जल्दी तो सबको होती है, लेकिन रास्ते का मजा लेना हर किसी को नहीं आता. इसलिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए एंड सुरक्षित ड्राइविंग कीजिए. सीट बेल्ट लगाइए और दिल को हल्का रखिए. याद रखिए, जिंदगी का सफर भी बिल्कुल सड़क की तरह है, कभी सीधा कभी घुमा हुआ, लेकिन खूबसूरत हमेशा रहता है. और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं. हेलो फरमाइश.
1: नमस्ते मोहन जी, मैं अनंत भूते बड़ोदा जिला जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ.
0: जी सर नमस्कार, बताएगा कैसे हैं आप.
1: एकदम ठीक हूँ बहन जी, बहुत अच्छा रहता हूँ, सदाबहार रहता हूँ और खुश रहता हूँ. आप कैसे.
0: हाँ जी, खुशी भी हमेशा खुश रहती है सर. आप बताएगा महाराष्ट्र का मौसम कैसे, बारिश हो रही है वहाँ पर अभी. नहीं
1: महाराष्ट्र में बहन जी, कल और परसों तो कुछ समाधानकारक बरसात हुई है, चालू हो गया अभी.
0: ओके, बताइएगा आप आज क्या सुनना चाहेंगे सर.
1: आज का गीत बहन जी मैंने चुना है, गीत के बोले एक परदेसी मेरा दिल ले गया. ये हिंदी फिल्म अगुन का गीत है, ओपी नैयर जी का संगीत है, बहुत बढ़िया गीत है.
0: ठीक है सर, ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं. आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका.
1: क्योंकि दोस्त के नाम लेना चाहता हूँ.
0: जी जी जी बिल्कुल, बताइएगा.
1: हमारे बड़ौदा ग्रुप के श्रोता मित्र है मुरलीधर जी डोले, शरद जी वानखड़े, अशोक देशमुख, संतोष भाई काटे, और आप भी ये पुराने गीत का ओल्ड इज गोल्ड बोले तो पुराने गीत का आनंद उठाइए.
0: जी बिल्कुल, आनंद उठाते हैं, ये गाना हमें भी बहुत पसंद है.
1: धन्यवाद मोहन
0: जी. मोस्ट वेलकम सर. चलिए श्रोताओं, इस प्यारे से पुराने से गाने का लुफ्त उठाते हैं और हम अभी इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं. आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं. साथियों, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896.

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
8: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स. आप सभी का आरजी खुशी दिल से स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश. अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर. हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, हाँ जी हेलो फरमाइश, आपको आवाज आ रही है मेरी?
1: जी आ रही है
0: जी जी जी नाम बताइएगा अपना सर.
1: हमारा नाम है हरि ओम शर्मा
0: जी. कहाँ से बात कर रहे हैं आप बताइएगा?
1: हाँ, हम दोबारा बताते हैं आपको, हम जिला मुरादाबाद बुद्धा पार्क से बात कर रहे हैं मैम.
0: ओके सर, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी.
1: हमने आपको बताया था मैम, अभी चांद का मुखड़ा तो फिल्म है और इस गाने के बोल है. चांद का मुखड़ा तू लगे चांद का टुकड़ा, और ये गाना हमारी मिशन रहती है पास में, इनके लिए डेडिकेटेड करना चाहते हैं.
0: डेडिकेट करना चाहते हैं आप अपनी मैम के लिए, राइट?
1: यस.
0: ओके, तभी वो पीछे पीछे बात कर रही है आपकी. हाँ ओके. चलिए सुनवाते हैं ट्रैक आपको. धन्यवाद कॉल करने के लिए.
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: मोस्ट वेलकम सर. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक सर और मैम की पसंद पर. आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर है 9837896896. ये खूबसूरत से ट्रैक की पार्श आती हूँ मैं लौट कर.

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और बिल्कुल जी, जिसको हम पसंद करते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो या जीवन साथी हो, पड़ोसी में हमें सारी दुनिया नजर आने लगती है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैम जी।
0: आपको भी नमस्कार। अपना शुभ नाम बताएगा सर।
1: राजेंद्र गंगवार, कसौतरिया तहसील नवाबगंज, चुंकहट्टी बरेली से बोल रहे हैं मैम जी।
0: जी राजेंद्र जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं मैम जी। कहते हैं कागजों को एक साथ जोड़े रहने वाली पिन ही कागजों को चुपती है, उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुपता है जो परिवार को जोड़ के रखता है।
0: अरे वाह, क्या बात है। ये आपके पास में कौन बोल रहा है? कौवा बोल रहा है क्या?
1: हाँ मैम जी, कौवा बोल रहा है।
0: अच्छा, आप बगीचे में हैं क्या?
1: नहीं, अपने क्या कहते हैं प्लाट में है, जो प्लाट बनना है उसी में है, और कौवा बैठा है पेड़ पे।
0: अच्छा ओके, वो भी बात कर रहा है। हेलो फरमाइश में। हाँ
1: जी
0: जी, बताएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे सर?
1: गाना तो सुनेंगे, कौवा भी सुन अपनी मधुर वाणी सुना रहा है।
0: वो भी बात कर रहा है, राइट।
1: जी, मूवी का नाम रहेगा साजन चले ससुराल, इसमें एक सॉन्ग है तुम तो धोखेबाजो वादा करके भूल जाते हो, कुछ साथियों का नाम लेना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल, बताइएगा सर।
1: हाँ जी, सबसे पहले आप हैं और हमारे आरजे पूनम जी हैं कानपुर से, सारंगुर अंसारी जी हैं, लाल मोहम्मद अंसारी जी हैं, और लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और जितने लाइव श्रोता सुन रहे हैं सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा, और साथ में हमारे सब परिवार के सहित।
0: ओके सर, ठीक है, सभी के साथ सुनवाते हैं आपको ट्रैक। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार मैम।
0: आपको भी नमस्कार सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक। एंड आज करिश्मा कपूर जी का भी बर्थडे है, और उनके सिस्टर करीना कपूर जी ने अपनी बड़ी सिस्टर को, करिश्मा कपूर जी को, बर्थडे स्पेशल विश किया है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन सोशल मीडिया पर जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें उनकी बचपन की फोटोज़, तो कुछ तस्वीरें जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। एंड ये प्यारा सा ट्रैक आप सुनिएगा दोस्तों, और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और वंस अगेन आपको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: मिला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:08 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच बताऊँ एकादशी है और टेम्परेचर की बात करूँ तो 38 डिग्री सेल्सियस, सोचिए निर्जला एकादशी। ऊपर से जो बाहर बहुत से औरतें हैं भैया, बाहर काम भी करती हैं घर में, और हमारी मम्मियाँ हैं जो फास्ट भी रखती है और घर का काम भी करती है, हमें भी संभालती है, सोचिए। और हम बच्चे जब फास्ट रखते हैं ना, तो बस मम्मी क्या कहती है, अरे अरे तुम काम मत करो, बस एसी वाले रूम में बैठे रहो, तुम्हें प्यास लग जाएगी, मतलब इतना पैम्पर करती है हमें। और मम्मियाँ मतलब उनको पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी से बनाया होता है भैया, इतने स्ट्रोंग हो जाती है वो। सो आज जो भी एकादशी का जिनका भी फास्ट है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि नारायण का आपका जो कृपा है, उनकी जो कृपा है आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। और 2 घंटे के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ, यहाँ ढेर सारी बातें करेंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आज का स्पेशल डे क्या होने वाला है, क्या नहीं है, हर जिस पर बात करने वाले श्रोताओं। तो बस बने रही आर्जुरीना के साथ एक और शानदार गाना के साथ, फिर लौटते हैं आप सभी के साथ।
1: Oh my God, this is original.

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो में आज जरीना के साथ आप कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 5:17 हो चुके श्रोताओं, और आज एकादशी है, और एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। आखिरकार भीम एकादशी इसको क्यों कहते हैं? महाभारत के समय यानी कि भीम को बहुत भूख लगती थी, इसीलिए वे साल भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने वेद व्यास से इसका उपाय पूछा। वेद व्यास जी ने बताया कि यदि वे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा से करें और इस दिन अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करना होता है, जल भी नहीं पीना होता है, तो उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। भीम ने यह कठिन व्रत रखा, इसीलिए निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन देखिए श्रोताओं, निर्जला एकादशी ठीक है, लेकिन जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो जरूरी नहीं है कि आप पानी ना लीजिए। जिनके स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है तो पानी ले लीजिए। पानी पीने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। अगर आप कष्ट में होंगे तो सबसे ज़्यादा पीड़ा उनको होती है। इसीलिए अगर आप लग रहा है कि भाई थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर वो डगमगा रहा है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं। और साथ ही साथ आप ऑन द वे हैं और आज निर्जला एकादशी पर हर गली मोहल्ले चौराहे हाईवे पर आपको पानी यानी कि मिलेगा, रोबजे का पानी। जिनको पसंद है वो डेफिनेटली ज़रूर पीजिए। और आज ये कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन आप पानी का दान करते हैं, पानी प्यासे को पिलाते हैं, तो वो बहुत बड़ा पुण्य लगता है आप सभी को। और कहते हैं ना, प्यासे को अगर पानी पिला दो तो इससे बड़ा और क्या ही चाहिए, और वो भी इस ज्येष्ठ का महीना और गर्मी इतनी ज़्यादा यानी कि टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। सोचिए बाहर जाने का तो मन, मतलब धूप देखते ही ना कमरे के अंदर यानी कि फिर से वापस कदम मुड़ जा रहे हैं। बाहर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा भैया कि बाहर जाए ना जाए, मतलब बाहर जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिनका फास्ट है, उपवास है, वो अभी घर से यानी कि बाहर ना निकले। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हुआ है तो नहीं, अभी आपने घर से बाहर नहीं जाना है। अगर घर से बाहर जाने की सोच रहे तो 7 बजे के बाद जाइए, तब आप बाहर जाइए, इंजॉय करिए। चलिए जी, और भी ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल आज बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे भी है तो उनके बारे में बताएंगे, और आज का स्पेशल डे क्या है उसके बारे में बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही शानदार गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: बादशाह के बारे में आपसे कुछ।
1: अरे रानी, क्या आदमी दिया तुमने मुझे। इसका नाम तो मोती नहीं, सचमुच बादशाह ही होना चाहिए था। इसने कहा है कि कल 4 बजे सेंट पॉल स्कूल में हमारा काम

क्या बात है जी, बादशाह मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, बादशाह ओ बादशाह। और श्रोताओं कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आखिरकार ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यानी कि 34 साल पूरे कर चुके हैं बादशाह, यानी कि जिनको किंग खान, रोमांस के किंग के नाम से पहचाना जाता है, शाहरुख खान। यानी 25 जून आज का ही दिन, 25 जून 1992 को फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम उन्होंने रखा, और शाहरुख खान ने भारतीय सिनेमा को अपने शानदार 34 साल पूरे कर चुके हैं। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने संघर्ष को सफलता में और सपनों को हकीकत में बदलकर दिखाया। राजा से लेकर पठान तक हर किरदार के साथ उन्होंने करोड़ों दिलों को और दिलों में राज किया। आज भी उनकी वही जुनून, वही ऊर्जा और वही जादू बरकरार है। 34 साल का यह सफर सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि करोड़ों फैंस के प्यार और विश्वास का भी है। तो कहते हैं ना श्रोताओं, जो चीज आपने शिद्दत से चाह ली तो वो तो आपको मिलती ही मिलती है। और शाहरुख खान के बैकग्राउंड से ना कोई भी बॉलीवुड में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। और कहते हैं ना, आपकी मेहनत, आपकी लगन एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। और कैसे ये बॉलीवुड का 34 साल का जो ये सफर रहा एकदम शानदार वाला, तो कोई भी काम करिए, जो भी आप काम करिए शिद्दत के साथ करिए, 34 क्या 36 45 भी होंगे। और आज बॉलीवुड में एक और धमाकेदार, यानी कि जो कपूर खानदान की पहली ऐसी लड़की जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा, यानी कि करिश्मा कपूर। करिश्मा नाम से ही पता चल रहा है भैया, करिश्मा उन्होंने बॉलीवुड में जलवा जो दिखाया, आज उन्हीं का बर्थडे है, यानी कि करिश्मा कपूर का बर्थडे है। तो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे, और आज जिनका जिनका भी बर्थडे है उनको भी हमारी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे। और आप अपनी जिंदगी में यूं ही खुश रहे, रॉक मचाते रहे और हर काम शिद्दत से करते रहे। फिलहाल एक शाहरुख खान का जो गाना है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो शाहरुख खान का ये गाना मैं आप सभी को मेरी तरफ से डेडिकेट है जी। चलिए जी।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति से खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: एक मैं हूँ, एक तू है, चाहते हैं।
6: फिर क्या है, किसकी है डर, किसका है डर, अभी किसी का डर नहीं होना चाहिए। श्रोताओ, आज रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके हैं श्रोताओ, और एक और, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अब बहुत कम हो गई ये चीजें, लेकिन अभी भी कई कई जगह हैं जहां बाल विवाह होता है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम उठाया है कि जो शादी की कार्ड होती है ना, अब उसके ऊपर यानी कि BOD यानी कि बायो डाटा आपका होना चाहिए, यानी कि आपका जो बर्थडे डेट है वो कार्ड के ऊपर अब छपा जाएगा, ताकि बाल विवाह को, जो बाल विवाह बहुत कम हो चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत जगह हैं जहाँ पे बाल विवाह किया जाता है, बाल विवाह शादी की जाती है, सो इस चीज़ को रोकने के लिए अब ये कदम उठाया गया कि शादी के कार्ड अगर आप छपवाते हैं तो लड़का और लड़की दोनों का यानी कि बर्थडे डेट उस पे होना चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, बल्कि और ये और अच्छी बात है जब बाल विवाह को रोका जाएगा तभी हमारा समाज आगे। पहले के टाइम में मतलब मुझे शादी से याद है कि पहले के टाइम में ना घर वाले बोलते थे भाई शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, और अब जब हमने सबने मना करा कि अभी हमें पढ़ना है, एंजॉय करना है लाइफ, तो अब घर वाले पूछते ही नहीं है शादी करना है नहीं करना है, तो बोलते हैं कि पढ़ लो, नौकरी करो, मजे करो, एंजॉय करो। अब हमें बोलना पड़ता है हमारी शादी कब करोगे आप। ऊपर से भैया ऐसी सी न्यूज़ देखने के बाद शादी से तो विश्वास ही उतर जाता है, समझ नहीं आता किस इंसान के दिल में क्या चल रहा हो, क्या नहीं चल रहा हो, समझ नहीं पा रहे भैया, फेस बिल्कुल भी देखने में लग नहीं रहा है, लेकिन जब बातें कुछ घटनाएं हो जाती तब समझ में आता है, ओ भाई हसीन चेहरे के पीछे कुछ काला जादू छुपा हुआ है। तो भाई एक तो बाल विवाह रोकना है, ऊपर से शादी कर रहे हैं ना आप, तो सोच समझ के करिए, और बिचौलिया नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो जरूर आ जाएगा। चलिए श्रोता एक और गाना सुनते हैं, शादी के ऊपर ही गाना है, शादी करो तो ना करो तो भी दिक्कत है, शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा तक कवर आए हुए।

चांदनी होती है हर घर वाली, शादी

0: और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं इवनिंग मस्ती शो में, तो समय हो चुका है 5:52। हां जी, और टेम्परेचर की बात करूं भैया, तो एक पॉइंट घट चुका है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, जहां 38 था वो अब 37 हो चुका है। मतलब लग रहा है कि भगवान अब थोड़ा सा रहम कर ही देंगे। मतलब देखो, और जगह बारिश हो रही है, फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां भी बारिश हुई, लेकिन मुरादाबाद में नहीं, बारिश क्यों होना है, होएंगे ही नहीं। गर्मी, बस इतनी गर्मी। अरे भगवान जी, एकादशी है, थोड़ा सा तो रहम करो, हम सब के ऊपर बारिश हो जाए यार। बट अभी मैं बात करने वाली हूँ मूवी के बारे में, जो कि हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है भैया, कि कौन सी मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली है, जहां दोस्तों के साथ बस कुछ देर काम से फ्री हो जाए और एंजॉय करे और मूवी देखे, है ना। और पॉपकॉर्न के साथ खाते खाते मूवी देखो तो ओए होए मजा ही आ जाता है जी। और आप महसूस करके मुझे बताने कि कौन सा पॉपकॉर्न खाते हो, मसाले वाले या फिर सिंपल वाले पॉपकॉर्न आपको खाना सबसे ज्यादा पसंद है, फिर मैं बताऊंगी कि मेरे को कौन सा वाला पॉपकॉर्न खाना सबसे ज्यादा पसंद है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल 26 तारीख है और आज 25 जून, कल 26 जून को रिलीज हो रही है अंजी, यानी कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय पाजी की मूवी वेलकम टू जंगल। सो अभी तक आपने टिकट बुकिंग नहीं की तो कर लीजिए, वरना पता चले सीट बुक हो गई तो कैसे आप देख पाएंगे। वो ऑलरेडी वो मुरादाबाद आ चुके हैं अपना प्रमोशन, यानी कि मूवी की प्रमोशन के लिए। तो कल 26 जून को इनकी मूवी रिलीज हो रही है वेलकम टू जंगल, उसी मूवी का एक गाना है, बड़ा शानदार है। सो इस गाने को हम इंजॉय करेंगे और आपने हमें मैसेज करके बताना है कि अगर आप मूवी देखने जाते हो तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा वाला पॉपकॉर्न्स पसंद आता है, सिंपल वाला या फिर मसालेदार वाले जो पॉपकॉर्न्स होती है चटपटी, वो पसंद है या सिंपल वाला पसंद है, हमें आपको मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896 पर मैसेज करिए। फिलहाल गाना सुनते हैं, उच्च लंबा कद आए है दूज

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: किंतु विकल प्राण बेहद धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया एक वरस गया एक वरस।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ, माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई चीटिंग वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है और 25 जून को क्या स्पेशल डे मनाया जाता है, चलिए बात करते हैं। यानी कि आज मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। यानी कि आज की ही तारीख 25 जून सन 1975 में इसी दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चर्चित अध्याय माना जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों नाविकों को समर्पित है जो समुद्र के रास्ते दुनिया भर में व्यापार और आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ विश्व वीटी लोगो दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें जिनके फेस पर यानी कि सफ़ेद दाग धब्बे हो जाते हैं उनकी तरफ जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस भी मनाया जाता है कि इस भाग दौड़ की दुनिया में ना अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ कुछ मैसेजेस हैं उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है जी। तो चलिए मैसेज देखते हैं कि किन का हमारे पास क्या मैसेज आता है। रीना जी, गुड वाली इवनिंग है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, जानकारी अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच जी। विक्की सागर जी, और अगले मैसेज की बात करूं तो नमस्ते रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आप गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। और मैं मैम आप शाम का प्रोग्राम बहुत सुंदर से पेश करती हो और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धे बिहार से, थैंक यू सो मच जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो दीपक जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। खुशबू जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल है जी। और निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, आई होप कि आपका भी आज एक फास्ट होगा जी। बिल्कुल, आज मेरा भी फास्ट है और जैसे मैं जब भी मैं शो करती हूँ ना, एक लिंक लेने के बाद मैं पानी जरूर पीती हूँ और बार बार मेरा हाथ मतलब ऐसा हो रहा है कि हाँ पानी तो आज मैंने अपने स्टूडियो से मतलब जहाँ बैठती हूँ वहां से मैंने बोतलें पानी वगैरह सब कुछ हटा दिया है, पता चले कि भैया गलती से मैं पी लूँ। तो मतलब मैं डेली मेरे साथ होता है कि जब भी मैं एक लिंक बोलती हूँ उसके बाद मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, लेकिन आज जो आपका डेली का रूटीन होता है ना वही होता है आपके साथ। तो आज मैंने बोतल वगैरह सब कुछ हटा दिया है और आपसे यही कहेंगे कि आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए, अभी बहुत धूप है, बहुत गर्मी है जिनका फास्ट है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो पूनम जी हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट होती हैं और आज कहती है कि एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं रीना जी, और मैं डेली आपको सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका जो बोलने का अंदाज है ना, सच बताऊँ मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट दिल्ली में भी बहुत रेडियो स्टेशन है बट मुझे आपकी बातें है ना पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है। ओके जी, लेकिन मैं मैसेज बहुत रेयर करती हूँ कभी कभी, लेकिन आपका शो मैं डेली सुनती हूँ। ओह थैंक यू सो मच जी कि आप मेरा डे मेरा शो है वो डेली सुनती हैं। चलिए इसी बात पर एक गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

Edam. Nasıl hem ayme?

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: बिल्कुल सही बात है जी, जिनको डांस नहीं करनी वो जाकर अपनी भैंस चराए। हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गनगनाते रहे जी। भैया आप बात कर लेते हैं, यानी कि वेदर अपडेट भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कल है 26 जून और 21 राज्यों में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें यूपी एंड बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लेकिन भैया मुरादाबाद का नाम कहीं नहीं लिखा है। आई नो कि यूपी में है मुरादाबाद, लेकिन नाम तो लिख देना चाहिए भाई, बारिश नहीं आएगी मुरादाबाद में। बहुत गलत हुआ हमारे साथ ये तो। थोड़ा सा बारिश आ जाए तो राहत मिल जाएगी, सच में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। ऊपर से आप फर्स्ट यानी कि थर्ड फ्लोर पर रहो तो भाई असली गर्मी का तब पता चलता है जब आप शाम को ऑफिस से यानी कि घर जाते हो, तो मन नहीं करता बिल्कुल यार घर जाने का, बस ऐसे ही मन करता है कि ऑफिस में दिन रात यहीं रहो यार, एसी का मजे लेते हैं ना ऑफिस में, इसलिए घर जाओ तो एसी नहीं, लेकिन ऑफिस में एसी का मजे लो यार, क्या जा रहा है, मजा आता है ना, इसीलिए ऑफिस गर्मियों में ना जल्दी आ जाते और शाम को भी थोड़ा लेट। हाँ ठीक है भाई, लेट जाएंगे ऑफिस, जरूरी नहीं है आपको हमें जल्दी जाना है। सो ये है हमारा वेदर अपडेट। बस मुरादाबाद में बारिश बताई जा रही है, लेकिन अभी नहीं श्रोताओं, वो बताएंगे कब है बारिश, कब होने वाली है, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता, यानी कि मौसम है कब करवटे बदल दे वो भी नहीं पता चलेगा, यानी कि कब अपना रुख बदल दे नहीं पता चलेगा, कब हवाएं दक्षिण से उत्तर दिशा पूर्व हो जाए कुछ भी नहीं पता चलेगा। चलिए इसी बात पर एक गाना सुनवाते हैं आप सभी को और लेकर आते हैं आप सभी के लिए कड़क कड़क क्या, अरे यार कड़क सवाल लेकर आने वाले हैं। चलिए फिलहाल गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:28 हो चुके श्रोताओं, यानी कि समय का तो पता ही नहीं चलता भैया कि समय ओहो कैसे जल्दी जल्दी निकल जाता है। और जब आप ट्रैफिक में हो और आपके पसंद के गाने प्ले हुए तो कतई नहीं पता चलता है जी, कतई जहर हो जाता है। चलिए, इसी बीच में आप सभी के बीच लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल। और आज का कड़क सवाल क्या होने वाला है, अरे सोचिएगा सोचिएगा और महसूस करिएगा। सो आज का कड़क सवाल है, जितना आप आगे बढ़ोगे उसे उतना आप पीछे छोड़ते जाओगे। हमारा म्यूजिकल नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है। वंस अगेन एक बार और मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, यानी कि जितना आप आगे बढ़ोगे उसे आप उतना पीछे छोड़ते जाओगे। हम डेली, हमारा काम है, हमारा कदम एक जगह नहीं रुकता है। आपने सोचकर हमें मैसेज बताना है जी कि आखिरकार क्या है, जितना आप आगे बढ़ो उतना ही पीछे छोड़ते जाते हो। सोचिए और फटाफट मैसेज करें। फिलहाल एक बहुत ही शानदार गाना हम लेकर आ गए हैं भैया आपके बीच में। चलिए तो ये गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, करेंगे ढेर सारी बातें। लेकिन भाई समय हो चुका है क्या, अरे कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो जाता है भैया, वो भी प्ले करना जरूरी है वरना हमारे बॉस बोलेंगे भैया अपने घर का रास्ता पकड़ो जाओ। चलिए जी,
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
3: प्रकृति से खुशियों की लहर।
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

क्या बात है जी, लाल घघरा, यानी कि पुराने मतलब जो गाने होते हैं ना, सुनकर मजा आ जाता है। सच में ऐसा लगता है कि बस भैया आप बैठे मत रहो, डांस कर लो, बस पैर रुकने का नाम ही नहीं लेते जी। अर्जुनीना के साथ आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, अरे अरे गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि गुनगुनाना बहुत जरूरी है मेरे जान। समय की बात करूं तो 6:37, यानी कि देखिए 37 नाम लेते ही 38 हो चुके भाई साहब। सेकंड सेकंड हमारे लिए मायने रखता है। सो आज 25 जून है और 25 जून भी हमारे लिए बेहद खास है, और खास इसलिए है क्या श्रोताओं, देखिए मैच देखने के तो दीवाने हैं, लेकिन हमें हम ये भूल चुके हैं कि मैच की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं जी, आरजे रीना है ना आप सभी को बताने के लिए, तो अरे यार टेंशन नहीं लेने का, जब रीना है तो मतलब जो भी आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना, उसको साइड कर दीजिए और बिंदास होकर आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए। तो आज ही के दिन यानी कि 25 जून 1932 को भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में, यानी कि सीके नायडू की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार स्टेट जो टेस्ट मैच है वो खेला था। यानी कि उस टाइम भले ही हमारी टीम इंडिया नहीं जीत पाई थी, इंग्लैंड की जीत हुई थी, लेकिन जो ये पारी है, मैच है, यानी कि बहुत लंबी पारी खेली गई थी। भले ही उस मुकाबले में जीत इंग्लैंड की हुई, लेकिन भारतीय टीम ने उस सफर की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर भारत को विश्व क्रिकेटर की महाशक्ति बना दिया। तो आइए आज याद करें उन खिलाड़ियों को जिन्होंने भारतीय यानी कि मैच की नींव रखी और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास रच दिया। और आज वही मैच, जो भी भाई पता चलता है कि मैच आने वाली है, तो बस बेधड़क बिंदास होकर भाई काम छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए, बस मैच देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैच के दीवाने हैं वही बता पाएंगे जी। क्योंकि मैं भी हूँ, जब कोई काम होता है तो भाई सच बताऊँ मैं काम वाम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, मैच देखने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैच से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और जब जो हमारे मैन क्रिकेटर है, वुमेन क्रिकेटर है, जब मैदान में उतरती है ना, तो सिर्फ वही मैदान में नहीं उतरती है, करोड़ों भारतवासियों का विश्वास है उनके साथ वो भी उतरता है, जज्बा, हुनर, हर चीज़ उनके साथ होता है। आज का हमारा कड़क सवाल भी बड़ा ही आसान है जी, बस आपने थोड़ा सा तो सोचना था। ओहो धत तेरी की, सोचिए जरा जनाब, जल्दी सोचिए। आज का क्वेश्चन है, जितना आप आगे बढ़ोगे उसे आप उतना पीछे छोड़ते जाओगे। आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने पहले यानी कि आंसर भी रिवील कर दिया है, लेकिन मैंने बातों को घुमाया, लेकिन आप सही समझ पाए नहीं समझ पाए वो तो आप ही बता पाएंगे कि आखिरकार मैंने आंसर भी रिवील कर ही दिया था उस टाइम कि जितना आप आगे बढ़ो उतना आप पीछे छोड़ते जाते हो। क्या है जी वो, सोचिए सोचिए सोचिए और महसूस करिए। फिलहाल ये वाला गाना है।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:47 हो चुके श्रोताओं, और अब बारी है आपके आए हाय प्यारे प्यारे जो मैसेज आए उनको शामिल करने का। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा तो सोचने का मौका मिलेगा यार, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। सो एक बार और आप सोच सकते हैं, आज का कड़क सवाल है, जितना आप आगे बढ़ोगे उसे आप उतना पीछे छोड़ते जाओगे। सोचिए और मैसेज करिए, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस की हैं। और गाने के बाद लौट कर आते हैं चीफ।
3: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी। फिजिकल वायलेंस का मामला है, मारता वारता है तू
4: ऑल द टाइम।
5: आर यू सिंगल?
6: फुल्ली सिंगल।
5: आई एम गोना गो गेट अनदर ड्रिंक देन।
6: बिगड़ी है क्या? चलेगी।
7: ഹലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: हे हाय आंटी।
1: Bachelor.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी और रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का नौवा दिन है, जिसे हम महानवमी के रूप में जानते हैं। यह पावन का निभा रही हैं। यह परिवर्तन संभव हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व के कारण। उनकी सोच स्पष्ट है, हर महिला को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर। इन पहलों ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया है। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, प्रशासन हो या उद्यमिता। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही हैं। माँ सिद्धिदात्री की तरह ही आज की नारी भी पूर्णता की ओर अग्रसर है। वह सक्षम है, आत्मविश्वासी है और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि हर महिला को सम्मान, समान अवसर मिले और वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। श्रोताओं, महानवमी का यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हमारे अंदर विश्वास, मेहनत और समर्पण का संगम हो। और आज उत्तर प्रदेश इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर नागरिक को अवसर मिल रहा है, जहां हर महिला सशक्त है, आत्मनिर्भर है और सम्मान के साथ जीवन जी रही है।
1: You are listening FM Muradabad 89.6 MHz.
2: Committed to community.

0: चर्चा आज हर जगह हो रही है। दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है और निशा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक साधारण परिवार में जन्मी निशा, जहां आर्थिक तंगी इतनी थी कि रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल पूरी होती थीं।
1: हमारे घर की हालत बहुत कमजोर थी। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे के लिए अक्सर उधार लेना पड़ता था।
0: सोचिए, जब हर दिन संघर्ष हो तब सपने देखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन निशा ने सपने देखना नहीं छोड़ा। निशा के मन में हमेशा एक बात रहती थी, अगर मौका मिले तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और यही मौका उन्हें मिला। स्वयं सहायता समूह और SVEP योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVEP, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत एक प्रमुख उप योजना है। यह 2016 में ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय स्थापित करने में मदद कर रही है।

0: उत्तर प्रदेश में SVEP योजना का उद्देश्य ग्रामीण योजनाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रामीण गरीबों को कम करना और गैर कृषि क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय, विनिर्माण, व्यापार सेवा स्थापित करने में सहायता करना है।
1: जब मैं जय भीम एवं सहायता समूह से जुड़ी तब मुझे पहली बार लगा कि मैं कुछ नया कर सकती हूँ। इस योजना में ASVEP ब्लॉकों में VR स्थापित किए जाते हैं जो उद्यमियों को तकनीकी और द्वितीय सहायता प्रदान करते हैं। कुछ स्थायी उद्यमी प्रमोट भी होते हैं जो नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं द्वितीय सहायता, समावेशिता और स्थानीय विकास है।
0: समूह की बैठकों में उन्हें स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली। उन्हें 10,000 रूपए ऋण मिला और अपनी बचत से 30,000 रूपए जोड़कर नवंबर 2021 में उन्होंने निशा ब्यूटी पार्लर की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में इस योजना की प्रगति की समीक्षा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM के मिशन निदेशक की अध्यक्षता वाली सीमित द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है। इस योजना से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए साधन विकसित हो रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो रहा है। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बड़े थे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों को टारगेट करती है। इस स्कीम में व्यवसाय योजना बनाने और प्रबंध की प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC के माध्यम से मार्गदर्शन, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
1: पहले हम सिर्फ हेयर कट, फेशियल और मेहंदी जैसे छोटे काम करते थे,
0: लेकिन दोस्तों जब काम में लगन हो और व्यवहार अच्छा हो तो सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेती है। निशा की मेहनत, उनकी विनम्रता और उचित कीमतों ने उनके पार्लर को जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने पार्लर में नई और आधुनिक सेवाएं जोड़नी शुरू करी और देखते ही देखते उनका छोटा सा व्यवसाय एक सफल उद्यम बन गया।
1: अब हमारे पास पहले से ज्यादा ग्राहक आते हैं और काम भी लगातार बढ़ रहा है।
0: आज निशा की जिंदगी पूरी तरह चल चुकी है। घरेलू खर्च आसानी से पूरे हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। सबसे बड़ी बात, अब उन्हें उधार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
1: अब हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ता, हम अपने पैरों पर खड़े हैं।
0: वाह, यही तो असली आत्मनिर्भरता है। और दोस्तों, निशा की सफलता सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपने पार्लर में अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया है।
1: मैं चाहती थी कि और महिलाएं भी हमारे साथ काम करें और आगे बढ़ें।
0: यानी अब निशा खुद एक प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी कहानी सुनकर गांव की अन्य महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं और प्रेरित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आज लाखों महिलाओं के सपनों को पंख दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। सरकार की सोच साफ है, हर महिला को अवसर मिले और हर महिला आत्मनिर्भर बने और हर परिवार मजबूत बने।
1: अगर हमें यह योजना नहीं मिलती तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
0: यानी सही समय पर मिला सही सहयोग किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। निशा का सपना यही खत्म नहीं होता है।
1: हम अपने पार्लर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्राइडल मेकअप, स्पा और नई सेवाएं शुरू करना चाहते हैं।
0: क्या बात है, यही तो आगे बढ़ने का जज्बा है। उनका सपना है कि उनका पार्लर एक मॉडर्न ब्यूटी स्टूडियो बने जहां दूर दूर से लोग आए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। निशा ने यह साबित कर दिया कि छोटे से गांव से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आज आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसी कहानियां इस बदलाव की सच्ची पहचान है। तो श्रोताओं, अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि सफलता आपकी राह देख रही है। SVEP में आवेदन करने के लिए आप ग्रामीण निवासी होने चाहिए, आपके ग्राम संगठन का क्लस्टर स्तरीय संघ CLF में या ब्लॉक स्तर पर SVEP के अंतर्गत कार्यरत CRP EP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल सकती है। बात अगर आवेदन फॉर्म की करें तो CRP EP के माध्यम से आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, आपको अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी होगी और ऋण मंजूरी मिलने के बाद सामुदायिक निवेश निधि CIF या बैंक से कम ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है। आपके पास अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। मैं हूं आपका दोस्त RJ राज, अभी के लिए लेता हूं आपसे अलविदा। जल्दी ही मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: सुनिए,

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया लोकार्पण। कहा, सबके प्रयास से ही सिद्ध होगा विकसित भारत का संकल्प। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को किया संबोधित। अटल जी की जयंती पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। और राज्य में ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अधिकांश जनपदों में अगले 3 दिनों के लिए जारी किया घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद आइन और जमहूरी इकदार के तहफ़ की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इमरजेंसी के 51वीं बरसी के मौके पर संविधान हत्या दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा,
1: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है, योजना का लाभ, उसका अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना, परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
0: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राममोहन रायडू ने आज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से पहली EZ कनेक्ट परवाज का इफ्तिताह किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट भारत के कोने कोने को दुनिया से बगैर किसी रुकावट के जोड़ने के मकसद से शुरू की गई है। ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत मुसाफिर अपनी आखिरी बैनुल अक्वामी मंजिल के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरी कर सकते हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में किस शहर में रहते हैं, आप अपने बैनुल अक्वामी सफर का आगाज अपने शहर से ही कर सकते हैं।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को ये हब एंड स्पोक मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। हवाई यात्रा या एयरपोर्ट आने से आपको पता है किस तरह से वो शहर को एक ताकत मिलती है, वो छोटा शहर नहीं रहता उसके बाद।
0: LDA ने लखनऊ के अलीगंज आतशजदगी मामले की महकमा जाति जांच करके कसूरवारों की शनाख्त कर ली है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब सदर प्रथमेश कुमार ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी थी उसका नक्शा 2014 में मंजूर किया गया था। इसके बाद 2016 में LDA ने मेयार पर पूरा ना उतरने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। महकमा जाति इंक्वायरी में 19 इंजीनियर्स और 6 PCS सतह के अफसरान की जानिब से गफलत पाई गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आग में जख्मी होने वाले 7 अफराद को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से इलाज के बाद फारिग कर दिया गया। दरियां असना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम रियासत भर में कोचिंग इदारों की मुसलसल जांच कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि मुआयने के दौरान 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अयोध्या इंतजामिया ने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुआयना करने के लिए 2 टीमें तश्कील दी हैं, जो न सिर्फ फायर सेफ्टी की जांच कर रही हैं बल्कि लोगों में बेदारी भी पैदा कर रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो धनघटा तहसील के बासवारी में वाक़े श्री बैजूनाथ धाम में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 139 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। रियासती हुकूमत ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को रजामंदी दे दी है। रियासती हुकूमत में वजीर ममलकत कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS को कॉरिडोर मगरबी उत्तर प्रदेश की तरक्की को नई सिमत दिलाने वाला दूरंदेश कदम साबित होगा। महकमा मौसमियात ने कल से रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने 28 जून तक मशरकी उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक आज भी रियासत भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान है। भारत में ताजिकिस्तान के सफीर बोबोल काली नजदान ने कल रामपुर में रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वहां महफूज शुदा नादिर नुस्खे हिंदुस्तान और ताजिकिस्तान के मुश्तरका सकाफती विरसे को समझने के लिए बहुत अहम हैं। रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर पुष्कर ने कहा कि ताजिकिस्तान और भारत के दरमियान सकाफती और तालीमी तआवुन को फरोग देने के लिए जल्द ही एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्ते आदाब, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम विशेष बातचीत में। दोस्तों, इस दिन को मनाने की खास वजह लोगों के बीच ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की पहचान हो सके और समय रहते वो अपना इलाज करा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो है वो साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनीत अग्रवाल जी के साथ, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका वेलकम है सर।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्ते सर, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को एक बार अपने बारे में जानकारी दें।
1: मैं डॉक्टर मोनीत अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इस समय बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशन में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी, इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
1: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना। अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है, जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामयक बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है।
0: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
1: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती है। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
0: अच्छा सर, इसका कोई विशेष कारण?
1: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशंस, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशंस के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
0: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है और इस पर हम
1: कि ये अमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप समझें कि पूरा हमारा शरीर जो है, वो हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है। अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
0: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, बस ऐसी हमारी कोशिश है और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
1: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि ये चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे मेनिंजियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में।
0: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
1: जैसे मैंने बताया, मेनिंजियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसी पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
0: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे।
1: देखिए, इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टियाँ आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है, और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है। इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर्स में भी देखते हैं, और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द तो उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
0: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और लक्षण तो आपने बताए। हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी, और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
1: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है, तो ये सब चीजें, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
0: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है।
1: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, और उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचें हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है। जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक तरह कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
0: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं।
1: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: Mixing in the house.

0: वाणी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत स्कूलों में आधुनिक प्रवेश द्वार, स्मार्ट आधारभूत ढांचा, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और खेल मैदानों का विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और कंप्यूटर लैब तथा मल्टीपर्पज हॉल का उन्नयन भी किया जाएगा। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टेक्सटाइल पाथ और अन्य दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल विद्यालयों भवनों की मरम्मत कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजना के सभी कार्य अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने राष्ट्रीय राजधानी में गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में आज NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा कि NDMC की नवी अनुपम कॉलोनी है।
2: ये नवी कॉलोनी है जो हमें अनुपम कॉलोनी में की उपाधि देने में हमें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। नवी कॉलोनी में पहली कॉलोनी जिसने अपना काम सामने रख दिया है कि और किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है और यहाँ का एक तिनका भी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे इतना भी कूड़ा निकलता है वो या तो कंपोस्ट होता है या फिर उसको सेग्रीगेट करके ये जो सामने वाले बिन देख रहे हैं इन सबों में जाता है, जिसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है।
1: गोल्फ लिंक कॉलोनी में कचरे का निपटान स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है और ये उपलब्धि परिषद और स्थानीय निवासियों के सहयोग से हासिल की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पूर्वी दिल्ली स्थित संजय झील का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें 52 एकड़ में फैले जलाशय और इसके आसपास के 165 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए तैयार कार्य योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक ढांचा तैयार करने और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि न्यायमूर्ति गाबा समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कोचिंग संस्थानों के लिए नियम और कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में शामिल हुए। ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से आयोजित किया था। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने तेजी से बदलते साइबर खतरे के परिदृश्य के बीच सरकारी डेटा, डिजिटल अवसंरचना और नागरिक सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत पर विशेष जोर दिया।
3: साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार पूरा काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सक्सेस के पर और दिल्ली सरकार भी इस पर काफी एक्टिव रोल से काम कर रही है। हमारी आईटी डिपार्टमेंट भी जो इंटैक्ट होकर साइबर की जो हैकर्स होते हैं, साइबर का कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से भी हैकर।

0: newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए मूलभूत है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है।
1: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
2: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
1: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल तक जारी रहेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 6 के तहत पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देशभर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपी फर्जी कंपनियां बनाने और बैंक खाते संचालित करने में शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में दुर्गापुरी एक्सटेंशन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 600 क्वार्टर शराब की बोतलें और अपराध में इस्तेमाल वाहन को बरामद किया। एक अन्य मामले में पुलिस ने नजफगढ़ क्षेत्र से एक आरोपी को 500 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद हमें दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां भी उन्होंने पढ़ी।
3: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
4: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बेहद, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: संविधान हत्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 25 जून 1975 की वो रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा आघात था। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का

0: काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया और मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ये भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। निर्जला एकादशी के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्जला एकादशी आस्था, संयम और सेवा का एक पावन पर्व है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम में एमएसएमई प्राइड वॉकथन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए दिल्ली ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के सहयोग से किया। कार्यक्रम का विषय गुणवत्ता, नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के लिए साथ साथ चलें था। इस अवसर पर आईआईए दिल्ली की अध्यक्ष डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शिनी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में आयोजित। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

तकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और इस वक्त आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 89.6 FM, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की जो ये ब्यूटीफुल महफिल है ना, ये किन की बातों से सजने वाली? कौन है जो इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं? डेफिनेटली आपको पता लगेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है, कोई अच्छा आपके अंदर स्किल है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टेशन में आके पूरी जनता तक उसको पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आके हमें DM कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, व्हाटएवर, आप शेर व शायरी करते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके लिए आपके शहर का अपना लोकल रेडियो स्टेशन है ना, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आज का ये प्लेटफॉर्म हम किसको देने वाले हैं? आई नो दैट आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, बट वही है ना कि कभी कभी जब आप आवाज़ सुनते हो और एक लंबे अंतराल की बात सुनते हो तो शायद थोड़ा बहुत मिसिंग तो हो जाता है। बिल्कुल बात नहीं, आज हम आप उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे उनको, एंड जब वो आपसे मिलेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ जाए। वेल, आज की शाम कौन है हमारे साथ इस महफिल में, बताता हूं आपको। तो आज की इस महफिल में हमारे साथ जो साथ देने वाले हैं वो है उत्कर्ष अग्रवाल जी। एंड इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जब मेरी इनसे अभी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने काफी कुछ बताया अपने बारे में। मतलब ही इज अ मल्टीटास्कर इंसान, बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं। एंड फिलहाल मुरादाबाद से तो बाहर ही रहते हैं, जैसे कि हम मुरादाबाद में आके कहीं और से यहाँ पर आपके लिए काम कर रहे हैं, बट अब तो मेरे लिए मुरादाबाद ही अपना शहर हो गया। आई लव मुरादाबाद सिटी। तो बिना किसी देरी के भैया को मिलवाते हैं आपसे। हेलो, हाउ आर यू भैया, कैसे हैं आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
1: नमस्कार, मैं उत्कर्ष अग्रवाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ सर। मेरी जो है हालचाल आप देख ही सकते हैं, स्टूडियो में बैठने के बाद सब एकदम ऑल गुड हो जाते हैं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। आप बताइए सर, आप मतलब पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आए हैं आप?
1: नहीं, FM मुरादाबाद में मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन दिस इज वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू। और
0: आई एम सुपर हैप्पी, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, यू नो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और
0: एब्सोल्युटली डेफिनेटली वो कहते हैं ना, जब किसी भी काम की शुरुआत सिर्फ कोलगेट मैक्स फ्रेश में है, आईसी कूलिंग, पॉजिटिविटी के साथ करते हो तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा ही आता है।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली
0: वो ही चीज यू नो आज इस सेशन में होने वाली है। सो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं उत्कर्ष भाई, मतलब यू नो आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्या है आपका काम?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊंगा अपनी बात बताने, लेकिन मैं उससे पहले अपनी एक लाइन में जरूर बता देना चाहता हूं, जो मैं इंट्रोडक्टरी शेयर अपने लिए कभी पढ़ना चाहता हूं। और वो लिखा था मैंने ऐसे कि भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं।
0: क्या बात है,
1: भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं, मैं जिस्मों की दुनिया में दिल हारने वाला लड़का हूँ। तो मैं जो बेसिकली हूँ, मेरा जो काम है वो, एक तो मैं पोइट हूँ, सिंपल सी बात है, आपने मुझे समझ लिया। तो लिखता हूँ, गाता हूँ और सिंगिंग करने का शौक रखता हूँ। साथ में सिंगिंग मैंने सीखी तो नहीं है, लेकिन पोइट्रीज में मेरा बहुत रुचि है, तो मैं प्रेम पे कविताएं लिखता हूँ। प्रोफेशन मेरा है टीचिंग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में फिलहाल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने लिए जो टाइम निकालता हूँ उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, या यूँ कहिए कि लोगों के जज्बातों को, फीलिंग्स को बस कागज़ों में उतारने का काम है थोड़ा सा।

0: साउंड्स इट्स अमेजिंग यार. मैं मतलब बहुत लोगों को हम इंटरव्यूज करते हैं, बहुत लोगों से हम मिलते हैं, एंड मैं उत्कर्ष भाई को सामने से देख पा रहा हूँ, तो मतलब उनको देख के इतने इनोसेंट, इतने यू नो सेंसिटिव लग रहे हैं वो, बट उनकी आवाज और उनका यू नो टॉकिंग ऑफ वे एब्सोल्युटली अल्टीमेट है यार. मतलब यू नो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो होता है ना उत्कर्ष भाई. एंड इतने मल्टीटास्कर हैं, मतलब आपने सारा कुछ बता डाला यार. तो एक एक करके यू नो आपका जो टैलेंट है उसको मैं चाहूंगा यहाँ पे हम पब्लिश करें, अपनी ऑडियंस
1: बिल्कुल
0: के बीच में
1: बिल्कुल
0: रखें. एंड गाइज ये जो सेशन है डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे जाने वाला है. सो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस सेशन को ऐसे ही एंजॉय करेंगे. अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त. तो आप कहीं मत जाइए, डोंट गो एनीवेयर. सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6. आज की इस महफिल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं हमारे साथ उत्कर्ष अग्रवाल जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ सुनेंगे. सो एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक.

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद। एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपने सुना और इस गाने को सुन के मुझे तो बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर हमारे जो प्यारे से गेस्ट हैं उत्कर्ष जी, उनको भी अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल डेफिनेटली।
0: एंड सर, आप तो आपने बताया कि आप ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, बट अब आप काफी लंबे टाइम के बाद आए। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी?
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत समय के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 ईयर हो गया होगा मुझे आए, और उससे भी ज्यादा शायद।
0: ओके, सो कुछ चेंज लग रहा है, यू नो, कुछ भी डिफरेंट, यू नो?
1: बहुत बहुत ज्यादा, मैं मतलब पहले से महसूस कर पा रहा हूँ कि हम लोग कितना डेवलप्ड हो गए और कितनी ज्यादा एफएम मुरादाबाद 89.6 इसका नाम है, वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है।
0: इनफैक्ट मुरादाबाद में हर चीज अपने आप में मतलब बहुत ही बढ़िया है, यू नो?
1: मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप आज के टाइम में भी एफएम जैसी चीज में तरक्की कर पा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज है कि लोग सुन रहे हैं।
0: Absolutely.
1: और ये सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, बहुत अच्छा एक चीज बना के उनको दे रहे हो, वो उनको मजा आ रहा है, जो पब्लिक को बना रहा है, आपका लिसनर आपसे कनेक्ट कर रहा है।
0: Got it.
1: तो मैं कहूँ कि जैसे मैं सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हुई, तो मैं देखता हूँ कि बहुत रीच आप लोग पकड़ रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है यार।
0: बट दिस इज़ वेरी, यू नो, कह सकते हैं कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत ज़्यादा, इतना ईजी नहीं है, दिस इज़ वेरी क्रिएटिव।
1: नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक जैसे मैं भी हूँ, मैं मुझे गाने का इतना नॉलेज नहीं है। मैंने आपको शायद बताया होगा, मेरा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले स्पॉटीफाई और यूट्यूब म्यूजिक और सावन पे भी मेरा एक गाना आया।
0: ओ वाह,
1: जानिया के नाम से वो लिखा मैंने है और मैंने गाया भी है, बट सम वॉइस सैंपल्स यूज करे हैं मैंने उसमें, ऑटो ट्यून किया है, क्योंकि आई एम नॉट अ हार्डकोर सिंगर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके एफएम रेडियो पे बता दूं, क्योंकि मैंने सिंगिंग सीखी नहीं, बट मुझे लिखना था और वो गाना मैं चाहता था कि बने और बिना खर्चे के बने, सबसे बड़ी बात, तो मैं चाहता था कि वो बने। तो मैंने खुद सिस्टम पे बैठ के उस पर 2-3 महीने जो मैंने काम किया, मुझे पता है कि गाने को गाना बनाने में शायद कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। इसी तरीके से एक जो पीस आप तैयार करते हैं, एक शो आप तैयार करते हैं, उस शो को शो बनाने में, जो फिनिश प्रोडक्ट लोगों को कहने में सुन के अच्छा लगता है, उसको बनाने में पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी रिसर्च होती है, वो डेफिनेटली मैं रिलेट कर सकता हूँ, और उसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ भाई साहब, बहुत अच्छा शो बनाते हैं।
0: अरे धन्यवाद सर। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि एज अ बीइंग अ आरजे, अगर आप रेडियो कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल होना चाहिए, रेडियो पे जेन्युइन होना चाहिए। जैसे एक एक्टर को कैमरे पे बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग के साथ आना पड़ता है, क्योंकि वरना कैमरा होता है ना, छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है एक एक्टर की, है ना, वैसे ही हमारा माइक होता है, हम इसके साथ में ना कोई भी, यू नो, फेक चीज नहीं कर सकते हैं। आप जितना ओरिजिनल साउंड करोगे, लोग उतना ज्यादा आपसे कनेक्ट होंगे, वो कनेक्टिविटी तभी बनती है जब आप ऑर्गेनिक चीजें डिलीवर करते हो बेसिकली। तो वो चीजें, सो गाइज प्लीज बोर मत होना, बैक टू पॉइंट चलते हैं हम उत्कर्ष भाई की दुनिया में एंड कुछ उनसे इंटरेस्टिंग सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जब अभी म्यूजिकल ब्रेक पे गए थे तो मेरा उनसे एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा था, वो यू नो कुछ वॉइस को लेके कुछ तो यू नो कर रहे थे हम लोग आपस में टॉक, आरजे उन्होंने देखे हैं और उनको अच्छा लगा मेरा, और वो भी कुछ बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, यू नो, वॉइस के बारे में कुछ तो चल रहा था उत्कर्ष भाई अभी हम लोग।
1: मैं आपसे ये बात कर रहा था कि वॉइस की जो बात हुई, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि वॉइस कितना मैटर करती है जब आप कोई पोइट्री डिलीवर करने वाले, आप कोई शो डिलीवर करने वाले, स्पेशली इन आरजे या एंकरिंग का जो शो होता है, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और यदि हमारी वॉइस अच्छी नहीं होगी या इम्पैक्टफुल नहीं होगी, तो शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी।
0: Correct.
1: मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं बहुत सारे पोएट्री शोज में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो लोग नए नए लिख रहे हैं या नया नया पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ते हैं, मतलब एज अ जैसे रीडिंग कर दी उन्होंने, और उनकी वॉइस में वो इम्पैक्ट नहीं होता। शायद उन्होंने, उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो वॉइस उनकी कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों से। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ज्यादा अच्छा ना भी लिखा हो, और उसका पढ़ने का, कहने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे आंखें और आवाज जो होती हैं वो दिल में उतरने का रास्ता होती हैं। तो अगर किसी के दिल में आपको उतरना है तो आपको अपनी आवाज में भी गहराई लानी चाहिए, जो कि आपकी तो आवाज में मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अरे सर, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट अ शायर, आई एम नॉट पोएट,
1: बट वो ना, मतलब अगर आपसे कोई फोन पे बात करे तो आई थिंक वो फैन हो जाएगा, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो,
0: वो अगर मैं आपको उत्कर्ष भाई एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर करूँ, अगर हम रेडियो इंडस्ट्री में है, रेडियो फील्ड में है, तो डेफिनेटली वॉइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: वॉइस इज वेरी
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो में और रेडियो पे लोग हमें देख नहीं रहे।
1: आप देखिए, गाने भी लोगों ने कितने अच्छे अच्छे बना दिए, लेकिन जिनकी वॉइस अच्छी नहीं है, जो बना नहीं पा रहे, वो कानों में रह नहीं पाए, याद नहीं रह जाते आपको, याद रह जाती है वो सूथिंग वॉइस।
0: एब्सोल्युटली
1: वो शोज में अगर आपको याद करता है तो किसी ने रेडियो में आपका चेहरा नहीं देखा आरजे का स्पेशली, अगर लोगों को याद रह जाता है कि ये वॉइस है आरजे आनंद की, तो वो क्या है, वो आवाज है। आई थिंक वॉइस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, वो बहुत नेसेसरी है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए।
0: जैसे अभी आपकी आवाज बहुत इम्पैक्टफुल है और जो हम सभी लिसनर्स को, बिकॉज मैं भी अभी आपका लिसनर ही बन के बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे बहुत मजा आ रहा है और हम सब बहुत वेट कर रहे हैं। उत्कर्ष जी, आप कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ तो सुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब है। कौन सी चीज है जिसके साथ आप, एक कहते हैं ना किसी भी काम की शुरुआत आप कुछ जब हैपनिंग तरीके से करते हो तो मजा आ जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ बढ़िया सा कुछ खुशनुमा सा माहौल बनाते हैं कुछ तो अपने लिसनर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, कुछ अच्छा सा जो आपको लगता है यार ये चीज तो मैं डिलीवर कर ही सकता हूँ आनंद।
1: बड़ी प्यारी सी मेरा एक शेर है छोटा सा,
0: हाँ,
1: बहुत ही प्यारा है, वो सुनिए कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे, ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो।
0: वाओ,
1: ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो, तुम्हारे इन झुमकों में बसती है जान मेरी, इन्हें उतार कर तुम कहाँ रख रही हो।
0: क्या बात है यार, यू नो मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम से हमने ये पोइट वाला मतलब यू नो शुरू किया है, स्पेशली मैं अभी कुछ टाइम से ही कर रहा हूँ ये उत्कर्ष भाई।
1: अच्छा,
0: सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब यू नो मुझे पहले ना समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, ये होता क्या है, मतलब व्हाट इज दिस पोएट्री और ये सब, मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स वगैरह में मैं गया हूँ तो देखा है मैंने लोग करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है सब चीजें सामने आ जाती हैं, आप स्क्रॉल करोगे आपको नहीं पता आपके सामने क्या चीज अच्छी आ जाए जो आपको टच कर जाए, यू नो तो वो चीजें। बट ये जो चीजें आप लोग बोलते हैं ना, जो भी आप आपके शब्द होते हैं जो पोएट्री में आप रो रहे हैं या जो भी आप शायरी कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये बड़ी सच्चाई वाली चीजें हैं, बस आप उनको ना अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, बट ये ऐसा लगता है कि सच्चाई से हमारा एक सामना करा रहे हो आप लोग,
1: बिल्कुल
0: ये पोएट्री हो गई शायरी हो गई ऐसा लगता है हमें आईना दिखाया जाता है।
1: बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं मतलब कभी कभी मुझसे ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, हालांकि हर राइटर इससे रिलेट करेगा, उनसे ये पूछा जाता है कि आप इतनी जो शायरियां लिख रहे हैं क्या दिल टूटा है या दिल लगाया है किसी के लिए लिख रहे हैं,
0: ये तो मैं भी पूछने वाला था,
1: बट हाँ मैं बता देता हूँ आपको कि हाँ समटाइम्स ये जरूरी हो जाता है,
0: मतलब
1: समटाइम ये है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल टूटा हो अगर आप एक अच्छे राइटर हैं या फिर आप अच्छे इमेजिनर हैं, आप जितना अच्छा सोच पा रहे हैं उतना अच्छा आप लिख पा रहे हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छा पढ़ें, पढ़ेंगे आपकी सोच अच्छी होगी, और मतलब जैसे मेरा एक और मैं आपको एक शेर सुना,
0: अरे वाह बिल्कुल इरशाद,
1: मैं दिल्ली में रहता था जब, तो मैं लीगल इंटर्नशिप कर रहा था हाईकोर्ट में,
0: ऑलराइट,
1: तो वहां पर हम एक रूम में रहते थे और पीजी में, उसके बराबर में एक गर्ल्स पीजी था, तो अक्सर 8 बजे एक लड़की छज्जे पे आती थी,
0: और मतलब छज्जा जो छत
1: छज्जा यानी कि बालकनी,
0: ऑलराइट,
1: वो छज्जा इसलिए क्योंकि मैंने वो वर्ड बालकनी
0: यू नो मतलब मुझे थोड़ा सा इसलिए भी लगा क्योंकि एकदम फ्लैशबैक में चला गया, छज्जा मतलब हमारे घर के बाहर एक छोटा सा बना दिया जाता था उस पे पेड़ वेड़ रख देते थे हम लोग,
1: बालकनी तो मॉडर्नाइज घर में होती है, पहले तो छज्जा ही हुआ करते थे,
0: करेक्ट,
1: तो एक लड़की ठीक 8 बजे बालकनी में आती थी और मेरा एक जो रूममेट था वो उसको डेली देखता था, और उसके बहाने हम लोग चाय पीने जाते थे, और ये होता था कि अगर दिख गई तो चाय वो पिलाएगा, नहीं दिखी तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा।
0: क्या बात है ये मतलब एक बड़ा अच्छे से सेटिंग्स आप लोगों ने करके रखी हुई थी मतलब
1: जी,
0: तो कितनी बार है जो जब आपने उनको चाय पिलाई है?
1: नहीं नहीं, नहीं मेरा केस नहीं था, ये केस मेरे दोस्त का था और उसने मुझे बहुत बार चाय पिलाई।
0: अच्छा, नहीं, मतलब तो आप लोगों की तो यहाँ पे एक बेसिकली एक टर्म्स एंड कंडीशन थी ना कि अगर वो आई तो वो पिलाएगा, नहीं आई तो आप पिलाएंगे,
1: तो मैंने तो बहुत कम पिलाई
0: थी, मतलब वो आई है इसलिए उसने आपको पिलाई है।
1: जी जी,
0: गजब तो यार
1: हुआ ये कि कुछ दिन तक वो आई नहीं,
0: ठीक है,
1: तब एक शेर मेरा बना कि मैं एक शेर सुनाता हूँ, मेरा एक शेर बना,
0: प्लीज यार श्योर,
1: ओके, शेर ये था कि तभी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया,
0: वाह,
1: तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया,
0: क्या बात है,
1: भी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया, तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया, तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी,
0: वाह जी वाह,
1: तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी, तुमने तो बस छज्जे पे आना छोड़ दिया।
0: अरे वाह क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब
1: तो कभी कभी शेर आपके जो ऐसे पोइट्रीज होती हैं वो ऐसी सिचुएशन से निकलती हैं।
0: अच्छा ये चीज ना बड़ा यू नो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इजी, आप किसी भी चीज को जब देख रहे हैं फील कर रहे हैं फिर उसको आप अपने शब्दों में पिरो रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: ये बहुत यू नो मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग भी होता होगा यार।
1: बिल्कुल होता है, लेकिन जब आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो कभी ना कभी ये चीजें बनती हैं। जैसे एक और है, जैसे मैं टीचर ही हूँ तो मैं पढ़ा रहा था लॉ कॉलेज में, तो मैं बड़ा फ्रेंडली टीचर हूँ, तो मेरे से दो मेरे
0: तो
1: बच्चे होते हैं,
0: आपको देख के लग रहा है आपका एनवायरमेंट ऐसा है ही।
1: तो अक्सर बच्चे अपने, एक लड़का है तो वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में ऐसी डिस्कस कर रहा था। ये मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारी अटेंडेंस लो हो रही है, क्यों नहीं आ रहे हो? तो क्लास के बच्चे ने चिल्लाया, सर वो भी नहीं आ रही है इसलिए नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है और तब एक शेर बनता है कि आंखों से ही दिल में उतर जाना होता है,
0: वाह जी वाह,
1: इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है।
0: गजब।
1: आंखों से दिल में उतर जाना होता है, इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है, कॉलेज बस तेरे दीदार को आते हैं,
0: अरे वाह,
1: अटेंडेंस तो महज बहाना होता है।
0: क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब कितना कमाल का आपका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई साहब।
1: अटेंडेंस है ये तो सिर्फ एक बहाना होता है, हम तो कॉलेज तेरे दीदार को आते हैं।
0: क्या बात है,
1: तो सिचुएशनल
0: शायरी। ये बेसिकली ये अगर देखा जाए तो ये सच भी है, कई प्रतिशत सच भी है ये बात। बहुत लोग हैं जो यू नो ये चीज,
1: मैं वही कह रहा हूँ कि जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा,
0: करेक्ट,
1: आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। आप जॉन एलिया साहब को लिखिए, आप बशीर बद्र साहब, जितने बड़े बड़े पोइट्स हैं आप उन्हें अगर सुनी है, तो बशीर बद्र साहब अपने शायरी में कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
0: वाह,
1: इतना मत चाहो उसे वो खुदा हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हैं उतना अच्छा आप लिख सकते हैं।
0: बातें उत्कर्ष भाई से ढेर सारी हो रही हैं और बहुत सारी चीजें अभी आगे भी सुनेंगे। आई नो दैट थोड़ी सी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी, बट कोई बात नहीं, अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का टाइम है। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वी कम बैक, मैं और उत्कर्ष भाई आ जाए। आज मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ स्टूडियो के अंदर, और आज हमारे साथ उत्कर्ष भाई मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, ढेर सारी बातें कर रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी शेरो शायरी से आपको जो है आज बड़ा सुकून दे रहे हैं भाई। मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया है भाई की बातें सुन के। अब आपको जो एक बढ़िया से गाना सुनाते हैं, उसके बाद कराते हैं आपकी हिम्मत जाए।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
0: हेलो जी, कैसे? लेकिन ऐसे लगा नहीं यार, हम पहली बार मिल रहे हैं भैया।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो आज की शाम, एंड आई एम रियली श्योर आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको भी ये सेशन डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। यार मुझे तो एक ही शायरी आती है, इतने सारे शायर आए हैं, मैंने एक भी शायरी नहीं करी है, बट मेरे को ना एक्चुअली वो थोड़ी गंदी वाली शायरी आती है, उसको सुन के आप लोग हंस जाते हो। वो है ना मेरी एक बड़ी वो पुरानी सी शायरी जो मैं अक्सर चिपकाता रहता हूँ कि भर लो बाहों में कर दो मदहोश, भर लो बाहों में कर दो मदहोश, कौन से कबूतर खासे खरगोश।
1: खरगोश।

0: भाई मेरे को इससे आगे वाली नहीं आती है। वेल लेट मी टेल यू, ये जो शायरी थी तो बहुत गंदी थी, बहुत बकवास और भैयात शायरी थी मेरी, बट जो उत्कर्ष भाई सुना रहे हैं बहुत ही प्यारी है यार, बिकॉज उनका जोनर ही यू नो अलग ही है। भाई वेलकम बैक है आपका एक बार फिर से,
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू
0: एंड आई
1: भाई।
0: होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे यार हमारे
1: बिल्कुल
0: साथ इस
1: बिल्कुल,
0: सेशन
1: मैं
0: को।
1: डेफिनेटली बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि ये सेशन कहीं खत्म ना हो जाए।
0: ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, मैं क्या ही करूं, बट बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। मतलब दोस्तों कभी कभी होता है ना कि जब आप किसी से अच्छे से दिल से बात करते हो तो ऐसा लगता है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसा होता है उत्कर्ष भाई? जैसे
1: बिल्कुल
0: मैं एक्चुअली भाई को बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था, तो भाई भी मेरे को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ क्या यही पर्सन है जो आने वाला है, आई डोंट नो। फिर ये इन्होंने मेरे को पूछा, मैं हाँ जी हाँ जी, फिर जो ना थोड़ी सी बातचीत करी, लेकिन ऐसा लगा नहीं यार हम पहली बार मिल रहे हैं भैया,
1: हाँ
0: यहाँ पे
1: बिल्कुल
0: स्टूडियो में आके से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लाइव ऑन
1: बिल्कुल
0: एयर,
1: भाई
0: तो ऐसा लग नहीं रहा ना कि हम पहली बार मिले हैं, और ये होना भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आप आए, और ये बड़ी खुशनसीबी हमारी कि हम आपको सुन रहे हैं यहाँ बैठ के,
1: नहीं,
0: बहुत
1: मेरी
0: ही
1: भी खुशनसीबी है कि आपने मुझे बुलाया,
0: अरे सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप बड़े
1: बड़ा
0: बिजी और
1: मजा आ रहा
0: बड़े
1: है।
0: बिजी पर्सनालिटी हैं आप, मैंने सुना है, तो आप जो है
1: नहीं,
0: शाम को
1: बिजी
0: रवाना हो जाएंगे।
1: पर्सनालिटी का तो सर ये है कि मतलब जब आप काम में लग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपके ऊपर आ जाती हैं,
0: हाँ
1: तब फिर आप बिजी हो जाते हैं। वरना
0: करेक्ट,
1: आपको पैशन और प्रोफेशन आपका जब अलग हो जाता है ना, तो प्रोफेशन आपको पैशन की तरफ आने नहीं देता।
0: यार अब मेरा ऐसा मानना है उत्कर्ष भाई कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले तो कितना अच्छा है।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, और इसी कोशिश में भी हूँ कि
0: नहीं
1: मेरा एक
0: मैंने
1: दिन
0: तो अपने
1: पैशन जो
0: पैशन
1: है
0: को
1: वो
0: ही अपना
1: प्रोफेशन
0: प्रोफेशन
1: बन
0: बना
1: जाए।
0: लिया है, मेरा पैशन था मुझे रेडियो में आना है, मुझे बातें करनी है, बिकॉज आई लव यू नो टॉक करना, ये आई लव दिस जॉब, मैं हमेशा इसको बोलता भी हूँ, मुझे बहुत
1: आपसे
0: पसंद है।
1: ज्यादा खुश इंसान ही नहीं होगा फिर,
0: इसीलिए अब मुझे
1: अगर
0: बहुत सारे
1: आपने
0: लोग,
1: ये काम कर लिया है
0: हाँ
1: तो।
0: मतलब यार मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष भाई, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मुझे रात को 2 बजे भी कभी ऐसा लगता आता है कि यार आपको आना है करने कुछ, तो मेरे को लगता ही नहीं रात के 2 बजे यार यही तो करना था मुझे, अब 2 बजे क्या देखना भाई, चल यही तो मेरा पैशन था।
1: जब दिल से काम होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं।
0: करेक्ट, और फिर हमें उसमें ना ऐसा नहीं लगता यार हमें टाइम पूरा करना है,
1: बिल्कुल डेफिनेटली
0: हमें उसमें लगता
1: डेफिनेटली,
0: है यार थोड़ा टाइम और मिल जाए।
1: जॉब होता है ना, तो जॉब होता है 9 to 5, और
0: एब्सोल्युटली
1: आप जब नाइन जॉब की तरह करते हैं तो वो 5 बजने का इंतजार होता है,
0: गॉट इट, आप
1: और
0: बार बार
1: सुबह
0: घड़ी
1: नौ
0: देखोगे,
1: बजने से पहले आप उठते नहीं
0: उठते नहीं है।
1: हैं। तो लेकिन आपका जब पैशन होता है ना, काम करने का मन होता है, अच्छा होता, तो सुबह के 9 नहीं दिखते, शाम के 5 नहीं दिखते आपको।
0: करेक्ट करेक्ट, और जब आप
1: ये
0: दिल
1: अंतर
0: से
1: हो
0: काम
1: जाता
0: करते
1: है
0: हो
1: जब दिल से
0: स्पेशली,
1: आप काम
0: बहुत
1: करते
0: ही
1: हैं।
0: बढ़िया आपने बोला है भाई, और हम भी आपके लिए डेफिनेटली प्रे करेंगे कि आप अगर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो आई रियली होप ऐसा हो, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे कनेक्ट हूं तो आप ही बोलें कि आनंद आज मैं अपने पैशन के साथ आया हूं और ये मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन हो गया है।
1: बिल्कुल
0: दैट्स अमेजिंग उत्कर्ष भाई, अब जो है ना अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं जिक्र कर रहे थे किसी फ्रेंडशिप का कोई किस्सा, आई थिंक आप सुनाने वाले थे ना।
1: हाँ, मैं एक दोस्ती का बहुत ही सच्चा और मतलब अच्छा किस्सा सुनाने वाला था,
0: डेफिनेटली
1: लेकिन उसको बस थोड़ा सा मैंने पोइट्री में ढाल दिया है, उसके अंदर की रियलिटी बिल्कुल रियल है। तो हुआ ये कि ये फ्रेंडशिप डे पे मैंने लिखा था,
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो कल कुछ पुराने पन्नों को टटोला तो कुछ बिखरे अधूरे अल्फाज मिले,
0: क्या बात है,
1: उसी डायरी में तुम्हारा जिक्र किया था मैंने जिसकी हर शायरी में, एक सूखा सा मुरझाया हुआ गुलाब भी था, और ये वही गुलाब था जो मैं तुम्हें देने के लिए एक गरीब बच्चे से खरीद कर लाया था, और उसने मुझे साथ में एक दुआ भी दी थी, कहा था भैया आज ना आपको आपका प्यार मिल जाएगा। तो उस दिन ठान लिया कि कह दूंगा तुमसे दिल की हर एक बात, बता दूंगा तुम्हें अपने सारे जज्बा, मिटा डालूंगा दरमियां हर दूरी, और तब जाकर होगी तेरी मेरी कहानी पूरी।
0: क्या बात है यार,
1: मगर मगर मगर मगर मगर मेरी एक किस्मत, मैं तुम्हें कभी वो गुलाब दे ही नहीं पाया, और देता भी तो कैसे, तुमने उस दिन मुझसे पूछ जो लिया था कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे ना, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा, और तेरे इन दो सवालों ने मुझे तुझसे कुछ भी कहने से रोक दिया। तब दिल से यह आवाज आई कि शायद शायद तुझे मेरे हाथों में हाथ डालकर चलने से ज्यादा मेरे संग वक्त बिताना पसंद है, मेरे संग लड़ना पसंद है, तुझे बाजार के तोहफे नहीं मेरे साथ वक्त बिताना पसंद है। और फिर इस दिल ने तय कर लिया कि अब चाहे अब कोई भी इजहारे नहीं होगा, कोई मोहब्बत नहीं होगी, होगी तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता चाहे जैसा भी हो मुझे कबूल था। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: बहुत ही बढ़िया यार।
1: तो ये जब किसी दोस्त को लिखा गया कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तब ये लिखा गया था। बड़ा कनेक्टिंग है। आई होप सो कि मेरे जो लोग ये सुन रहे हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, वो जब ये सुनेंगे तो वो बहुत रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से।
0: मेरे को ना एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, यू नो, कि आप जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो ना, आप उसमें यू नो घुस जा रहे हो। वो कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज़ करते हो तो आप उस कैरेक्टर में घुस जाओ। आपने अभी ये फ्रेंडशिप वाला जो भी किस्सा शेयर किया, इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो। आई डोंट नो, बिकॉज ये एकदम रिलेटेबल इसलिए लगा क्योंकि वो स्टोरी आपने खुद के ऊपर यू नो एकदम से ब्रॉडकास्ट कर दी कि ये मेरी कहानी है।
1: yes.
0: और आपने उसको ऐसे शेरो शायरी या पोएट्री वे में नहीं, आपने उसको स्टोरी टेलिंग के साथ में यू नो इतने फ्लुएंटली बोला, इतने अच्छे से और इतनी मधुर आवाज में मनमुक्त हो गया मैं तो।
1: इसीलिए मैं कहता भी हूँ हर बार कि आप जो लिखने वाले हो उसको पहले ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को फील करिए।
0: एब्सोल्युटली।
1: जब आप फील कर लेंगे उस चीज को, दैट आप इमेजिन कर लेंगे कि आई एम इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं हूँ, तब आप
0: बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
1: बीइंग अ राइटर आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
0: और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ डिलीवर भी कर रहे हैं,
1: तो आप उससे अच्छा नहीं डिलीवर।
0: क्योंकि वो जब तक आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, जब तक वो फीलिंग नहीं होंगी। इनफैक्ट ये सिंगर का भी सेम रहता है उत्कर्ष भैया, जब वो कोई गाना गा रहे होते हैं, अगर उनका जोनर है कि भैया आपको सैड गाना है, तो वो मैंने उदित नारायण जी का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जब अगर कोई हैप्पी गाना गा रहे हैं तो आप इतने हैप्पीनेस के साथ गाइए कि आपसे दुनिया में ज्यादा कोई खुश है ही नहीं। मतलब आपको ऐसे गाना है कि सबसे ज्यादा खुश आप हैं, तभी वो एक्चुअल में फील होगा सामने वाले को। और अगर आप कोई सैड चीज कर रहे हो तो आपको ऐसे करना है कि आपसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई और है ही नहीं, आप ही सबसे ज्यादा दुखी दुनिया के इंसान है, तभी आप एक्चुअल में अपना जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप दे पाएंगे
1: 100%।
0: ये बिल्कुल फैक्ट है और ये आप में कूट कूट के भरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बड़ी शांत और बड़ी सरल स्वभाव के साथ बात कर रहे हैं, मतलब इतनी रियल लाइफ में भी शांत है या फिर इधर माइक पे बैठ के आप इतने शांत है?
1: नहीं, मैं जनरली, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही अपना इंट्रोडक्शन शेयर बताया था, मैंने कहा कि मैं भोला सादा सा जान निसारने वाला तो मैं हूँ एक्चुअली। मेरा नेचर ही सबसे पहले
0: चुपचाप से रहने वाले टाइप के लग रहे हैं आप।
1: रहने वाला नहीं, चुपचाप तो नहीं रहता हूँ, बोलने वाला, हंसी मजाक करने वाला और ये।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: लेकिन मेरे अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि रिजर्व्ड है बहुत ज्यादा।
0: ऑलराइट।
1: तो मैं काफी जगहों पर खुद को शांत और अच्छा महसूस कराने के लिए अकेले बैठना पसंद करता हूँ, बात करना। और मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो जनरली काम ही रहता है। हूँ टीचर, लेकिन कभी चिल्लाता नहीं हूँ क्लास में, इवन जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चों से भी अगर आप कभी मिलेंगे तो पहली बार टीचर्स की फैन फॉलोइंग मैंने देखी है, जो मेरी है शायद, आई गेस मेरी है।
0: लग रहा है मुझे वो आपकी, यू नो, वो इंसान की नेचर में आ जाती है।
1: कर रहा हूँ, बट मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नेचर है ऐसा कि मैं थोड़ा सा काम रहता हूँ, थोड़ा सुलझा हुआ, थोड़ा
0: एक्चुअली। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई जाना है, उसके बाद वो वहां जा रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सेम चीज कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आ जाता है।
1: असल में क्या था कि मेरे फादर से पापा बहुत पापा टाइप वाले पापा थे मेरे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, तो उनसे कभी ना कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पापा मुझे एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, पोएट्री या शायरी कुछ करना है। अभी तो क्या है कि अभी जगह जगह जाते हैं, शोज करते हैं, तो पता चल जाता है, पापा बड़े खुश होते हैं। अभी उड़ीसा मुरादाबाद में जो हुआ था लिटरेरी इवेंट, उसमें भी मुझे पढ़ने का मौका मिला और काफी अच्छा मोमेंटो वगैरह उन्होंने दिया, तो पापा को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी हमारे टाइम पे, जब हम छोटे थे तब हमें इतना मौका नहीं मिला, तो हम पढ़ाई। फिर मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने मन का ना कर सको तो आप जो कर रहे हैं उसमें अपना मन लगा लीजिए। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, मैं पापा के डर से किताब खोल के बैठ सकता हूँ, बट मैं पढ़ नहीं सकता,
0: लेकिन उनको शो ऑफ करेंगे कि हाँ, आपका हाँ, प्रेशर है, हम पढ़ रहे हैं।
1: और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे यही
0: कर रहे हैं, वो दिल से नहीं आ रहा होता बेसिकली।
1: लेकिन अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है, आप इससे परे नहीं जा सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप अपना कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो फिर जो कर रहे हैं उसको मन से करिए। क्योंकि इनपुट जब आप दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, विच इज मनी करंटली, मतलब टाइम इज मनी ना, और अगर आप अपना किसी चीज को टाइम दे रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, उसको इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप जो भी काम करें मन से करें, भले वो आपके मन का हो रहा हो या किसी और के मन का हो रहा हो।
0: पॉइंट तो है गाइज, और अगली बात जो होगी वो आपके मन की होगी, आपके हित की होगी, क्योंकि अगला म्यूजिकल ब्रेक आपके लिए आ रहा है यार। हमारी बातचीत तो चलती रहेंगी, सो आपके ही मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको लग रहा है आनंद, थोड़ा सा गाने शाने की तरफ ले जाओ हमें, ठीक है। एक बढ़िया सा म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, एक बढ़िया सा गाना सुन के वापस जल्दी मिलेंगे आपसे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। उत्कर्ष अग्रवाल जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और हम लौट कर आएंगे तो उनकी एक बहुत ही अच्छी सी एक वो उन्होंने बताया था ना राधा कृष्ण के ऊपर कुछ तो लिखते हैं बढ़िया सा, तो वो हम सुनेंगे। आप कहीं मत जाइए, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। एंड ऑफिशियल आईडी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं आप, FM मुरादाबाद 89.6 इस नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कीजिए। वहां पर भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। और अभी एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस लेकर आते हैं कर्ष जी को। आप में जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद। क्या हाल चाल है जी, सब बढ़िया?
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
6: पार्टनरशिप विद UK इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
7: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
5: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष

0: मीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और वाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI,

0: क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89। वो भी किस्सा शेयर किया, इसके अंदर ऐसे लग रहा था कि आप ऑलराइट
3: तो मैं अपने मन का ना कर सको तो आप जो कर रहे हैं उसमें अपना मन लगा लीजिए।
2: दैट्स नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत ही जेन्युइन

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरे आप आए और आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिसनर्स के साथ साझा किया और आपने जितना भी जो भी सुनाया वो बहुत ही मजेदार था और बहुत ही मतलब काबिले तारीफ था यार भाई। मजा आ गया आपकी इस कॉन्वर्सेशन को सुन के। एंड आई होप यार आप तो खुद ही डिलीवर कर रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें, आपको कितना मजा आ रहा है आप बताओ यार भाई।
4: नहीं, मुझे तो डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है बातचीत करके, क्योंकि मैं तो चाह ही रहा था कि ये सेशन खत्म ना हो, क्योंकि मजा आ रहा है बातचीत में।
3: अरे वाह क्या बात है। अच्छा मतलब यू नो आपको ऐसा कुछ पता था कल तक कि आज आप इधर आने वाले हैं?
4: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस
3: कल रात को तो ऐसे सोचे नहीं थे कल एक आनंद नाम के लड़के से मुलाकात होने वाली है।
4: बिल्कुल आरजे आनंद जी से मिलके वाकई आनंद आ गया।
3: अरे वाह थैंक यू सो मच,
4: आप अपने नाम को सार्थक तो कर रहे हैं।
3: अरे सर थैंक यू सो मच। वही वापस बैक टू पॉइंट कि जब आपका पैशन प्रोफेशन बनता है ना तो आप उसमें जी जान लगा देते हो भाई, है ना। फिर उसमें जो निकल के आता है कि ओरिजिनल वाला प्यार, वो फिर लोग पसंद करते हैं यार। तो वही वाली चीज
4: है, ऑटोमेटिकली पसंद आने लग जाता है लोगों को, क्योंकि आपने जो किया होता है ना वो कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल होता है।
3: एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आप उसमें वो चीज कर रहे होते हो जो आपको, जिससे आपको प्यार था वो चीज आप और अच्छे से करते हो। होते जिस चीज में हमें मोहब्बत होती है पूछने आप ही अच्छी हो जाती है ना। वो चीजें जैसे आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको उस चीज से प्यार है, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर से बाहर निकल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। So, भैया आप सोशल मीडिया तो डेफिनेटली यूज करते
4: हैं? हाँ मैं यूज करता हूँ मेरा सोशल मीडिया, मेरा अपना जो पर्सनल अकाउंट है। हालांकि मैं
3: कितना मतलब एक्टिव है सोशली, आप अभी इतना अच्छा आप कर दे तो मुझे लगता है आपको सोशली पे जाना
4: नहीं,
3: चाहिए।
4: मैं सोशली पोएट्रीज और इन सब चीजों को लेकर एक्टिव नहीं हूँ। सोशली कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को वो प्रॉब्लम होती है कि यार मैं इतना अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ लोग सुन नहीं रहे हैं।
3: पर मुझे ऐसा लगता है
4: उत्तर कंसिस्टेंसी, उसमें रेगुलरिटी,
3: दिस इज ट्रू। मुझे भी वही बोलना था कि आपको ना यार आपको ना दुनिया के लिए नहीं करना है, हमें अपने लिए करना है। आपको आपको एक्साइटमेंट मिलना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, वाह यार आज मैंने वीडियो डाली मतलब मजा आ गया। डजंट मैटर उस पे लाइक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं तो
4: शेयर करने का मेरा मोटिव ये था कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं और अगर उनमें से कोई मेरे जैसा कोई या आपके जैसा कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कभी भी फ्रस्ट्रेशन में अपनी इन चीजों को खराब ना करें। आप लगे रहें। व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो व्यू करके क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैं कर लेता।
3: होता है यार, बहुत बार ही होता है हमारे मन में एक थॉट आता है।
4: इसका मतलब आप जानते हो कि आप उससे कहीं ना कहीं बेहतर
3: कर सकते हो, आपका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए ना, मेन बात ये भी तो है। बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल आरजे आप बन जाओगे। मेरी चेयर हिलने लगी आपकी आवाज।
4: मेरा आरजे में आने का तो खैर इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका कॉम्पिटिशन नहीं हूँ।
3: अरे यार मुझे तो कंपटीशन अगर हेल्दी वाला हो यार, अपने को तो वो वाला जमता है भैया। हाँ। जाने से पहले हमने एक छोटी सी यू नो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप जो करते हैं राधा कृष्ण जी के ऊपर आप कुछ बढ़िया एक बारी वो जाते जाते कुछ सुना दें हमारे लिसनर्स।
4: बिल्कुल बिल्कुल मैं सुना देता हूँ। मैं एक स्टेंजा अपनी पोइट्री का सुना देता हूँ जो कि उसका टाइटल है ना मैं कृष्ण हूँ ना तू राधा है।
3: वाह।
4: एक प्रेमी और एक प्रेमिका, यानी कि एक लवर और एक उसकी लवर का एक कॉन्वर्जेशन है। एक प्रेमी अपनी सारी कोशिशें करके हार गया है और उसको वो किसी भी तरीके से अपना नहीं बना पा रहा है, तब वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है और बता रहा है कि मैं और तू बिल्कुल एक ही है लेकिन फिर भी डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट वाली सिचुएशन। तो लड़का कहता है मैं शब्द हूँ तू भाषा है, अपने प्रेम की यही परिभाषा है, अधूरा हूँ तुझमें इस तरह जैसे फलक पर चांद आधा है।
3: क्या बात है।
4: मैं शब्द हूँ तू भाषा है, अपने प्रेम की यही परिभाषा है, अधूरा हूँ तुझ बिन इस तरह जैसे पलक पर चार आधा है, सात जन्मों का ये वादा है, मैं पतंग हूँ तू धागा है। सात जन्मों का ये वादा है, मैं पतंग हूँ तू धागा है, पर जीवन की ये बाधा है, पर जीवन की ये बाधा है, ना मैं कृष्ण हूँ ना तू राधा है, ना मैं कृष्ण हूँ ना तू राधा है। लेकिन इसका आंसर देती है लड़की अपने आंसर कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, क्या है मैं बताती हूँ। और लड़की कहती है कि मैं प्रेम हूँ तू समर्पण है, मैं रूप हूँ तू दर्पण है, मैं प्रेम हूँ तू समर्पण है, मैं रूप हूँ तू दर्पण है, मैं अर्चना हूँ शिव की तू पुष्प चरणों में अर्पण है। क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की जो अर्चना कर रहे हैं आप, उसकी अर्चना बिना पुष्पों के बिना फूलों के संपन्न नहीं है। तो वो बताने की कोशिश करिए कि मैं प्रेम हूँ तू समर्पण है, मैं रूप हूँ तू दर्पण है, मैं अर्चना हूँ शिव की तू पुष्प चरणों में अर्पण है, कुछ भी तो कम नहीं ज्यादा है, ये प्रेम का तर्पण है ना कि बाधा है। कुछ भी तो कम नहीं या ज्यादा है, ये प्रेम का तर्पण है ना कि बाधा है। तो फिर तुमने कैसे कह दिया प्रियतम, ना मैं तेरा कृष्ण हूँ ना तू मेरी राधा है। थैंक यू सो मच।
3: वेरी वेरी नाइस भैया, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है यार, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, अनकररेबल, बहुत ही बढ़िया था एंड यू आर माइंड ब्लोइंग यार।
4: थैंक यू।
5: Oh my God, this is original.

0: ரெடி அண்ணன் யாரு?
1: नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका होस्ट अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपकी गाड़ी भी चल रही होगी 60-70 पे। हाँ, शहर के अंदर तो इतनी स्पीड काफ़ी होती है। निकल रहे होंगे स्टेशन से, मिल रहा होगा थोड़ा सा जाम, फिर पहुँचेंगे भाई साहब खिसकते खिसकते फव्वारे, उसके बाद पीली कोठी, और पीली कोठी से निकल जाएंगे MDA। और अगर जा रहे होंगे दिल्ली रोड तो भाई साहब पकड़ना पड़ेगा आपको फ्लाईओवर लोकोशेड वाला। तो हाँ, जब लोकोशेड का फ्लाईओवर क्रॉस करें ना, सीधे हाथ पे एक छोटा सा आपको तालाब सा दिख रहा होगा, कुछ प्रोजेक्ट दिख रहा होगा बढ़िया सा स्मार्ट सिटी का, और आप चाहें तो वहाँ पे शाम को घूम भी सकते हैं, थोड़ी सी मटर गस्ती कर सकते हैं। वहाँ पे बच्चे मिल जाते हैं आपको बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हुए उस समय, तो थोड़ा सा तो मस्त हो ही रहा है मुरादाबाद, क्या कहते हो आप? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ आपकी नोकझोंक की। प्यार जो होता है ना, सिर्फ आई लव यू तक ही सीमित नहीं होता है, कभी रूठना, कभी मनाना, कभी छोटी छोटी बातों पर बहस, और फिर एक प्यारी सी स्माइल, यही तो है प्यार की असली मिठास। तो हम बात करेंगे आज प्यार की नोकझोंक और खट्टी मीठी यादों की। शुरुआत करते हैं प्यारी सी शायरी के साथ। नाराज़गी भी उसी से होती है जिसे मोहब्बत बेपनाह होती है, नाराज़गी भी उसी से होती है जिससे मोहब्बत बेपनाह होती है, वरना यूँ हर किसी पर दिल अपना हक नहीं जताता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं तो नोकझोंक आपसे भी हुई होगी। अजी हाँ जी हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं, जो गाड़ी में चला रहे हैं ना आराम से और सोच रहे हैं आज तो जाके पूरे का पूरी लड़ाई होनी है। नहीं नहीं, नोकझोंक में ही काम ख़त्म कर दीजिएगा। और हाँ, हमें बताइएगा कि आपकी लव स्टोरी या शादी की प्यारी सी नोकझोंक कौन सी थी। 9837896896। तब तक करते हैं इस गाने से प्यार और करते हैं रब का वास्ता।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद एफएम, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हाँ जी साहब, हम वापस आ गए हैं आपकी ही नोक झोंक के बारे में बात करने के लिए। और हमारे पास मैसेज आया है अभी अभी अंजलि जी का, कहती हैं, मेरी और मेरे हस्बैंड की हर ट्रिप पर सीट को लेकर लड़ाई होती है। उन्हें विंडो सीट चाहिए और मुझे भी, लेकिन आज भी वही लड़ाई हमारे सबसे ज़्यादा प्यारी याद बन गई है। तो अंजलि जी, ये तो होता ही है, विंडो सीट किसे नहीं पसंद है। कहीं भी जाओ, अगर प्लेन में भी उड़े हो ना, तो अगर मेरे को विंडो सीट नहीं मिले, मैं तो रिक्वेस्ट कर करके पहुंच जाता हूँ विंडो सीट तक। विंडो सीट का तो बात ही कुछ और है, ट्रेन की भी विंडो सीट की अलग ही अहमियत है। जैसी कि स्टेशन में रुकी, वहीं विंडो से आवाज़ लगा दी, अरे भाई साहब हमारे पास भी पहुँचा दो कुछ, चाहे 10 रुपये का पॉपकॉर्न हो या पानी की बॉटल। तो विंडो सीट का तो मज़ा ही कुछ और है। और हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, वो क्या बताते हैं आज कौन सी नोक झोंक के बारे में। नमस्कार दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर।
0: क्या कर रहे हैं सर इस समय आप?
1: सर रोटी खा रहे हैं, आराम ही कर रहे हैं सर।
0: बिल्कुल सही है, आराम तो फरमाना चाहिए। ये बताइए, आज आपको पता है हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? हम आज किस, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ आपको पता है हम किस विषय पे बात कर रहे हैं आज? बताइए फिर।
1: कोई ऐसी नोक झोंक वो जो आपको पता चले,
0: तो आप अपनी नोक झोंक बताइए जो हमारे श्रोताएं भी सुन सकें कि हाँ भी आप भी जरा नोक झोंक में कम नहीं है।
1: नोक झोंक तो अखिल सर, जिंदगी जब बनी है और फैमिली में रहेंगे, नोक झोंक तो होती रहती है।
0: सर प्यारी प्यारी वाली नोक झोंक बताइए, प्यारी वाली नोक झोंक आपकी। रोज होती रहती है आपकी, तो सही है, फिर आपको ही बॉर्डर पे भेजना पड़ेगा एक दिन सर। आप प्रैक्टिस कर करके एकदम पक्के हो गए हैं, कुछ तो बताइए। सही है सर, हाँ सर ये तो चलती। कोई ऐसी नोक झोंक बताइए कि जो सुन के हमें भी पता चले कि हाँ जी ये तो अलग तरह की नोक झोंक थी आपकी।
1: अरे क्या नोक झोंक, उम्र के हिसाब से दो बच्चों की शादी, एक की कर दी एक की और कर दी है,
0: तो अभी तो उस पर भी नोक झोंक होनी है साहब, उस पर भी होनी है नोक झोंक।
1: हाँ हाँ होनी जरूर है, क्योंकि नौ दुर्गों में शादी होनी है।
0: व्रत वाला खाना बनना है या व्रत वैसे बिना प्याज का लहसुन का खाना बनना है?
1: हमारे यहाँ तो बस घर में तो बिना प्याज का ही बनता है।
0: सही है सर, तो बारातियों को जो है बिना प्याज का ही मिलेगा इस बार खाना। बताइए आपकी फरमाइश। बिल्कुल सही है, ये आपकी बिल्कुल फरमाइश, गाने जो है एकदम नोक झोंक पे ही जा रहा है। ये गाना भी बहुत बढ़िया गाना चुना है सर आपने, तो चलिए साहब धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमसे जुड़ने के लिए नरेंद्र जी, और हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अगली बार दोबारा इसी समय एफएम पे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दोस्तों नरेंद्र जी, जो बता रहे हैं कि मेरी तो नोक झोंक चलती रहती है, एक बच्चे की शादी हो गई है, एक की अभी होनी है और वो भी नवरात्रों में होनी है, तो थोड़ी सी नोक झोंक रहेगी कि भैया बिना प्याज लहसुन का खाना बनना है या प्याज लहसुन वाला। तो देखिए वो क्या कहते हैं ना कुछ तो मैटर सॉल्यूशन निकल के आएगा ही। और इतनी अच्छी फरमाइश करी है नरेंद्र जी ने इस गाने की भी अपनी, कि ज़िंदगी के ना टूटी लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। इसी बात पे एक शायरी याद आई है साहब, झगड़े भी ज़रूरी हैं मोहब्बत में, तभी तो पता चलता है कि मनाने वाला कितना प्यार करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज जो सुबह से कोई नाराज़ होगा और घर पहुंचने वाला होगा एक बंदा, तो ज़रूर वो मनाएगा भाई, कहीं ना कहीं तो उसे खाना जो है डिलीशियस खाना ही है। तो चलिए सर इनकी भी फरमाइश करते हैं पूरी है। और मिलते हैं इस गाने के बाद।

एक बार फिर से स्वागत है आपका 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखिल, दिल से दिल तक, अखिल संग। तो दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप वही है जहां कभी झगड़ा ना हो, लेकिन सच ये है कि जहां प्यार होता है ना, वहां छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। कभी लेट रिप्लाई पर नाराज़गी हो जाती है, कभी बर्थडे गिफ्ट पसंद नहीं आता है, तो कभी कभी शॉपिंग और क्रिकेट भी बीच में आ जाता है। और हाँ, बाद में वही बातें याद बनकर मुस्कुराहट दे जाती हैं। एक दोस्त है अमित, जो अपने दोस्त राहुल से मिलने गया, जाके घंटी बजाई। ऊपर से राहुल ने कहा कि आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, बालकनी से झांक के बोला, अभी आ रहा हूँ भाई। अमित ने बोला, ठीक है भाई, आ जा तू नीचे। अमित करता रहा उसका इंतज़ार। 5-10 मिनट बाद फिर उसने घंटी बजाई, फिर ऊपर से आया राहुल, आ रहा हूँ भाई, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। अमित कहता है, ठीक है भाई, वेट करता हूँ। जब हो गया थोड़ा सा टाइम, तो अमित ने कहा, चलो अब मिलाते हैं इसे कॉल, यार इतने तो इतना टाइम लगा दिया, आज तक कभी इतना लेट जो है नीचे उतरने में टाइम नहीं लगाता ये। फिर जब उसने कॉल करा तो उसने कॉल नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद जब उससे रहा नहीं गया, उसने फिर जाके घंटी बजाई कि हाँ भाई क्या रहा, ऊपर से बालकनी में आई, इस बार

0: भाभी, हाँ अमित की भाभी, और उन्होंने कहा राहुल तो घर में है ही नहीं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया नोक झोंक किस लेवल तक चली गई होगी, जो बेचारा 2 घंटे के बाद गायब ही हो गया। तो ऐसी तो नोक झोंक चलती रहती है। हमारे पास अभी एक हमारे लिसनर का मैसेज आया है, कहते हैं मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हर बार मूवी चूज करने पर लड़ते हैं, आज ब्रेकअप के बाद वही बात सबसे ज़्यादा याद आती है। मैं आपका नाम तो नहीं कहूँगा, मगर आपने बिल्कुल सही बात कही कि भाई साहब ये जो मूवी चूज़ करने वाला सीन है ना, इसमें तो लड़ाई हो ही जाती है, चाहे गर्लफ्रेंड किसी की भी हो, मगर पसंद अगर मूवी आपकी हुई और उसको नहीं है तो फिर तो भाई साहब डेफिनेटली फिर तो पूरी मूवी का कोई सीन ही नहीं है, फिर तो आपकी अपनी ही मूवी चल रही है। हमारे पास एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, लीजिए करते हैं उनसे बात। हेलो नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका मैम?
1: गीता कश्यप।
0: गीता कश्यप जी, आप कहाँ रहती हैं मुरादाबाद में?
1: दीवान के बाजार।
0: दीवान के बाजार, तो आज कैसा है मौसम इस साइड आपके दीवान के बाजार की तरफ?
1: गर्मी है आज तो, बहुत गर्मी थी।
0: आज बहुत गर्मी है, ये बात तो आपने सही कहा। वो थोड़ा बहुत एसी तेज चल रहा है तो इसलिए पता नहीं चल रही, मगर हाँ गर्मी तो है। तो गीता जी क्या करती हैं आप? तो गीता जी आज आपको जैसे पता होगा कि हम बात कर रहे हैं नोक झोंक पे, छोटी मोटी खट्टी मीठी लड़ाई पे। तो कभी नोक झोंक हुई है आपकी किसी से?
1: नहीं, मैं किसी से ज्यादा फालतू बात ही नहीं करती हूँ।
0: तो मतलब बातों से ही हो जाती है क्या नोक झोंक? सही कह रही हो आप। और नोक झोंक का आपको कभी मौका भी नहीं मिला?
1: नहीं।
0: और अगर कभी मौका मिला तो आप करेंगी किसी से नोक झोंक?
1: नहीं।
0: तो इसका मतलब लगता है आपने आज का व्रत रखा होगा। तो क्या खासियत है और क्या अहमियत है इस व्रत की, हमें ही बताइए। अच्छा, तो निर्जला आकाशी का आपने व्रत रखा, बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। आपने इतनी जो है फास्टिंग करी जिसमें आपने पानी भी नहीं पिया, बहुत ही अच्छा।
1: पानी भी नहीं पीना, कल को पीना है।
0: चलिए तो आप क्या सुनना चाहती हैं, आपकी कौन सी फरमाइश है गाने की? ज़रूर सुनाते हैं मैम। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमसे हमें कॉल किया, और हम आगे भी आपकी कॉल की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ी थी गीता कश्यप जी, जो बता रही हैं कि ये तो नोक झोंक बिल्कुल भी नहीं करती हैं और ना ही करना चाहती हैं किसी से नोक झोंक। तो बताइए किस ऐसे मतलब इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इंसान भी हमारे बीच में हैं सब, जो चाहते ही नहीं हैं कि ऐसा कुछ हो, ना नोक रहे ना झोंक रहे। और इन्होंने गाना भी बहुत अच्छा चुना है, तो चलिए करते हैं इनके गाने का दीदार। उससे पहले करते हैं छोटी सी शायरी का, हमारे पास मैसेज आया है कि एक शायरी का सुनते हैं। यादों का सफ़र भी अजीब होता है, यादों का सफ़र भी अजीब होता है, कभी हंसा देता है कभी आंखों को नम कर देता है। क्या बात लिखी है आपने इशरत जी ने, बहुत ही अच्छी शायरी लिखी है। और कहते हैं कि जी नोक झोंक जो है मेरी भी हुई है, तो चलिए आपकी भी अगर कोई नोक झोंक हुई है तो हमें बताइए 9837896896 पर। और हाँ, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, निकल रहे हैं अपनी इस गाड़ी से, तो निकलते निकलते आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पर जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुरादाबाद 89.6 FM के नाम पे ऐप आएगी, उसे डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक सुनते हैं प्यारा सा गाना, सजना मैं तेरी तू मेरा।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

बहुत हो गई नोक झोंक की बातें, अब ये भी तो बताएं आप कि क्या आप पहले रूठे थे या आपका पार्टनर? सिर्फ मैसेज में ये बताना है कि कौन पहले रूठा था, आप या आपका पार्टनर। या आज भी कोई ऐसी बात है जो याद करके आपको उस पे हंसी आ जाती है, कोई ऐसी नोक झोंक जिस पे हंसी आ जाती है, तो वो भी हमें ज़रूर मैसेज करें और बताएं। हमारे पास हमारे श्रोताओं का मैसेज आया है और वो कहते हैं कि अखिल भाई, मेरी वाइफ मुझसे हर बार कहती थी कि फ़ोन कम यूज़ करो, और आज जब वो मायके जाती है तो उनके ही कॉल सबसे ज़्यादा आते हैं। देखो दोस्तों, प्यार में ना शिकायतें भी प्यारी लगती हैं, तो ये तो अच्छी बात है। कम से कम आपका अगर फ़ोन बज रहा है, आपका टुनटुना बज रहा है, तो आपकी ही घरवाली का बज रहा है, कहीं किसी और का नहीं बज रहा है। हमारे पास हमारे श्रोताओं ने एक मैसेज में एक शायरी लिखी है, खफा होने का भी अपना मज़ा है, वो मनाने आए तो मोहब्बत और गहरी हो जाती है। क्या बात है, आपने बहुत ही गहरी बात लिखी है, मगर हाँ, खफा ना थोड़ा कम होना, ज़्यादा मत होना खफा। तो दोस्तों आप करें मैसेज 9837896896 पे, और प्यारा सा एक बताइए कौन सा नोक झोंक का जो था आपके पास बहाना रहा हो, या जी मेरी तो रोज ही नोक झोंक चल रही है, शायद ही कोई ऐसा दिन जा रहा हो जिस दिन आपकी नोक झोंक ना होती हो, तो ऐसा तो होता है। चलिए हम सुनते प्यारा सा गाना और उसके बाद आते हैं आपके पास इसी नोक झोंक को लेके हम साथ।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों, आज की बातों से एक बात तो समझ आती है, रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसमें प्यार और समझ हो तो हर नोकझोंक एक याद बन जाती है। अपने आप अपने को अपनों को वक्त दीजिए, उनकी बातों को सुनिए और नाराजगी को दिल में नहीं मुस्कुराहट में बदलिए। तभी तो कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी मुलाकातें भी हमेशा याद रह जाती हैं। चलिए, हमारे एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, करते हैं उनसे आखिरी कॉल, आखिरी बात इस समय इस दिन की। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया सर, बढ़िया। क्या कर रहे हैं रिहान जी इस समय?
1: इस टाइम पर आपका प्रोग्राम सुनने हैं, सो रहे हैं। वैसे भी आज मुहर्रम का महीना चल रहा है, फिर आज सादर नामा आज जग रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब अभी आप जग रहे हो, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो। तो जब आपने हमारा प्रोग्राम सुना है तो आज आपको पता ही होगा आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
1: हाँ, नो जोक।
0: तो अपने भी दोस्तों के साथ आपकी जो नोक झोंक हुई है बताइए, कभी कौन सी नोक झोंक हुई है और किस बात पे हुई है?
1: अरे, साथ में लड़ाई हो जाती है कभी कभी दोस्ती से, मगर गुस्से। वो कहता तुम पैसा खर्च करो, वो कहता हम खर्च करें, तुम आपस में मत रहो। खर्च करते हो कि आपने आपस में 10 आप 50 खर्च कर रहे हैं तो 100 भी खर्च कर सकते हैं।
0: तो इसका मतलब एंड में खर्च आप ही को करना पड़ता है?
1: हाँ, एंड में खर्च करते हैं अपने।
0: तो दोस्ती जीत जाती है साहब आपकी इस नोक झोंक में, कुछ भी हो जीतती तो दोस्ती ही है आपकी।
1: हाँ, दोस्ती जीत जाती है।
0: हाँ। और बाकी सब बढ़िया चल रहा है सर?
1: हाँ, बाकी सब बढ़िया है, बस बहुत गर्मी पड़ रही है, मौसम ऐसी है बस।
0: गर्मी तो सर पड़ेगी सर, गर्मी में तो गर्मी का आनंद ही लेना पड़ेगा।
1: और बात सही है,
0: सोने से पहले बढ़िया सी आइसक्रीम खा लिए जी, जिससे कि कम से कम आइसक्रीम ऐसी है कि ठंडक तो पहुंचाएगी दिल को आपके।
1: अरे भाई, आप तो वो दो तीन बार शरबत पी लिया, वो सुकून थोड़ा सुकून मिला
0: तो शरबत से आपको ठंडक मिली है फिर?
1: हाँ, जगह शरबत पिला जा रहा तो शरबत ही पिला रहा।
0: चलिए चलिए, बहुत बढ़िया रिहान साहब, बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल करी और आपने अपने दिल की नोक झोंक भी हमें बताई अपने दोस्तों के साथ की। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ रिहान साहब जो जुड़े थे और बता रहे थे कि जी नोक झोंक तो इनका भी एक पार्ट रहा है, इनके दोस्तों से इनकी नोक झोंक होती रहती है। कहते हैं जी आज पैसा तू खर्च करेगा या आज पैसा मैं खर्च करूंगा, मगर फाइनली रिहान साहब को अपनी जेब से देने पड़ते हैं पैसे। हमारे साथ जो है ना, आज के लिसनर्स जितने भी हमारे साथ आए, सब ने एक प्यारी सी कोई ना कोई नोक झोंक बताई। एक ने तो कहा कि जी मैं तो नोक झोंक पे विश्वास ही नहीं करती हूँ, मैं तो बिल्कुल एकदम कहते ना साफ साफ बात करती हूँ और कम बात करती हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात कही थी आपने गीता जी कि नोक झोंक से कोई पैसा फायदा तो है ही नहीं। तो दोस्तों, जाने से पहले एक सुनाते हैं शायरी आपको। रिश्तों की मिठास बातों से नहीं, एहसानों से बनती है। रिश्तों की मिठास बातों से नहीं, एहसानों से बनती है, और प्यार की हर नोक झोंक एक नई याद बन जाती है। तो आज आपके इस अखिल के साथ हुई आपकी दिल से दिल तक की बात, और अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे हम 9 बजे दिल से दिल तक अखिल संग। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, मोहब्बत की बातें करते रहें और दिल से दिल तक जुड़े रहें। मिलते हैं कल, इस गाने के साथ लेते हैं अलविदा।

0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।